सुप्रभात। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। आज रविवार है, शक संबत 1948 की वैशाख मास की 20वीं तिथि, तदनुसार ईस्वी सन 2026 के मई महीने की 10 तारीख। हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:56.50 हुए हैं। प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों में हम आपका स्वागत करते हैं।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं
2: वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद

0: जी आर्थिक कॉरिडोर में गुडीबेल्लूर से महबूब नगर तक चार लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और पांच कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के दो दो विधायक हैं। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वासमत हासिल करने को भी कहा है। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई बैठक में श्री राहुल गांधी, केरलम प्रभारी महासचिव दीपा दासमुंशी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्य के वरिष्ठ नेता रमेश चेन्नीथला और वीडी सतीशन शामिल थे। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का भी प्रावधान है। परामर्शदाताओं के लिए शिक्षा के माध्यम से मस्तिष्क की सक्रियता परियोजना पर आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से इसका आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में शैक्षणिक विकास के साथ साथ भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आरोग्य को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल ट्रिनिडाड और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत से गिरमिटिया श्रमिक पहली बार ट्रिनिडाड और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही ये परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं खेती किसानी, जानकारी लेते हैं परंपरागत कृषि पद्धति को त्याग कर ही कृषि विकास संभव है। वाचन है अनीता तिर्की का।
2: हमारे पूर्वजों द्वारा अपनाई गई कृषि पद्धति ही परंपरागत कृषि पद्धति कहलाती है। रासायनिक कृषि के पूर्व कृषि पद्धति मूल रूप से फसलों के परंपरागत प्रभेद, पोषक तत्वों के कार्बनिक स्रोत और क्षैतिज

0: विचार पर आधारित था। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में रासायनिक कृषि उत्पादनों का समावेश हुआ, जिससे कृषि उत्पादन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। रासायनिक कृषि के पूर्व परंपरागत देशज प्रभेद का प्रयोग किया जाता था, जिसकी उत्पादन क्षमता कम थी। पोषक तत्वों के रूप में कंपोस्ट आदि का प्रयोग किया जाता था, जिससे वांछित मात्रा में पोषक तत्वों की आपूर्ति नहीं हो पाती थी। कृषि में परंपरागत कृषि औजारों का प्रयोग होता था, जिसकी कार्यक्षमता कम होती थी। उत्पादन बढ़ाने के लिए खेत का क्षैतिज विस्तार किया जाता था, जिसके अंतर्गत नए जमीन को खेती के अंतर्गत लाया जाता था। आज की परिस्थिति के अनुसार यदि हम इसकी विवेचना करें तो हम पाएंगे कि खेती के लिए जमीन घट रहा है, मजदूरों की समस्या बढ़ रही है, जमीन की उपजाऊपन जो है वो कम होती जा रही है, जबकि बढ़ती जनसंख्या का भोजन उपलब्ध कराने की जो चुनौती है वो बरकरार है। हरित क्रांति मूल रूप से अधिक उपजशील प्रभेद कृषि रासायनिक और सिंचाई पर आधारित था, जिसके कारण इसका लाभ देश के कुछ चुनिंदा राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ही मिल पाया। अल्पकाल में इसके दुष्परिणाम सामने आने लगे। उत्पादनों की उत्पादकता घटने लगी, मिट्टी खराब होने लगा, मिट्टी में मौजूद लाभकारी जीवाणुओं सूक्ष्म जीवों की संख्या घटने लगी, जिससे खेती की जो आमदनी है वो भी घटने लगी। आज की हमारी प्रमुख चुनौती है जोत का घटता रकबा। उपादानों की कार्यक्षमता, पानी की समस्या, मिट्टी का क्षरण, जलवायु परिवर्तन आदि। आज के संदर्भ में हमें इन समस्याओं का निराकरण करते हुए सदाबहार टिकाऊ खेती की ओर बढ़ना होगा। हमें खेती की ऐसी पद्धति अपनानी होगी जो पर्यावरण के अनुकूल हो, प्राकृतिक संसाधनों की गुणवत्ता बरकरार रहे, अतएव कृषि तकनीकों की सामान्य अनुशंसा जो सभी क्षेत्रों के लिए लागू हो संभव नहीं है। हमें क्षेत्र विशेष की विशिष्ट और सीमाओं का ध्यान में रखकर कृषि तकनीक अपनानी होगी। उल्लेखनीय है कि कृषि उत्पादन को बढ़ाने वाले तकनीक जैसे उपयुक्त प्रभेद, मिट्टी का स्वास्थ्य प्रबंधन, पोषक तत्व प्रबंधन, सिंचाई प्रबंधन, कीट व्याधि प्रबंधन, कृषि यंत्रीकरण, कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी तथा शस्य प्रबंधन की आधुनिक तकनीकों को अपनाना होगा। सामान्य रूप से किसान भाई परंपरागत देशज प्रभेद और शोध संस्थानों द्वारा विकसित अधिक उपजशील प्रभेद और संकर प्रभेदों का ही प्रयोग करते हैं। परंपरागत प्रभेद की विशेषता है कि इसमें कम संसाधनों की आवश्यकता होती है, परंतु उपज कम लेकिन स्थिर होता है। अधिक उपजशील और संकर प्रभेदों में अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, लेकिन उपज अधिक होता है। उपज क्षमता मिट्टी के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। मिट्टी में पोषक तत्वों के साथ साथ असंख्य सूक्ष्म जीव रहते हैं। मिट्टी में जल की उपलब्धता मिट्टी की संरचना पर निर्भर करती है। मिट्टी के स्वास्थ्य से परोक्ष रूप से हमारा स्वास्थ्य भी जुड़ा हुआ है, अतएव नियमित रूप से मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच करवानी चाहिए। टिकाऊ खेती के लिए मिट्टी स्वास्थ्य की जानकारी महत्वपूर्ण है। समुचित जानकारी के अभाव में किसान भाई उर्वरकों का असंतुलित इस्तेमाल करते हैं, जिससे न सिर्फ मिट्टी की गुणवत्ता खराब होती है बल्कि वांछित उपज भी प्राप्त नहीं हो पाता है।
1: परंपरागत कृषि पद्धति को त्याग कर ही कृषि विकास संभव, खेती किसानी कार्यक्रम में अभी आप इस विषय पर जानकारी ले रहे थे। वाचन था अनीता तिर्की का। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं चिंतन।

ये जगत कर्म प्रधान है। हम अच्छे बुरे जैसे भी कर्म करते हैं उसका फल अंततः हमें ही भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म, शुभ कर्म, पुण्य कर्म से हमें सुख प्राप्त होता है और बुरे कर्म, अशुभ कर्म, पाप कर्म से दुख मिलता है। इसका अर्थ यह हुआ कि कर्म ही हमारे

0: सुख और दुख का कारण हैं। सुख और दुख हमारे कर्मों का परिणाम एवं प्रतिफल हैं। ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो हमें हमारे पुण्य कर्मों के सुफल से वंचित कर सके। उसी प्रकार यदि हमने बुरे कर्म किए हैं तो वे हमारा पीछा करते रहेंगे और उन कर्मों के परिणामों को भोगना हमारी नियति होगी। जैसे दीवार पर फेंकी गई गेंद लौट कर फेंकने वाले की ओर ही आती है, उसी प्रकार हमारे द्वारा किए गए कर्म हमारी ओर लौट आते हैं। वस्तुतः कर्म प्रतिक्रियाशील हैं। हम किसी भी प्रकार का कर्म करते समय भले ही अकेले रहे हों, किंतु सर्वव्यापी परमात्मा की उपस्थिति वहां भी होती है। हमारे भीतर परमात्मा का अंश यानी हमारी आत्मा भी उस कर्म का साक्षी होती है। यही कारण है कि हम बुरे कर्म करते समय दुनिया की दृष्टि में भले ही अच्छे बने रहें, पर हमारे भीतर से अंतरात्मा की आवाज हमें आईना दिखाती रहती है। भला उससे हम कोई चीज कैसे छिपा सकते हैं? हमारी आत्मा के पास हमारे प्रत्येक कर्म का लेखा जोखा है। कर्मों की दिशा ही हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करती है। हमारे कुछ कर्मों का फल तो तत्काल मिल जाता है, लेकिन कुछ कर्मों का फल वर्षों बाद भविष्य में या फिर अगले जीवन में प्राप्त होता है, किंतु मिलता अवश्य है। बीज बोते ही वृक्ष तो नहीं बन जाता ना, उसे बीज से वृक्ष बनने में समय लगता है। हमारा कर्म वास्तव में बीज है जो एक न एक दिन अंकुरित होता हुआ विकसित होता हुआ वृक्ष के रूप में आकार लेगा और उस वृक्ष में सुख और दुख के फल लगे होंगे जिनका भोग हमें ही करना होगा। इसे ही कर्म भोग कहते हैं। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करने के लिए तत्पर रहना चाहिए।
1: आप सुन रहे थे चिंतन, संकलन और वाचन था दिनेश कुमार लाल का। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं आराधना। सबसे पहले देशभक्ति गीत मोहम्मद रफी का गाया हुआ।

आप सुन रहे थे शकील बदायूनी की रचना, मोहम्मद रफी के स्वर में, संगीत था नौशाद का। और आइए अब सुनते हैं कुछ भक्ति संगीत लता मंगेशकर का गाया हुआ।

सच गुरु ही वह माध्यम है जो मनुष्य को आत्मबोध और ईश्वर से जोड़ते हैं। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि पद प्रतिष्ठा या संपत्ति नहीं बल्कि मन की शांति है। जिसने ईश्वर प्रेम पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। आकाशवाणी के रांची केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति गीतों का कार्यक्रम आराधना। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर का ही गाया हुआ एक और भजन।

मन को भक्ति, शांति और सदाचार की ओर प्रेरित करने वाली यह स्तुति आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। राम के सौम्य और लोक मंगलकारी व्यक्तित्व का स्मरण कर मानव जीवन में विश्वास, संयम और करुणा का संचार करता है। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर का ही गाया हुआ एक और भजन।

लता मंगेशकर के गाए इस भजन के साथ ही संपन्न हुआ आज का भक्ति गीतों का कार्यक्रम आराधना। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

परशुराम पर श्री राम का वास्तविक स्वरूप प्रकट होने के साथ ही राजा जनक का धनुष यज्ञ पूर्ण रूप से संपन्न हो गया। मिथिलेश को अपने सम्मुख नतमस्तक देख मुनिवर विश्वामित्र बोले, हे राजन, यूं तो विवाह धनुष के अधीन था जो उसके टूटते ही संपन्न हो गया। फिर भी ब्राह्मणों, कुलगुरु तथा अन्य आदरणीय जनों से पूछकर जो भी आपके कुल की रीतियां हों उन्हें पूरा कीजिए। अयोध्या दूत भेजकर राजा दशरथ को ये शुभ संवाद दीजिए ताकि उनके आगमन पर ये मंगल कार्य विधिपूर्वक पूरा हो सके। दूत अयोध्या को चले और इधर राजा जनक ने सगे संबंधियों तथा राज कर्मचारियों को पूरी नगरी, बाजार, राजमार्गों, भवनों, देवालयों को सजाने के आदेश दिए। मंडप बनाने वाले कुशल कारीगरों को बुला भेजा गया जिन्होंने हरित मणियों के पत्तों तथा फूलों और पद्मराग माणिकों के फलों से ऐसा मंडप बनाया जिसकी शोभा देख ब्रह्मा भी अपनी रचना भूल गए। भांति भांति के माणिक मोतियों, बहुमूल्य रत्नों तथा अन्य उपकरणों से नगर की सजावट होने लगी। जिस मंडप में जनक नंदिनी दुल्हन और रूप और गुणों के भंडार श्री राम दुल्हा होंगे वो मंडप त्रिलोक में अनूठा होना ही चाहिए।

आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में।

स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे भेंट वार्ता रीढ़ की हड्डी की बीमारी और सावधानियां विषय पर। भेंट वार्ताकार होंगे डॉक्टर राजचंद्र झा, उनसे बातचीत करेंगे संजीव कुमार लाल। समय याद रखें 7:05 पर। सुबह सुरीली आप सुनेंगे हर दिन की तरह 7:15 पर। खुला आकाश कार्यक्रम का वक्त होगा 7:45 पर। आप सुनेंगे डॉक्टर शैलेश कुमार मिश्रा की वार्ता गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर एक बहुआयामी व्यक्तित्व। समाचार प्रभात 8:00, 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज और प्रादेशिक समाचार 8:30 पर। संवेद गान शिक्षा आप सुनेंगे 8:45 पर असमिया भाषा में। रसरंजन 9:05 पर।

शास्त्रीय संगीत में आप सुनेंगे जीएन उर्मा द्वारा गिटार पर राग नट भैरव में आलाप और जोड़ के बाद दो गतें। दोनों ही गतें तीन ताल में निबद्ध होंगी। तबला पर संगत करेंगे श्यामानंद झा और हारमोनियम पर श्यामा प्रसाद नियोगी। समय याद रखें 9:30 पर। बाल सभा आप सुनेंगे 10 बजे से। प्रस्तुति होगी नूतन प्रसाद की। सूत्रधार होंगे अवधेश कुमार और रानी शुक्ला।

जोहार रांची 10:30 पर 11:15 पर आप सुनेंगे पद्मश्री उमाशंकर पांडे से जल संरक्षण पर बातचीत। संकलन एवं वाचन होगा हिमांशु शेखर का, प्रस्तुति प्रभुशरण की होगी। समय याद रखें 11:15 पर। 12 बजे से आप सुनेंगे महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे चर्चा, छोटी छोटी शुरुआत से पाएं बड़ी सफलता। जानकारी आपको मिलेगी शरीर में जल की कमी के लक्षण और प्राथमिक उपचार के बारे में। प्रस्तुति होगी नूतन प्रसाद की। भारत भारती आप सुनेंगे 12:30 पर। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे आंचलिक लोकगीत, कलाकार होंगे सिसोदनी सिंह और साथी। लोक रंग आप सुनेंगे खड़िया लोकगीत 12:45 पर, कलाकार होंगे इग्नासियस केरकट्टा और साथी। आप जानकारी ले रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः दिव्यानन्द झा। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य कर्णाटक तेलंगानयोः यात्रार्थं प्रतिष्ठते। सः बेंगलुरुनगरे आर्ट ऑफ लिविंग इत्येतस्य संस्थानस्य पञ्चचत्वारिंशत्तमीं वर्षपूर्तिम् एतस्य संस्थापकस्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकरस्य सप्ततितमं जन्मदिवसं च उपलक्ष्य प्रकल्पिते एकस्मिन् समारोहे सहभागं करिष्यति। श्रीमोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसरे नवनिर्मितस्य ध्यानमन्दिरस्य ध्यानकक्षस्य च उद्घाटनं करिष्यति। एतत् कार्यक्रमात् पूर्वं सः एकां सभां सम्बोधयिष्यति। समारोहात् अनन्तरं प्रधानमन्त्री हैदराबादे प्रायः चतुश्शतोत्तर नवसहस्र कोटि रूप्यकाणां अनेकासां विकास परियोजनानां शिलान्यासं लोकार्पणं च करिष्यति। श्रीमोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक वीथिकायां सप्तषष्ट्यधिक शत संख्याके राष्ट्रिय राजमार्गे चतुर्भागपरक मार्ग निर्माणस्य आधारशिलां अपि स्थापयिष्यति। प्रधानमन्त्री वारंगले पीएम मित्रा पार्क इत्येतत् उद्यानम् अपि उद्घाटयिष्यति। अपि च सः हैदराबादे अत्याधुनिकं कर्करोगपरम् एकं चिकित्सालयम् अपि लोकाय अर्पयिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कर्णाटक तेलंगानयोः यात्रानन्तरं अद्य गुजरातम् अपि गमिष्यति। द्विदिवसीय यात्रायाः प्रथमे दिने अद्य सः जामनगरं प्राप्नोति। तदनन्तरं द्वितीये दिने अर्थात् श्वः सः सोमनाथ मन्दिरस्य जीर्णोद्धारस्य पञ्चसप्तति वर्षपूर्त्यवसरे आयोजिते सोमनाथामृत महोत्सवे सहभागं करिष्यति। प्रधानमन्त्री अनेकेषु धार्मिकेषु सांस्कृतिकेषु च कार्यक्रमेषु सहभागं करिष्यति। सुवेन्दुः अधिकारी ह्यः पश्चिम बंगालस्य नूतन मुख्यमन्त्रित्वेन शपथं गृहीतवान्। इत्थं पश्चिम बंगाले भाजपेति दलस्य प्रथमं प्रशासनं संघटितम्। कोलकातायां ब्रिगेड परेड ग्राउंड इति स्थले आयोजिते भव्ये समारोहे राज्यपालेन आर एन रविणा श्री सुवेन्दुः अधिकारी पदगोपनीयतायै प्रतिश्रावितः। तेन सह अन्ये पञ्चमन्त्रिणः अपि पदगोपनीयतायै शपथं गृहीतवन्तः। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री केन्द्रीय गृहमन्त्री रक्षामन्त्री भाजपादलाध्यक्षः अनेके मुख्यमन्त्रिणः मन्त्रिणः वरिष्ठाधिकारिणश्च उपस्थिताः आसन्। टीवीके दलप्रमुखः सी जोसेफ विजयः तमिलनाडुराज्यस्य नूतन मुख्यमन्त्रित्वेन अद्य प्रातः दशवादने शपथं ग्रहीष्यति। तेन सह अन्ये नवमन्त्रिणः अपि पदगोपनीयतायै शपथं ग्रहीष्यन्ति। तत्रान्तरे ह्यः नूतन सर्वकार रचनायै टीवीके दलेन प्रमाणितं यत् तत्पार्श्वे विंशत्युत्तर शत विधायकानां समर्थनं वर्तते। प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजनायाः पञ्चविंशतितमीं वर्षपूर्तिम् उपलक्ष्य मध्यप्रदेशे सीहोर जनपदस्य भैरुन्दा स्थले अद्य रजत जयन्ती समारोहः आयोजयिष्यते। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षतां करिष्यति। भारतीय अर्थविभागेन आगामिषु द्वित्रेषु दिवसेषु केरल लक्षद्वीप दक्षिण कर्णाटक तमिलनाडु पुदुच्चेरी कराईकलेषु प्रचण्ड वृष्टेः संभावना प्रकाशिता। प्रिया श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने सार्धैकवादनतः भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। अन्ते क्रीडा वार्तासु, इण्डियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रौ जयपुरे आयोजिते द्वन्द्वे गुजरात टाइटन्स दलेन राजस्थान रॉयल्स दलं सप्तसप्तति धावनांकैः पराजितम्। आदौ पणं विजित्य राजस्थान रॉयल्स दलं क्षेत्ररक्षणं कर्तुं निर्णीतवत्। ततः गुजरात टाइटन्स दलेन त्रिंशदधिक द्विशत धावनांकानां विजय लक्ष्यं स्थापितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के 45वें वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रूपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में कुडेबेलूर से महबूबनगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। तमिलनाडु में तमिलगा वित्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के 2-2 विधायक हैं। राज्यपाल श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को भी कहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आर एन रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने हैदराबाद में स्क्रैमजेट कमस्टर का सफल परीक्षण किया है। परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। यह रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। इस सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ उद्योग भागीदारों और शिक्षाविदों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए ठोस नींव बताया है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इससे समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का प्रावधान है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल त्रिनिदाद और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत के गिरमिचिया श्रमिक पहली बार त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही यह परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हराया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं स्वास्थ्य चर्चा, सुनते हैं भेंट वार्ता रीढ़ की हड्डी की बीमारी और सावधानियां विषय पर। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर राजचंद्र झा, भेंट करता संजीव कुमार लाल।
3: मित्रों, आजकल की वर्तमान जीवन शैली की यदि हम बात करें तो रीढ़ की बीमारी से बहुत सारे लोग आजकल ग्रसित हो जा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि रीढ़ की हड्डी से संबंधित कौन कौन से बीमारियां हैं और कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो इस बीमारी को प्रभावित करती है, और क्या क्या सावधानियां अपने हम जीवन में बरतें, और खान पान का हम किस प्रकार ख्याल रखें कि एक संतुलित जीवन हम व्यतीत कर पाएं और रीढ़ की हड्डी से संबंधित बीमारियां हम तक नहीं पहुंचे। बातचीत करने के लिए आज आमंत्रित हैं हड्डी जोड़ एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजचंद्र झा। डॉक्टर साहब स्वागत है। डॉक्टर साहब, कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती है रीढ़ के हड्डियों से संबंधित बीमारियों में?
4: शरीर के किसी भी अंग की हम बात करें तो आमतौर पर चार कारण गिनवाए जाते हैं बीमारियों के होने के पीछे। एक जन्मजात जैसे रीढ़ की हड्डियां हैं, किसी बच्चा पैदा होता है उसकी रीढ़ की हड्डियां टेढ़ी होती हैं, या एक से ज़्यादा हड्डी एक से एक साथ मिल जाए तो उसकी हाइट लंबाई कम होती है। दूसरा, संक्रमण बैक्टीरियल हो सकता है, बैक्टीरिया से जीवाणु से हो सकते हैं, कीटाणु से हो सकते हैं। तीसरा, ट्यूमर, जो साधारण ट्यूमर जो जानलेवा नहीं होता है, बेनाइन, या जिसे हम कैंसर कहते हैं, मैलिग्नेंट। और चौथा कारण होता है चोट लगना। तो रीढ़ की हड्डियों की बीमारियों को भी हम इन्हीं चार भागों में बांट के देखते हैं। जन्मजात बीमारियों का मैंने कहा, उसका हमारे पास अभी कोई ऐसा साधन नहीं है खान पान में या दवाइयों के माध्यम से कि उसको हम रोक सकें। दुर्घटना, अपनी तरफ से सावधानी बरतने के बावजूद दुर्घटनाएँ होंगी तो उसका इलाज होगा। संक्रमण से बचा जा सकता है, और जो आज की जीवन शैली का आपने जिक्र किया जिसकी वजह से कमर दर्द बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, गर्दन से लेकर नीचे कमर तक, तो उसमें खान पान और जीवन शैली में बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है।
3: जी, आजकल के हमारे युवा साथी लगातार कंप्यूटर या लैपटॉप पर बैठकर काम करते हैं, और काम करने के सिलसिले में बहुत सारी बीमारियां उन तक पहुंचती है। उन्हें कमर में दर्द होने लगता है, गर्दन में दर्द महसूस होने लगता है, और कभी कभी पैर के पीछे भी उन्हें दर्द का एहसास होता है। तो ऐसा क्यों हो जाता है? किस तरह की हम सावधानियां रखें कि बीमारी नहीं हो?
4: अब समय और युग का अपना धर्म होता है। लैपटॉप पर काम करना है तो करना है, लेकिन व्यक्ति के हाथ में जो है कि आप इससे कैसे बचें, तो इसके लिए दो बातें बहुत ज़रूरी हैं कि एक तो आप एक ही स्थिति में, एक ही पोस्चर में शरीर को ना रखें। बीच में एक आध मिनट के लिए आप उठ के दो चार कदम टहल सकते हैं। कुर्सी ऐसी होनी चाहिए जो गर्दन से लेकर कमर तक सहारा दे। सीधा होना चाहिए और कड़ा होना चाहिए, सीधी और कड़ी कुर्सी का उपयोग करें। और अगर संभव हो तो लैपटॉप को टेबल पर थोड़ा ऊंचा कोई सपोर्ट देके रखें, ताकि लैपटॉप का स्क्रीन आपके नज़रों के सामने पैरेलल हो, कि आपको झुक के ना काम करना पड़े। तो अगर ये छोटी छोटी सावधानियों से आप रीढ़ के हड्डियों की तकलीफ से बच सकते हैं।
3: जिसके आरंभिक लक्षण हैं वो क्या है, ताकि हम सावधान हो जाएं और अपने दिनचर्या में हम सुधार ला लें?
4: प्रारंभिक लक्षण ज़्यादातर मामले में ये होता है कि काम करते समय दर्द का एहसास होना, या थकावट का, कड़ापन गर्दन के पीछे, कमर के पीछे कड़ापन का होना भी शुरुआती लक्षण है। इस स्थिति में अक्सर हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं कि काम की अधिकता से ऐसा हो रहा है, लेकिन असली सावधानी की ज़रूरत इसी समय है कि आप अपने चिकित्सक से संपर्क करें। वो आपको, जैसे मैंने बताया कि आपके बैठने के तरीके, आपके काम करने के तरीके के बारे में सुझाव देंगे, आपको खान पान के विषय में बताएंगे, आपको कुछ व्यायाम की सलाह देंगे, और अगर आवश्यक होगा तो दवाइयां देंगे। इन चारों के संयोग से ही इन बीमारियों से बच भी सकते हैं और अगर बीमारी हो गई है तो उसका समाधान भी निकल सके। खान पान में सबसे आवश्यक ये है कि एक चीज हम लोग याद रखें कि अपने रसोई घर में उन चीजों का ज्यादा समावेश करें जो हमारे पूर्वज खाया करते थे, दादा नाना नानी दादी। ये फास्ट फूड ने बहुत नुकसान किया है। इस वर्ष पूरी दुनिया में, विशेषकर भारतवर्ष में, मोटे अनाजों पर काफी चर्चा हो रही है और फिर से एक बार उनको हमारे दैनिक जीवन में शामिल करने के लिए प्रचार और प्रसार किया जा रहा है। तो मोटे अनाज, अब अगर भात ही है, चावल खाना है, तो मोटा उसना चावल स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। अगर आप मिलेट्स जिसको कहते हैं, तो उसमें मड़ुआ है, कोदो है, बाजरा है, जो इन सब का भी प्रयोग शुरू करें। एक दौर आया कि हम लोग मैदा की तरफ भागते गए, महीन और चिकना दिखने वाले चावल की ओर गए, इससे नुकसान हुआ। और जो आपके और हमारे आसपास आसानी से उपलब्ध सब्जियां हैं, साग हैं, झारखंड इस मामले में बहुत धनी है, तरह तरह के साग यहाँ सालों भर उपलब्ध रहते हैं और सभी साग शरीर के लिए, खास करके हड्डियों के लिए भी, जैसे पालक है, बहुत लाभदायक है, उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें और फास्ट फूड चाउमीन जैसे पदार्थों से बचें।
3: एक्सरसाइज की हम बात करें, क्योंकि हम आजकल घरों के अंदर सिमट के रह जाते हैं, घूमना फिरना हमारा बहुत कम हो गया है, तो व्यायाम हम कितना करें और कितना हम सुबह की सैर करें?
4: आमतौर पे इस बारे में सलाह आज के दिन जो दी जा रही है कि कम से कम प्रतिदिन 30 मिनट और सप्ताह में 5 दिन, अगर संभव हो तो 7 दिन करें, लेकिन नहीं संभव हो तो सप्ताह में 5 दिन कम से कम आधे घंटे प्रतिदिन सैर करें और तेजी से कदम, ब्रिस्क वॉकिंग हम लोग कहते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ जो बाहर नहीं निकल पाते हैं या मजबूरी है महानगरियों में कि ओपन स्पेस, खुली जगह नहीं है जहां जाके आप व्यायाम कर सकते हैं, तो घर में कुछ प्राणायाम और कुछ आसन है जो कोई भी गृहस्थ हो वो कर सकता है। और जो ऑफिस में अगर आपके जगह है, थोड़ी सी भी जगह है, तो आजकल सलाह ये दी जा रही है कि आधे घंटे बैठने के बाद अगर आप एक मिनट भी चहलकदमी कर लेते हैं तो आपके शरीर की हड्डियां मजबूत रहेंगी, पैर, घुटना, कूल्हा, नीचे कमर, पीठ और गर्दन का दर्द कम होगा
3: जी। और कौन कौन सी मुख्य बीमारियां हैं रीढ़ की हड्डी की, जिससे हम काफी परेशान हो जाते हैं?
4: रीढ़ की हड्डी में एक तो है कि इन्फेक्शन होता है, जिसमें हम लोगों के देश में बहुतायत में पाया जाता है, वो है रीढ़ की हड्डी का टीबी, यक्ष्मा रोग, उसको भी प्रभावित करता है। उसमें घाव हो जाता है और अगर सड़ने की प्रक्रिया ज्यादा दिनों तक रह गई तो रीढ़ की हड्डी के नीचे जो मुख्य नस होता है उस पर दबाव पड़ने से लकवा भी हो सकता है। टीबी ना हो तो बैक्टीरिया, साधारण कीटाणुओं से होता है, उसमें पस जैसे कि फोड़ा जैसा रीढ़ की हड्डी में भी हो सकता है। और जो आज के जीव समय की महामारी के रूप में जिसको हम लोग देख रहे हैं और उसका इलाज कर रहे हैं, वो है रीढ़ की हड्डियों की कमजोरी, ऑस्टियोपोरोसिस। उसमें बैठे बैठे फ्रैक्चर, आपकी हड्डी बिना किसी चोट के भी टूट जाती है, इतनी कमजोर हो जाती है, जैसे कि लकड़ी में घुन लग जाता है, उस तरह का हो जाता है। और इसके अलावा कुछ ट्यूमर्स हैं जो शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित करता है, तो रीढ़ की हड्डी के भी ट्यूमर होते हैं। उसमें एक मैंने कहा कि जो जानलेवा ना हो, बेनाइन, और एक जो गंभीर घातक हो सकता है, मैलिग्नेंट, अर्थात कैंसर, वो रीढ़ की हड्डियों का भी होता है।
3: अंत में क्या कहेंगे, स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए, खुश रहिए और बीमारियों से दूर रहिए।
4: सक्रिय रहें, भोजन मोटा रूखा ज्यादा करें, भोजन में सामग्रियों का प्रवेश करें और शरीर के अंगों को एक स्थिति में लगातार रखने की बजाय उसका थोड़ा बहुत संचालन होना चाहिए, तभी आप स्वस्थ रह सकते।
3: बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजचंद्र झा, हड्डी जोड़ एवं नस रोग विशेषज्ञ। बड़ी अच्छी आपने बात की कि रीढ़ की हड्डियों की बीमारी से हम कैसे बचें और अपने खान पान में हम किन किन संतुलित आहारों का सेवन करें। बहुत बहुत शुक्रिया। और मित्रों, एक नई जानकारी के साथ हम पुनः आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार।
2: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप जानकारी ले रहे थे रीढ़ की हड्डी की बीमारी और सावधानियों के बारे में। भेंट वार्ताकार थे डॉक्टर राजचंद्र झा, भेंट करता थे संजीव कुमार लाल। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। सुबह सुरीली के लिए बस थोड़ा इंतजार।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: आइए सुबह सुरीली में सबसे पहले सुनते हैं फिल्म अनहरी का ये गीत, जिसे गाया है मुकेश ने, शब्द रचना शैलेंद्र की, संगीत शंकर जयकिशन का।

जिस देश में गंगा बहती है, यह है फिल्म जिसका गीत अब आप सुनेंगे, मुकेश का गाया हुआ, शब्द रचना शैलेंद्र की, संगीत शंकर जयकिशन का।

आप सुन रहे थे फिल्म अनोखी रात का गीत, जिसे गाया था मुकेश ने। शब्द रचना थी इंदिवर की, संगीत था रोशन का।

आप सुन रहे थे फिल्म शोर का गीत, शब्द रचना थी संतोष आनंद की, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, स्वर लता मंगेशकर और मुकेश का। और आइए अब सुनते हैं फिल्म ममता का ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, शब्द रचना है मजरूह की, संगीत रोशन का।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अपने से ऊपर का जो स्टूडेंट है, हमसे ज्यादा होशियार है, उसको कहो 5-10 मिनट मेरे साथ बैठो, मुझे बताओ मैं ये सोच रहा हूँ ठीक है क्या, तुम करेक्ट करो।
0: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: गोलमाल, यह है फिल्म जिसका गीत अब आप सुनेंगे किशोर कुमार का गाया हुआ। गुलजार के बोल हैं, संगीत है आरती परमन का।

0: सुबह सुरीली में आज बस इतना ही। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं खुला आकाश। इस कार्यक्रम में सुनते हैं डॉक्टर शैलेश कुमार मिश्रा की वार्ता, गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर एक बहुआयामी व्यक्तित्व।
1: मशहूर फ्रांसीसी साहित्यकार रोम्या रोला ने कहा था, गांधी और रविंद्रनाथ एक हिमालय से निकलकर पूर्व और पश्चिम में बहने वाली गंगा और सिंधु के सदृश दो धाराएं हैं। सचमुच रविंद्रनाथ ठाकुर संसार को आर्य संस्कृति की महान देन है। गुरुदेव अपने नामानुरूप सूर्य की सी अप्रतिम तेजस्विता के स्वामी थे। अगर किसी एक ही व्यक्तित्व में कवि, उपन्यासकार, नाटककार, कहानीकार, चित्रकार, संगीतज्ञ, तत्वज्ञानी, पत्रकार, अध्यापक तथा कुशल वक्ता के गुणों की छवि ढूंढनी हो तो भारतवर्ष बड़े गौरव से गुरुदेव का नाम ले सकता है। गीतांजलि जैसी दिव्य गीत रचना और शांति निकेतन जैसा श्रेष्ठ विद्याश्रम टैगोर जैसे बहुआयामी व्यक्तित्व की कल्पना में ही समा सकते हैं। ऐसे दिव्य दृष्टि संपन्न ऋषियों को कोई पुरस्कार क्या सम्मानित कर सकेगा, बल्कि पुरस्कार स्वयं उनसे सम्मानित हो जाता है। किसी लेखक का कथन है, व्यास, वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, पराशर आदि वैदिक ऋषि सभी कालों में वर्तमान पुरुष हो गए हैं। अगर लिखित इतिहास लुप्त हो जाए तो रविंद्रनाथ की गणना भी उन्हीं के समकालीनों में होंगी। सचमुच रविंद्रनाथ का रचना संसार उनके विराट बहुआयामी व्यक्तित्व की तेजस्विता से प्रदीप्त है। कविवर बनर्जी कुल के हैं, लेकिन समाज में सम्माननीय होने के कारण उनका वंश ठाकुर कहलाया। अंग्रेजी के उच्चारण ने ठाकुर को टैगोर बना दिया। कलकत्ता के जोड़ा सांको नामक भव्य पैतृक निवास पर 7 मई 1861 को देवेंद्रनाथ ठाकुर की 14वीं संतान के रूप में इस दिव्य विभूति का अवतरण हुआ। ठाकुर परिवार जमींदार परिवार था, बच्चों पर कठोर अनुशासन था। बालक रवि को पाठशाला की शिक्षा रास नहीं आई। वस्तुतः वे उस औपचारिक शिक्षा के लिए बने भी नहीं थे। परिणामतः कई पाठशालाएं बदलने के बाद अंत में उन्होंने विद्यालय छोड़ दिया। कहावत है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, किंतु रवि और कवि दोनों एक साथ हों तो रचना के विचारों की ऊंचाई का अनुमान करना सहज नहीं। बालक रवि के भीतर बचपन में ही कवित्व का सूर्योदय हो चुका था। अपने संस्मरणों में वे कहते हैं कि कैसे जाड़ों का सूर्योदय निहारने के लिए वे दौड़कर निकल आते थे। उनके शब्द हैं, मुझे अब भी याद है कि कभी कभी विशेषकर उषा काल में मेरा मस्तिष्क एक अद्भुत आनंद से भर उठता था। ऐसा लगता था कि यह ब्रह्मांड कोई गहरा रहस्य ओढ़े हुए है। साहित्य, संगीत और अन्यान्य कलाएं रविंद्रनाथ को विरासत में मिली थी। गीतांजलि उनकी साहित्य रचना का चरमोत्कर्ष है। 1912 में जब वे इंग्लैंड गए तो गीतांजलि के अंग्रेजी अनुवाद की पांडुलिपि विलियम रोथेनस्टीन को दी, जिनसे वे पहले भी मिल चुके थे। इसके बाद तो जो भी उनके संपर्क में आया उनकी इस रचना से अभिभूत हुए बिना नहीं रह सका। प्रख्यात अंग्रेजी कवि विलियम बटलर यीट्स ने तो इसकी पांडुलिपि लिए कई कई दिनों तक रेलों, बसों और रेस्तराओं में घूमते रहे। 19 नवंबर 1912 को भारत लौटने पर उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने की सूचना मिली। निश्चय ही कविता के आसमान में उड़ने वाला पखेरू अब ऐसी ऊंचाई पा चुका था जहां से दुनिया उसे खूब पहचानने लगी थी। इकबाल ने उन्हें बुलबुल कहा था, लेकिन इस बुलबुल के पंख किसी गरुड़ के पंखों से कम न थे, जिसकी उड़ान से सारा संसार परिचित है। उनकी कविताओं की सतह बहुत कोमल मृदुल है, किंतु उनका अंतस्थल झंझावातों से घिरा है, जिसमें पीड़ा और त्रास का समुद्र हिलोरे लेता है। कम लोगों को मालूम है कि रविंद्रनाथ अपने जीवन में सीधे समतल राहों के राही नहीं रहे। 1901 में शांति निकेतन की शुरुआत हुई ही थी, जिसके विकास में उनकी त्यागमयी पत्नी उनकी सहायता करती थी, चल बसी। उसके बाद उनके लाख प्रयासों के बावजूद उनकी छोटी बेटी रानी चल बसी। उनके जीवन में त्रासदी का चरम तब आया जब 1907 में उनका प्रिय पुत्र शमींद्र भी चल बसा। गीतांजलि की करुणा के पीछे भी इसी आत्मविश्लेषण की गहरी पीड़ा है। गीतांजलि से उद्धृत उनकी कविता की कुछ पंक्तियां हैं। कोथाए आलो कोथाए ओरे आलो, बिरहा नले ज्यालो रे तारे ज्वालो, रे छे दीप न आछे शिखा, एई की भाले छिलके लिखा, एहार चे ये मरण सेजे भालो, निशी थे घन अंधकारे, डाकेन तोरे प्रेमाभिसारे, दुख दिए राखेन तोर मान, तोमार लागी जागेन भगवान। विरह विदीर्ण हृदय की इस अभिव्यक्ति का हिंदी अनुवाद कुछ यूं है। कहाँ छिपा आलोक, कहाँ खो गया उजाला, उसे करो उद्दीप्त बने बिरहानल ज्वाला, दीपक बाती नहीं भाग्य में ज्योति नहीं है, मर जाऊं मैं काश साध अवशेष यही है। कहाँ प्रकाश कहाँ है ज्वाला, कहाँ छिपा जा रहा उजाला, रात गहन तम सघन बहुत है, जाग थाम यादों की माला। विरहा नल सुलगा अंतर में, ज्योति जला दे उर प्रांतर में, तन को दीप बनाकर चल तू, मिल जाएंगे ईश डगर में। 1890 में रचित मानसी में रविंद्रनाथ प्रेम के कवि के रूप में दिखलाई पड़ते हैं। 1916 की रचना बलाका टैगोर की आवेगमय प्रवाह वाली कविता है। क्षणिका उनकी 1901 ईस्वी की रचना है, जिसमें वे प्रकृति की तरल संवेदना से अभिभूत दिखलाई पड़ते हैं। परतंत्र राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए बिना किसी आक्रामक तेवर के भी वे अपने गीतों से राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं। उनका इसी कोटि का गीत एकला चलो रे कोटि कोटि कंठों से गुंजित है। रविंद्रनाथ की काव्य कृतियों की तेजस्विता में उनके नाटकों की आभा थोड़ी क्षीण सी हो गई। उनकी नाट्य रचना का फलक काफी विस्तृत है। वाल्मीकि की प्रतिभा 1881 ईस्वी की रचना है, जिसमें वाल्मीकि के हृदय परिवर्तन और वाणी वरदान की कथा सरसता पूर्वक प्रस्तुत की गई है। 1882 ईस्वी में रचित काल मृगया दशरथ के बाण से हत श्रवण कुमार की कथा पर आधारित नाटक है। प्रकृति का प्रतिशोध उनका गीति नाट्य है, जिसमें एक किशोरी के प्रेम में निमग्न सन्यासी को यह प्रतीत होता है कि यह किशोरी उसकी मुक्ति में बाधक होगी, वह उसे छोड़कर चला जाता है, किंतु आसक्ति वैसी ही बनी रहती है, और जब वह लौट कर आता है तब वह मर चुकी होती है। उसे जीवन दृष्टि मिलती है कि महत का अधिष्ठान लघु है, अनंत का नश्वर और शाश्वत मुक्ति का अधिष्ठान प्रेम है। राजा और रानी, विसर्जन, अचलायतन, डाकघर तथा फाल्गुनी उनकी उल्लेखनीय नाटिकाएं हैं। हास्य कौतुक, व्यंग्य कौतुक, गोरे गलद उनके मुक्त हास्य के रंगों से रंगी नाट्य रचनाएं हैं। कविता और नाटकों की दुनिया रचने वाला यह रचनाकार उपन्यासों और कहानियों के क्षेत्र में भी अपना विशिष्ट स्थान रखता है। गोरा उनका सर्वाधिक चर्चित उपन्यास है। चोखेर बाली, नौका डूबी, चतुरंग, घरे बाइरे और योगायोग उनके चर्चित उपन्यास हैं। अपनी कहानियों में रविंद्रनाथ ने मध्यवर्गीय परिवेश की संवेदना को बड़ी कुशलता से स्पर्श किया है। काबुलीवाला कहानी से कौन परिचित न होगा। उनकी कहानियां प्रेम, वैयक्तिक, पारिवारिक और सामाजिक समस्याओं का आधार लेकर चलती हैं। उनकी प्रेम कहानियों में एक रात्रि, कन्यादान, महामाया तथा अध्यापक आदि के नाम लिए जा सकते हैं। सामाजिक कहानियों में दीदी और नष्ट नील प्रमुख हैं। पारलौकिक और रहस्यपरक तत्वों को आधार बनाकर लिखी गई कहानियों में संपत्ति दान, गुप्त धन, कादम्बिनी, निशीथ और क्षुधित पाषाण के नाम उल्लेखनीय हैं। रविंद्रनाथ की रचना धर्मिता ने साहित्य की प्रायः सभी विधाओं का स्पर्श किया है। रविंद्रनाथ केवल शब्दों के चित्रकार ही नहीं थे, बल्कि एक कुशल चित्रकार भी थे। उनकी बनाई कलाकृतियां इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। रविंद्रनाथ का संपूर्ण वाङ्मय उन्हें कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार, दार्शनिक और एक कुशल अध्यापक सिद्ध करता है, किंतु सच्चे अर्थों में वे एक कवि थे और स्वयं भी उन्होंने यह बात स्वीकार की है। अपने 70वें जन्म दिवस पर दिए गए वक्तव्य में उन्होंने कहा था कि जो धरती की आत्मा के निकट हैं, जो उससे ही बने हैं, उसी में ढले हैं, जो अपना अंतिम विराम उसी में पाएंगे, मैं उन सब का मित्र हूँ, मैं कवि हूँ, आमी कवि। सचमुच रविंद्रनाथ जैसा दिव्य दृष्टि संपन्न कवि कभी कभी ही जन्म लेता है।
0: खुला आकाश कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर शैलेश कुमार मिश्रा की वार्ता गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर एक बहुआयामी व्यक्तित्व। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।

युवा दोस्तों को संबोधित कार्यक्रम युवाणी आप सुनेंगे शाम 5:02 पर। इस कार्यक्रम में आपको जानकारी मिलेगी, घर में भी लगाएं पौधे, पौधों से शुद्ध होता है वातावरण। इतिहास में आज के दिन की भी आपको जानकारी मिलेगी, कई रोचक तथ्य भी आप इस कार्यक्रम में जान पाएंगे। प्रस्तुति होगी गौरव पांडे की।

श्रमिक लोक कार्यक्रम में आप सुनेंगे मां जीवन की पहली शिक्षक। रेडियो से डिजिटल युग तक आकाशवाणी की यात्रा की भी जानकारी इस कार्यक्रम में आपको मिलेगी। सड़क सुरक्षा का संकल्प, जिम्मेदार नागरिक की पहचान, नई श्रम संहिता में श्रमिकों की सामाजिक और स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधित भी जानकारी आपको इस कार्यक्रम में मिलेगी। प्रस्तुति होगी प्रशांत कौरव की, सूत्रधार होंगे श्वेता आर्या और आशीष कश्यप। खेतीबाड़ी कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम 6:02 पर। इस कार्यक्रम में चर्चा होगी जैविक कीट प्रबंधन पर, बदलते

मौसम का झारखंड के कृषि और वनों पर प्रभाव पर भी आपको जानकारी मिलेगी। कृषि गीत भी इस कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे। प्रस्तुति होगी संजीव कुमार लाल की।

मित्रों, जिंदगी साइकिल चलाने की तरह है। जब तक आप पैडल मारते रहेंगे, नहीं गिरेंगे। सुख दुख जीवन के दो पहलू हैं, कभी सुख तो कभी दुख। दुख आए तो घबराना नहीं और सुख आए तो इतराना नहीं।

रक्तदान महादान है। एक स्वस्थ व्यक्ति हर 3 महीने पे रक्तदान कर सकता है। अपने जीवन काल में ऐसा कर वह कई जिंदगियां बचा सकता है।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी देर में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वह हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ चार श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की और ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 9 भारतीय महिला मुक्केबाज फाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सदस्यों को संबोधित करेंगे और यहां पर नए ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। फाउंडेशन द्वारा संचालित समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रम का उद्घाटन भी उनके द्वारा होगा। आर्ट ऑफ लिविंग केंद्र जाने के पहले प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कर्नाटक विधानसभा के विपक्ष के नेता आर अशोका ने बताया कि विभिन्न राज्यों में पार्टी की जीत के कारण अभिनंदन कार्यक्रम

0: भी आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन के संदर्भ में बेंगलुरु पुलिस ने वाहन संचार पर कुछ पल के लिए रोक लगाई है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में कई विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज HICC में आयोजित कार्यक्रम दौरान 9,400 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से जहीराबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और वारंगल में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशील रखना शामिल है। इसके साथ ही वह काजीपेट विजयवाड़ा रेलवे ट्रिपलिंग परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जनसभा और सरकारी कार्यक्रमों के समापन के बाद प्रधानमंत्री जामनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रीनिवास मंकाली, आकाशवाणी न्यूज, हैदराबाद।
1: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए मानक स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक सोएज ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली और मियावाकी वनों के माध्यम से ट्रस्ट तेजी से नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पहलों ने अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं को घर बैठे पूजा बुक करने और प्रसाद प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसी विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी के साथ ही देश और दुनिया भर से प्रतिवर्ष 97 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: तमिलनाडु में तमिलगा मैत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय को आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के नेहरू इंदौर स्टेडियम में होगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर श्री विजय और 9 मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और बड़ी संख्या में लोगों के चेन्नई पहुंचने की संभावना है।
4: टीवीके की जीत के नायक सी जोसेफ विजय आज चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विजय ने फिल्म नालैया थिरपू से फिल्म जगत में प्रवेश किया। बाद में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। इनमें कई राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी फिल्में भी शामिल है। यह चुनाव मुख्य रूप से युवाओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के बीच था। इस बार उन लोगों ने भी वोट किया जो कभी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते थे। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद टीवीके को 108 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि यह बहुमत सिद्ध करने के लिए काफी नहीं था, लेकिन फिर भी जोसेफ विजय कांग्रेस, VC के वामपंथी दलों और IUML के समर्थन से बहुमत हासिल करने में कामयाब रहे। विजय इतिहास रचते हुए पहली बार ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विजय ने उंगा विजय नान वारिन के नारे के साथ विजय ने ये चुनाव जीता है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं इशिका।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। एक रिपोर्ट।
5: एन रंगासामी 13 मई को पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में AINRC के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की शानदार जीत के बाद श्री रंगासामी रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में श्री रंगासामी थट्टन चावड़ी और मंगलम विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित हुए। शुक्रवार को श्री रंगासामी ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने निर्वाचित विधायकों के समर्थन पत्र भी प्रस्तुत किए, जिनमें सरकार बनाने की अनुमति मांगी गई है। 30 सदस्यीय विधानसभा में NDA को 18 विधायकों का समर्थन प्राप्त हुआ है। पुदुचेरी से विवेन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: केरला में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आज सुबह 9 बजे गुवाहाटी में होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। बैठक के बाद इसी स्थान पर एनडीए विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद एनडीए विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आर एन रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और पांच कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
8: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
7: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट।
9: नए नियम में प्रवेश स्तर से लेकर सबसे अनुभवी स्तर तक 4 श्रेणियों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार का तर्क है कि वर्तमान वेतन स्तर 20 वर्ष पहले तय किए गए थे और अमेरिकी श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते। इस नियम के अंतर्गत 26 मई तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। प्रवेश स्तर के श्रमिकों के लिए वर्तमान वेतन बढ़ाकर $97,700 से अधिक करने का प्रस्ताव है। ये पुरानी दरों से करीब 43% अधिक है। वर्तमान प्रणाली से नियोक्ता विदेशियों को समान रूप से कार्यरत अमरीकी कर्मचारियों की तुलना में काफी कम वेतन पर नियुक्ति कर लेते हैं। प्रस्तावित परिवर्तन से H-1B, H-1B1, E-3 और PERM श्रम प्रमाणन कार्यक्रमों में लागू वर्तमान वेतनमान में वृद्धि होगी। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रामजेट कमस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की है। एक रिपोर्ट।
10: इस सफल परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इससे भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। कम्बस्टर को DRDO ने उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित किया है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित तरल हाइड्रोजन ईंधन और उन्नत थर्मल बैरिंग कोटिंग तथा आधुनिक विनिर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और उद्योग भागीदारों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान श्री शाह राहत और बचाव उपायों में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तत्परता का आकलन करेंगे। शुरुआती चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसीय समन्वय की भी समीक्षा की जाएगी ताकि जान माल का नुकसान कम से कम किया जा सके। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ट्रिनिडाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ दक्षिण ट्रिनिडाद में एक कृषि प्रसंस्करण केंद्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत की सीड्स पहल के अंतर्गत संचालित यह केंद्र ट्रिनिडाद और टोबैगो के लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करेगी और कृषि क्षेत्र को नई गति देगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
11: ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। अंडर 15 में अक्षिता ने 30 से 33 किलो में, अंजी ने 37 किलो में और सोनिया ने 40 किलो में जीत हासिल की। तन्वी ने 43 किलो में, हंसिका अत्री ने 46 किलो में और सुनैना ने 58 किलो में तथा भूमिका ने 61 किलो और तन्वी ने 64 किलो में जीत हासिल की। इसके अलावा आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। प्रतियोगिता में कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से मात दी।
1: मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल

0: गांगे क्षेत्र के कुछ इलाकों में आंधी आने की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद लवलीन। शुभेंदु अधिकारी के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर हिंदुस्तान ने लिखा है, शुभेंदु के साथ बंगाल में भाजपा युग आरंभ। दैनिक जागरण के अनुसार इतिहास के पन्नों में शनिवार को एक ऐसी इबारत लिखी गई जिसकी कल्पना भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दशकों पहले की थी। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, 74 साल में पहली बार भगवा बंगाल। तमिलनाडु में राजनीतिक अनिश्चितता समाप्त। अभिनेता से राजनेता टीवी के प्रमुख के आज शपथ लेने की खबरें सभी अखबारों में हैं। अमर उजाला की सुर्खी है, तमिलनाडु में कल सारे दिन चली राजनीतिक गतिविधियों को फिल्मी सीन बताते हुए लिखा है, दिन भर चला सस्पेंस, शाम को ऐलान के बाद जश्न। केंद्र सरकार द्वारा चारों नए लेबर कोड से जुड़े नियम नोटिफाई करने को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता से देते हुए 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा, अतिरिक्त काम कराने के लिए कर्मचारी की सहमति जरूरी होगी और ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से करना होगा। एयर डिफेंस को चकमा देने वाली विशेष मिसाइल का कल सफल परीक्षण किए जाने पर हिंदुस्तान लिखता है, एक बार में कई दुश्मनों को भस्म कर देगी अग्नि मिसाइल। पत्र ने इसे आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम बताया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस के अवसर पर गूंजे मंत्र, हिंदू परंपरा से शांति पाठ, राजस्थान पत्रिका में है। पत्र लिखता है कि इसकी शुरुआत 1952 अमरीकी कांग्रेस के कानून के अंतर्गत हुई थी। अमर उजाला की यह खबर चिंतित करती है, इतिहास का सबसे गर्म अप्रैल, विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया अब पेरिस समझौते में तय 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के करीब पहुंच रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में चरम मौसमी घटनाएं और गंभीर हो सकती हैं। नवभारत टाइम्स की खास खबर है, डायनासोर के बाद गधों की बारी, घट रही आबादी। पत्र ने इसे अस्तित्व का संकट बताते हुए लिखा है कि सरकार ने गधों की घटती आबादी पर चिंता जाहिर करते हुए इनके संरक्षण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। आज मदर्स डे पर सभी अखबारों ने विशेष आलेख लिखे हैं। दैनिक भास्कर लिखता है, मां होने का हक बच्चों को मुश्किल से बचाना नहीं लड़ना भी सिखाना है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वे हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ 4 श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रैमजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to visit Karnataka and Telangana today to launch multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Hyderabad and participate in 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru. TVK Chief C. Joseph Vijay to be sworn in as Chief Minister of Tamil Nadu this morning. President Draupadi Murmu appoints N. Rangasamy as Chief Minister of Puducherry. Centre operationalises 4 labour codes with publication of rules. DRDO achieves major breakthrough in hypersonic missile development by conducting long-duration tests of scramjet combustor. And 9 Indian boxers advance to finals of Asian Boxing Under-15 and Under-17 Championships in Tashkent. Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana today. At around 11 a.m., the Prime Minister will participate in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru and also inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. More from our correspondent.
3: Prime Minister Narendra Modi will address the devotees of Art of Living Foundation and inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir or Meditation Hall at the premises. He will also launch the year-long projects of the foundation on mental well-being, rural development, nature conservation and social transformation. Before proceeding to Art of Living International Center, the Prime Minister will address the BJP leaders and workers at HAL Airport. The leader of the opposition,

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। समय पर वेतन का भुगतान अनिवार्य, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रावधान शामिल। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, राज्य सरकार विकास के हर मोर्चे पर विफल साबित। स्वास्थ्य, बिजली, पानी समेत मूलभूत सुविधाओं के लिए प्रदेश में लोग परेशान। रांची में आज चलाया जाएगा विशेष स्वगणना अभियान। प्रशासन ने लोगों से डिजिटल माध्यम से भाग लेने की अपील। ऑनलाइन पोर्टल से स्वयं दर्ज कर सकते हैं जानकारी। खूंटी के जिलिंगा जंगल से पीएलएफआई के 2 उग्रवादी गिरफ्तार। धनबाद में हथियारों के साथ दबोचे गए 4 अपराधी। और मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के कई जिलों में आज बारिश, तेज हवाएं चलने, गर्जन वज्रपात को लेकर जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स तथा संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान अनिवार्य, सामाजिक सुरक्षा अनुदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन

0: के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा। इन उपायों से संविदा कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी और वैधानिक देय राशियों के भुगतान में चूक कम हो सकेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में आंशिक बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान श्री शाह राहत और बचाव उपायों में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तत्परता का आकलन करेंगे। शुरुआती चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय की भी समीक्षा की जाएगी ताकि जान माल का नुकसान कम से कम किया जा सके। केंद्रीय गृह मंत्री दीर्घावधि बाढ़ रोकथाम उपायों की प्रगति की भी समीक्षा करेंगे। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड की जेएमएम कांग्रेस गठबंधन सरकार पर राज्य की मूलभूत व्यवस्था को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पतालों की स्थिति खराब है और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है। अन्नपूर्णा देवी ने दावा किया कि राज्य सरकार विकास के हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है।
1: अस्पताल की स्थिति इतनी बदतर है और बहुत ही कुव्यवस्था है। निर्बाध रूप से बिजली देने की बात झारखंड सरकार की थी, लेकिन आज की स्थिति है 6 घंटा 8 घंटा लोगों को बहुत ही मुश्किल से ये बिजली भी मिल पा रही है। और भ्रष्टाचार के वजह से नल जल योजना, जो इतनी महत्वाकांक्षी योजना, आज आम लोगों को पानी की किल्लत हो रही है। आने वाले समय में निश्चित रूप से इस सरकार का जाना तय है।
0: जनगणना 2027 के तहत रांची जिले में आज विशेष सेल्फ एन्यूमरेशन ड्राइव चलाया जाएगा। उपायुक्त सह प्रधान जनगणना पदाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने लोगों से दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक डिजिटल माध्यम से स्वगणना में भाग लेने की अपील की है। प्रशासन ने बताया कि नागरिक se.census.gov.in पोर्टल पर जाकर स्वयं अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं। जनगणना से जुड़ी सभी सूचनाएं जनगणना अधिनियम 1948 के तहत पूरी तरह गोपनीय रखी जाएंगी। साहिबगंज जिले में समाहरणालय परिसर में सेंसस 2027 अंतर्गत आम जनों को जागरूक करने के उद्देश्य से एलईडी प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह जागरूकता वाहन जिले के विभिन्न शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों का प्रचार प्रसार करेगा तथा नागरिकों को स्वगणना के प्रति प्रेरित करेगा। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने जिले के विभिन्न निजी विद्यालयों के प्राचार्यों और प्रतिनिधियों के साथ शुल्क निर्धारण एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत वंचित वर्ग के बच्चों के नामांकन को लेकर बैठक की। इसमें झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अंतर्गत जिला स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति की पूर्व की बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
2: पिछले बैठक में हम लोगों ने सभी स्कूल्स के साथ जो किए थे उसके नेक्स्ट फॉलो अप मीटिंग थी और 149 सीबीएसई आईसीएसई स्कूल्स में से 129 स्कूल्स ने अपना जो फीस मैनेजमेंट कमिटी गठित किया है और पीटीए भी गठित किया और पूरा अपलोड भी किया है। 20 स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने नहीं किए हैं और उनको सूचना भी नहीं दी है। जिला प्रशासन आगे की कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई करेगी।
0: रांची व्यवहार न्यायालय परिसर में पलाश आजीविका कैफे का उद्घाटन झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश एवं झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद ने किया। नगड़ी प्रखंड की स्वयं सहायता समूह की महिलाएं इस कैफे का संचालन करेंगी, जहां पारंपरिक व्यंजनों सहित विभिन्न खाद्य पदार्थ उपलब्ध होंगे। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। खूंटी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जिलिंगा जंगल में छापेमारी कर प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI के 2 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया कि इनके पास से 2 देशी कट्टा और गोलियां बरामद की गई हैं तथा वे संगठन के लिए लेवी वसूली में सहयोग करते थे।
3: दो लोगों को हम लोगों ने हिरासत में लिया है और

0: तैयारी जारी है।
1: बरवड्डा के एक व्यापारी को डरा धमका के इनसे पैसे वसूलने की तैयारी थी। जब इसके तह तक पहुंचा गया तब पाया गया कि चार अभियुक्त थे जो प्रिंस खान और फिर मेजर वगैरह का नाम लेके गलत रूप से रंगदारी वसूल रहे थे। इसमें से एक जयकांत शिकरे केंदुआ का रहने वाला है और नामी गिरावे डकैत था पहले और अभी भी इस टाइप चोरी चकारी वाले केसेस में संलिप्त रहता है।
0: देवघर जिले में पुलिस ने सारठ और खागा थाना क्षेत्र के गांवों में साइबर जागरूकता अभियान शुरू किया है। पुलिस ने साइबर अपराधियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई और संगठित अपराधियों की संपत्ति जब्त करने की चेतावनी दी, साथ ही कहा कि संरक्षण देने वालों को भी चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। अभियान में टोल फ्री नंबर 1930 के प्रचार पर जोर दिया गया है। आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए भारतीय महिला वॉलीबॉल खिलाड़ियों के लिए ओपन सिलेक्शन ट्रायल और तैयारी शिविर का आयोजन KIIT भुवनेश्वर में किया जा रहा है। 22 मई से काठमांडू नेपाल में आयोजित होने वाली कावा महिला चैंपियनशिप 2026 के लिए चयन परीक्षण कैंपस भुवनेश्वर में 13 और 14 मई को आयोजित होगा। जमशेदपुर एफसी को जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बेंगलुरु एफसी के खिलाफ 1-0 से हार का सामना करना पड़ा। बेंगलुरु के लिए मैच का एकमात्र गोल रयान विलियम्स ने 38वें मिनट में किया। मौसम विभाग ने रांची खूंटी समेत राज्य के कई जिलों में आज बारिश, तेज हवाएं चलने, गरज वर्जन और वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही 16 मई तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी अखबारों ने बंगाल में नई सरकार के गठन की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। हिंदुस्तान लिखता है, शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर ली शपथ। दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, तमिलनाडु में विजय पथ, नतीजे के 5 दिन बाद बहुमत, शपथ ग्रहण आज। प्रभात खबर के शब्द हैं, विश्वविद्यालयों के वित्त विभाग में 3 साल से कार्यरत कर्मियों को बदलने का आदेश। दैनिक जागरण की सुर्खी है, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा गिरफ्तार। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। समय पर वेतन का भुगतान अनिवार्य, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रावधान शामिल। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, राज्य सरकार विकास के हर मोर्चे पर विफल साबित, स्वास्थ्य, बिजली, पानी समेत मूलभूत सुविधाओं के लिए प्रदेश में लोग परेशान। रांची में आज चलाया जाएगा विशेष स्वगणना अभियान, प्रशासन ने लोगों से डिजिटल माध्यम से भाग लेने की अपील। ऑनलाइन पोर्टल से स्वयं दर्ज कर सकते हैं जानकारी। खूंटी के जिलिंगा जंगल में PLFI के 2 उग्रवादी गिरफ्तार। धनबाद में हथियारों के साथ दबोचे गए 4 अपराधी। और मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के कई जिलों में आज बारिश, तेज हवाएं चलने, गर्जन वज्रपात को लेकर जारी किया ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माय गॉव पर एक मेल भेजा, रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं, बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है कि हम कूड़ा कचरा उसमें डालें, और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था, मैं भरत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुंचाई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूं।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं संवेद गान शिक्षा असमिया भाषा में। गीतकार हैं सतीश दास।

0: अच्छा बच्चों, आज हम तुम्हें असमिया भाषा का एक गीत सिखाएंगे। सीखना चाहते हैं ना असमिया भाषा गीत?
1: जी हाँ।
0: अच्छा, ये जो गीत है इसमें अपने देश की मट्टी के प्रति देशवासियों के प्रेम का, प्यार का वर्णन है। तो मैं सिखाऊंगा ये गाना और मेरी मदद करेंगी नलिनी जी साथ। सबसे पहले तुम गीत के बोल लिख लो। एई माती रे,
1: माती रे,
0: एई माती रे, मोरो मोते,
1: मोरो मोते,
0: माती के,
1: माती के,
0: सुमिलो,
1: सुमिलो,
0: माती के सुमिलो, माती के सुमिलो। हो गया ना यहाँ तक? आगे लिखो। एई माती ते, एई माती ते जीवन, एई माती ते, ज नहीं बोलना इसको, ज बोलना। ये एई माती ते जीवन सोबी, जीवन
1: सोबी,
0: जी कैसे, ज के नीचे बिंदी लगा लेना है ना। तो जीवन सोबी आकी, आकी दोबारा आकी, आकी आकी मोसीलो। अब पहला अंतर आएगा इसके बाद। दूर आकाहार, ये जो ना आका, आकाश श को बोलते वहां ह की तरह से, तो आकार ये ख और ह के बीच में, आका खार भी नहीं, आका हार भी नहीं, आका हार, आका हार लिखो। दूर आका हार, रोहन कियोनु, लागे लागे, खागोर तोलीर, खागोर, खागोर, ख नहीं बोलना, ख, खागोर तोलीर, खागोर मतलब समुद्र के तल में, तो खागोर तोलीर, मानिक कियो, मानिक कियो नू, मानिक कियो नू, लागे लागे,
1: लागे लागे।
0: इसके आ गया है आहा आहा, फिर मातीर बुकुत, मातीर बुकुत, मोनोर मालोती,
1: मालोती
0: बूटोलो,
1: बूटोलो
0: मोनोर मालोती बूटोलो। इसके बाद फिर वही आ जाएगा, एई माती रे मोरो मोते। फिर दूसरा अंतरा है मोनोर कोरोनी रे,
1: कोरोनी रे,
0: हुरोर, हुरोर पापोरी रे,
1: पापोरी रे,
0: पापोरी रे आजी,
1: आजी।
0: इतना हो गया ना?
1: जी हाँ।
0: आगे हुकुमार, थापो,
1: थापो
0: नाहुजुवा,
1: नाहुजुवा,
0: हुकुमार थापो नाहुजुवा। आगे लिखा है ना?
1: जी हाँ।
0: खुंदौर,
1: खुंदौर,
0: खुदीन और
1: खुदीन और
0: खुदीन और नहीं खानी ख खुदीन और
1: खुदीन और
0: नौतून
1: दृष्टि
0: ये ट को जरा त जैसा बोलना सॉफ्ट करके दृष्टि दृष्टि शनि सही बोलना दृष्टि
1: दृष्टि
0: कौनो
1: कौनो
0: ना हुआ
1: ना हुआ
0: आगे ना
1: जी
0: अच्छा ठीक है अब गाना सिखाना शुरू करते हैं स्वर दीजिए जरा

ऐसे कौनो ना हुआ खून, ऐसे बोलना एक बार और दूसरे ना हुआ, दूसरे में ऐसे लंबा कर लेना खून दौर से लो, एक दो तीन चार।

Dice la hora del café. अच्छा आप शुरू से लेंगे सारा गाना है ना। एक दो तीन चार।

0: संवित कांत शिक्षा अभी आप सुन रहे थे असमिया भाषा में। गीतकार थे सतीश दास। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: आपके परिवार के जो बड़े लोग हैं उनके साथ परीक्षा पे चर्चा पढ़ने के लिए कहिए, उसकी चर्चा कीजिए, और कोई मंत्र है तो खास लाइन करके बताइए, देखिए ये पीएम ने ये कहा है तुम पढ़ो।
1: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे रसरंजन।

माँ कोई भाषा नहीं, माँ कोई परिभाषा नहीं, माँ तो बस एहसास है जिसमें बसता हमारा पूरा संसार है, जिसमें बहती गंगा जमुना की निश्चल धारा। माँ सिर्फ माँ नहीं होती, वह तो घर की रौनक और जान होती है। सभी माओं को मदर्स डे की शुभकामनाएं।

माँ सिर्फ कोमलता की प्रतीक नहीं, वह आत्मविश्वास की भी मिसाल है। उसकी मुस्कान में जादू है, वह हर रंग में खुद को ढाल लेती हैं। माँ जब सपनों को सजाती हैं तो उसमें पूरे परिवार की खुशियाँ झलकती हैं। उसकी हर छोटी खुशी घर को रोशन कर देती है। यह कहना गलत नहीं होगा कि वह खुद में ही एक त्यौहार है।

0: सुरक्षा स्कीम के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: कम्प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RTLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RTLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: माँ के सपने छोटे नहीं होते, बल्कि वह छोटी छोटे सपनों में बड़ी दुनिया बनाती है। वह संघर्ष करती है, गिरती है, फिर उठती है और हर बार पहले से ज़्यादा मजबूत बनती है।

0: उदित नारायण के गाए फिल्म लाडला के इस गीत के साथ ही संपन्न हुआ आज का रसरंजन।
1: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
2: बेटा
3: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे।
2: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
4: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो
1: कहाँ
4: एडमिशन कराने, खाता हुआ एक्टिव।
5: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
7: ये देख कैसे
8: हैप्पी बर्थडे भाई।
7: दिखा
8: हाँ मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग।
9: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट।
10: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
11: आई नो पा, सेव करो सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
9: आई नो ना
11: आरबीआई कहता है
12: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत। सुनते हैं श्री जी एन उर्मा द्वारा गिटार पर राग नट भैरव। आलाप और जोड़ के बाद 2 गतें, दोनों ही गतें 3 ताल में निबद्ध हैं। तबले पर संगत कर रहे हैं श्यामानंद झा और हारमोनियम पर श्यामा प्रसाद नियोगी।

0: आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत। श्री जीएन उर्मा से आप सुन रहे थे गिटार पर रागनट भैरव, आलाप और जोड़ के बाद दो गतें, दोनों ही गतें तीन ताल में निबद्ध थीं। तबले पर संगत कर रहे थे श्यामानंद झा और हारमोनियम पर श्यामा प्रसाद नियोगी।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे अब से बस थोड़ी देर में।

0: बच्चों कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब बच्चे स्वस्थ होंगे और प्रसन्न भी। बच्चों आज है रविवार, यानी थोड़ी मस्ती, थोड़ा आराम और ढेर सारी फुर्सत का दिन। और आज की सुबह तो सच में बहुत सुहानी है।
1: सुबह का समय, हल्की धूप, ठंडी हवा और पेड़ों पर बैठी चहचहाती चिड़ियां, क्या दृश्य है ना? बच्चों कितना शांत और सुंदर लगता है ना?
0: बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद हमें सुप्रभात कह रही हो। और इस सुंदरता का एक अहम हिस्सा है ये छोटी छोटी चिड़ियाँ।
1: और ये नन्ही नन्ही चिड़ियाँ वातावरण और पर्यावरण के साथ साथ हमारे जीवन में भी खुशियाँ भर देती हैं। पेड़ों की डालियों पर फुदकना, आंगन में आना जाना और इनकी हर छोटी सी हरकत मन को मोह लेती है बच्चों।
0: लेकिन बच्चों क्या आप ये जानते हैं कि ये चिड़िया रहती कहाँ है? दिन भर तो इधर उधर फुदकती रहती हैं, कभी आंगन में, कभी छत पर, तो कभी पेड़ की डालियों पर, और शाम होते ही वापस अपने घर में।
1: हाँ बच्चों, इन चिड़ियों का एक छोटा सा घर होता है जिसे हम कहते हैं घोंसला। पेड़ों की डालियों पर बना वो नन्हा सा घर कितना छोटा दिखता है ना, उतना ही खास होता है।
0: हाँ बिल्कुल, पता है बच्चों चिड़िया अपना घोंसला बहुत मेहनत से बनाती है। वे सूखी टहनियाँ, घास, पत्ते और रेशों से अपना घर तैयार करती है। ये उनके लिए सिर्फ एक घोंसला नहीं होता बल्कि उनके पूरे परिवार के लिए उनका सुरक्षित संसार होता है।
1: हाँ बच्चों, तिनका तिनका जोड़कर प्रेम, धैर्य और इतनी मेहनत से चिड़िया अपना घोंसला तैयार करती हैं ताकि वो अपने बच्चों को सुरक्षित रख सके।
0: लेकिन कभी कभी हम अनजाने में, खेल खेल में या जिज्ञासा के कारण भी उनके घोंसले को छेड़ देते हैं, तोड़ देते हैं, नुकसान पहुंचा देते हैं, जो उनके लिए बहुत कष्टदायक होता है बच्चों।
1: बच्चों जरा सोचिए, अगर कोई हमारे घर को नुकसान पहुंचाए तो हमें कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना? ठीक वैसे ही चिड़ियां महसूस करती हैं, वो भी परेशान हो जाती है, दुखी हो जाती है।
0: इसलिए बच्चों हमें एक बहुत छोटी लेकिन जरूरी बात याद रखनी है कि घोंसले किसी का घर होते हैं, उन्हें छूना नहीं चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए।
1: अगर कभी पेड़ पर घोंसला दिखे बच्चों तो उसे दूर से देखें, बिना छुए, बिना उन्हें नुकसान पहुंचाए। अपने दोस्तों को भी इस बारे में बताएं क्योंकि चिड़िया भी हमारी तरह अपने घर से बहुत प्यार करती है।
0: बिल्कुल बच्चों, हम सब जानते हैं कि चिड़िया हमारे पर्यावरण का एक अनमोल हिस्सा है। वे न केवल प्रकृति को सुंदर बनाती हैं बल्कि हमारे पर्यावरण का संतुलन भी बनाए रखती हैं।
1: अगर हम घोंसलों को नुकसान पहुंचाते हैं बच्चों तो हम

0: हम न केवल चिड़ियों को दुख देते हैं बल्कि प्रकृति के संतुलन को भी बिगाड़ रहे होते हैं।
1: इसलिए याद रखें बच्चों कि पेड़ पौधे और चिड़ियाँ हमारी धरोहर हैं। उनकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। घोंसलों को छेड़ना गलत है और हमें दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करना चाहिए।
0: बच्चों, हमें पता है कि आप सब चिड़ियों से बहुत प्यार करते हैं, इनकी आवाज आपको अच्छी लगती है, लेकिन सच्चा प्यार केवल महसूस करने में नहीं है, सच्चा प्यार है उनकी सुरक्षा करने में, है ना?
1: हाँ बिल्कुल, हमें ये समझना होगा बच्चों कि प्रकृति में हर जीव का अपना स्थान और अपना महत्व है। इसलिए अगर चिड़ियों से है प्यार तो ना करें घोंसलों से छेड़छाड़।
0: वाह, क्या बात कही है दीदी ने।
1: बच्चों, अभी हमने बातें की अपने आसपास रहने वाली चिड़ियों की, जो हमारे घर आंगन और छतों पर फुदकती रहती है और पेड़ों पर अपना घर बनाती है।
0: लेकिन क्या आप जानते हैं बच्चों कि कुछ चिड़िया ऐसी भी होती हैं जो एक जगह हमेशा नहीं रहती। ये मौसम बदलने पर हजारों किलोमीटर दूर से हमारे देश में भी आती हैं और दूसरे देशों में भी जाती हैं।
1: और इन्हें ही कहा जाता है प्रवासी पंछी, यानी ऐसे पक्षी जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करते हैं। बच्चों जरा सोचिए, इतनी लंबी यात्रा करना इनके लिए कितना कठिन होता होगा, है ना?
0: तेज हवाएं, लंबा रास्ता, थकान, फिर भी ये नन्हे पंछी हिम्मत नहीं हारते बच्चों। जब ये हमारे यहाँ आते हैं तो हमारे तालाब, पेड़ पौधों और खेतों की शोभा और भी बढ़ जाती है।
1: बिल्कुल, ये प्रवासी पंछी ठंड के मौसम में हमारे यहाँ आती हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें अनुकूल वातावरण और भोजन मिल जाता है। बच्चों ऐसे कई प्रवासी पंछी हैं जो हमारे देश आते हैं, जैसे साइबेरियन क्रेन, राजहंस और बार हेडस गुस। साइबेरियन क्रेन साइबेरिया से भारत आता है, वहीं राजहंस ये अपनी गुलाबी रंगत के लिए जाने जाते हैं, और बार हेडस गूस ये बत्तख के प्रजाति के होते हैं बच्चों। और साइबेरियन क्रेन के बारे में और भी आपको बताएं तो ये अपनी लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध हैं।
0: इसके अलावा बच्चों, कॉमन कुकू ये भी सर्दियों में भारत आते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे पक्षी हैं जो भारत आते हैं, उन्हीं में से एक है यूरोपीय रोलर। ये एक सुंदर प्रवासी पक्षी है जो भारत आता है और खास करके ये गुजरात के क्षेत्र में ज्यादा देखा जाता है। इसके अलावा लाल पीठ वाले श्रीके, ये भी एक प्रवासी पक्षी है जो गुजरात में आता है और हमारे झारखंड में आता है। दीदी, सबसे ज्यादा हमारे झारखंड में आता है साइबेरियन पक्षी।
1: बच्चों आपने भी ये ध्यान दिया होगा ना कि सर्दियों में अचानक कुछ नए पंछी दिखाई देने लगते हैं जो बहुत सुंदर होते हैं। कुछ तो झुंड में उड़ते हैं और कुछ तालाब के पास दिखते हैं।
0: प्रवासी पक्षी सिर्फ सुंदर ही नहीं होते बच्चों, बल्कि ये हमारे सच्चे दोस्त भी होते हैं। ये कीड़े मकोड़े खाकर फसलों की रक्षा करते हैं, बीज फैलाकर नए पेड़ उगाने में मदद करते हैं और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं।
1: बिल्कुल बच्चों, जब भी आप आसमान में उड़ते इन पंछियों को देखें तो ये बात जरूर याद रखें कि ये सिर्फ पंछी नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर का सफर तय करने वाले हमारे मेहमान हैं, हमारे दोस्त हैं,
0: जिनका स्वागत करना, जिनकी मदद करना, सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है बच्चों, जो आप जरूर निभाएंगे और वो भी छोटे छोटे लेकिन बड़े ही महत्वपूर्ण काम हैं।
1: जैसे अधिक से अधिक पेड़ लगाकर, साफ पानी रखकर, पंछियों को डराए बिना और अपने आसपास का वातावरण साफ रखकर।
0: तो याद रखें बच्चों, ये भी हमारे दोस्त हैं जिन्हें हमारे प्यार और सुरक्षा की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें कभी परेशान ना करें, नुकसान न पहुंचाएं और इन्हें डराएं नहीं।
1: बिल्कुल, जब हम पक्षियों का ध्यान रखते हैं तो हमारा वातावरण और भी सुंदर हो जाता है बच्चों, और प्रकृति से प्रेम करना ही सच्ची समझदारी है। और बच्चों आपको एक बात और बता दें, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस वर्ष में मई के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है बच्चों। ये दिन पक्षियों के संरक्षण और उनके प्रवास के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है।
0: तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप जो हमारे यहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं, जो हमारे दोस्त हैं, आप उनकी सुरक्षा करेंगे और उन्हें किसी भी तरह का कोई नुकसान न पहुँचाएंगे। और दीदी, जानकारी की बातें तो बहुत सारी हैं आज हमारे पास, लेकिन उससे पहले हम बच्चों का कुछ मनोरंजन करवा दें तो कैसा रहेगा?
1: बिल्कुल, बच्चों को सुनवाते हैं ये बाल गीत।

0: कैसा लगा बच्चों ये गीत? अच्छा लगा ना? तो चलिए, हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं, वो भी कुछ सुनाना चाहते हैं। तो चलिए दीदी, उनसे भी कुछ सुन लेते हैं।
1: क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम प्रीशा नाया है।
1: आज आप अपने दोस्तों को क्या सुनाना चाहेंगी?
2: मैं अपने दोस्तों को एक कविता सुनाने चाहूंगी जिसका शीर्षक है विनती। ईश्वर तुमने सूर बनाया जो अंधियारा दूर भगाता, प्रभु तुमने चंदा चमका स्वयं जगता हमें सुलाता, तुमने जल की धार बहाई हमसे कहते बढ़ते जा, झजे सुर में झरना गाता कभी न तुम मन में घबरा, दीपक जल का हमें सिखाता तुम दुख सह कर भी सुख देना, धरती का कंकन सिखलाता सिर पर सारे दुख सह रहना, हम इस धरती पर रहते धरती माँ के संतान बने, हे प्रभु हम पर दया करो हम भी अच्छे इंसान बने, धन्यवाद।
3: वाह, बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छी कविता।
4: बच्चों कहते हैं अगर हौसले बड़े हो तो उम्र छोटी नहीं पड़ती। आज बाल सभा में हम मिलवाने जा रहे हैं आपको एक ऐसी नन्ही स्टार से जिसने अपनी अनोखी कला से सबको हैरान कर दिया है। सिर्फ 10 साल की उम्र और नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज। जी हाँ, नाक पर हुला हूप घुमाकर रिकॉर्ड बनाने वाली आदित्रि सिंह। बच्चों आदित्रि ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और वर्ल्ड रिकॉर्ड तक में अपना नाम दर्ज कराया है। तो चलिए स्वागत करते हैं नन्ही चैंपियन आदित्रि सिंह का। हेलो आदित्रि, बहुत स्वागत है आपका बाल सभा में।
5: थैंक यू।
4: अच्छा आदित्रि, सबसे पहले आप हमें बताइए कि आपको हुला हूप घुमाने का ये आइडिया कैसे आया, ये क्यों पसंद है आपको जबकि इतने सारे खेल हैं?
5: मुझे ये आइडिया अपने दोस्त को देखकर आया, वो इसको करती थी। बाकी खेल तो अच्छे हैं, लेकिन हुला हूपी में मुझे एक सुपर हीरो जैसा फीलिंग आती है। जब मैं हुला हूप घुमाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई जादुई शक्तियाँ हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं इसे टीवी देखते गाना सुनाते पैसे भी कर सकती हूँ।
4: बिल्कुल, क्या बात है। अच्छा आप एक बात सच सच बताइए कि रिकॉर्ड बनाते समय डर लगा था या मजा आया?
5: थोड़ा थोड़ा डर और बहुत सारा मजा मिलकर रिकॉर्ड की डर को गायब ही कर गया।
4: और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाने के लिए आप रोज कितनी प्रैक्टिस करती थी?
5: जब मेरे मन में रिकॉर्ड बनाने का ख्याल आया था तो मैं इसको खेलने समय करती थी लगभग एक घंटा, और मैं इसको सुबह भी करती थी। जहाँ लोग एक्सरसाइज और योगा करते हैं सुबह उठकर, वहीं मैं हुला हूप करती थी।
4: वाह, वैसे अभी आप किस क्लास में पढ़ती हैं?
5: 6A।
4: तो अब आप पढ़ाई के साथ खेल को कैसे मैनेज करती हैं?
5: मैं पढ़ाई और प्रैक्टिस के लिए अपना टाइम टेबल बनाती हूँ, स्कूल के काम करती हूँ, उसके बाद फिर मैं शाम को प्रैक्टिस करती हूँ, जिससे मेरे दोनों काम मैनेज हो जाते हैं।
4: बहुत खूब। और आपको और क्या पसंद है?
5: मुझे और स्केटिंग करना पसंद है, वेबबोर्ड चलाना पसंद है और रिबन डांस करना पसंद है।
4: चलते चलते अपने दोस्तों को आप क्या कहना चाहेंगी, कुछ संदेश देना चाहेंगी?
5: जी बिल्कुल, मैं अपने दोस्तों को ये बताऊंगी कि मस्ती के साथ साथ पढ़ाई और अपने हॉबी पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हम दिल से किसी चीज को करना चाहे ना तो वो हमें जरूर मिलता है। जैसे मैंने अपने हुला हूप के पैशन को एक रिकॉर्ड में बदल दिया।
4: बिल्कुल।
5: मैं अपने दोस्तों को बोलना चाहूंगी कि तुम भी मेहनत करो अपने हॉबी पे जो तुम्हारा हॉबी है, और उसमें सक्सेस हासिल करो, रिकॉर्ड बनाओ।
4: बिल्कुल सही कहा आदित्रि आपने, और शाबाश आदित्रि, आपने सच में साबित कर दिया कि मेहनत और आत्मविश्वास से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। और बाल सभा की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।
5: थैंक यू सो मच मैम।
3: आदित्रि से मिलकर बहुत अच्छा लगा, क्यों बच्चों? और आदित्रि जैसे बच्चों से हमें प्रेरणा भी मिलती है। तो चलिए अब कुछ और जानकारी की बातें।
4: हाँ बिल्कुल,
0: तो शुरू करते हैं जानकारी का ये सिलसिला, और अगली जानकारी क्या है?
4: बच्चों गर्मियों का मौसम आ चुका है, तेज धूप और गर्म हवाएं केवल हमें ही नहीं बल्कि हमारे पेड़ पौधों को भी प्रभावित करती हैं।
0: हाँ बिल्कुल, गर्मी अपने पूरे असर में है बच्चों, और इस मौसम में सिर्फ हम ही नहीं हमारे बगीचे के पौधे भी परेशान होते हैं। बच्चों पौधे बोल नहीं सकते लेकिन उनकी हालत बहुत कुछ कह जाती है।
4: हाँ, और अगर समय पर ध्यान न दिया जाए तो हरियाली सूखने लगती है, खासकर गर्मियों में। इसलिए जरूरी है कि हम बगीचे की देखभाल को हल्के में ना लें। बच्चों, आपने भी देखा होगा कि गर्मी में पौधे जल्दी सूखने लगते हैं।
0: ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि तेज धूप में मिट्टी की जो नमी है वो जल्दी खत्म हो जाती है। इसलिए सबसे जरूरी है कि पौधों को समय पर पानी देना। सुबह या शाम के समय पौधों को पानी देना सबसे अच्छा होता है।
4: दोपहर की तेज धूप में पानी देना नुकसान कर सकता है बच्चों, और बहुत ज्यादा पानी भी पौधों के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए पानी उतना ही दें जितनी
0: पौधों को आवश्यकता हो। और सिर्फ पानी ही नहीं बच्चों, मिट्टी का भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अगर मिट्टी सूखी और सख्त हो जाए तो पौधों की जड़ें ठीक से सांसें नहीं ले पाती।
4: हाँ, इसलिए समय समय पर मिट्टी को हल्का सा खोदना जरूरी है। इससे हवा अंदर तक पहुंचती है और पौधे मजबूत बनते हैं।
0: एक और बात जो अक्सर लोग भूल जाते हैं और वो ये है कि पौधों को छांव देना। बहुत तेज धूप में छोटे पौधों को छांव की जरूरत होती है बच्चों, तो अगर संभव हो तो पौधों को तेज धूप से बचाने के लिए हल्की छाया की व्यवस्था जरूर करें। छतरी या कपड़े की मदद से आप ऐसा कर सकते हैं।
4: हाँ बच्चों, ये छोटी छोटी कोशिशें ही तो बड़े बदलाव लाती हैं। बच्चों, एक और महत्वपूर्ण काम है जो आप कर सकते हैं, और वो है सूखे पत्तों को हटाना। क्योंकि सूखे और पीले पत्ते सिर्फ पौधे की खूबसूरती को ही नहीं घटाते बल्कि उसकी ताकत भी कम कर देते हैं।
0: इसलिए उन्हें समय पर हटाना जरूरी है बच्चों। इसके साथ ही साथ छोटे कीड़े भी पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसके लिए महंगे दवाइयों की जरूरत नहीं होती। नीम का पानी या हल्का घरेलू उपाय भी पौधों की रक्षा कर सकता है बच्चों।
4: गमलों को हमेशा एक ही जगह पर ना रखें बच्चों, उन्हें ऐसी जगहों पर रखें जहां उन्हें सही मात्रा में धूप और हवा मिल सके। क्योंकि हर पौधे की जरूरत अलग होती है, कुछ को ज्यादा धूप

0: चाहिए तो कुछ को कम।
1: और अगर हम ये समझ लें तो पौधा खुद ही स्वस्थ रहने लगते हैं। बच्चों, लापरवाही धीरे धीरे असर दिखाती है और जब तक हम समझते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।
0: इसलिए ध्यान रखना जरूरी है कि बगीचे की देखभाल सिर्फ काम नहीं, एक जिम्मेदारी है जिसे निभाना हमें सीखना चाहिए। और ये सिर्फ आपके माता पिता की जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी भी जिम्मेदारी है।
1: हम सबकी जिम्मेदारी बनती है बच्चों, पेड़ पौधों की देखभाल करें।
0: बिल्कुल। और एक छोटा सा कदम और, रसोई से निकलने वाले सब्जियों के छिलके इत्यादि का अगर सही तरीके से इस्तेमाल किए जाए तो वो पौधों के लिए खाद बन सकते हैं बच्चों।
1: यानी हम कचरे को भी काम में ला सकते हैं बच्चों। और ये आदत न सिर्फ बगीचों को बेहतर बनाती है बल्कि पर्यावरण को भी सुरक्षित रखती है।
0: याद रखें बच्चों, अगर हम प्रकृति से लेते ही रहेंगे और कुछ लौटाएंगे नहीं तो एक दिन संतुलन बिगड़ जाएगा।
1: इसलिए बच्चों, बगीचे की देखभाल को समझदारी और संवेदनशीलता के साथ अपनाएं, क्योंकि यही छोटे कदम बड़े बदलाव ला सकते हैं।
0: हाँ बिल्कुल, बगीचे की देखभाल को आदत बनाएं, क्योंकि हर पौधा, हर हरा पत्ता हमारे भविष्य की सांस है।
1: तो दीदी, हमने बच्चों को जानकारी दे दी कि गर्मियों में बगीचों की देखभाल कैसे करना है, पेड़ पौधों की देखभाल कैसे करनी है। और अब बच्चों को हम सुनाते हैं एक बाल कथा। आज हम जो बाल कथा सुनाने जा रहे हैं उसका शीर्षक है परिश्रम का फल।
0: बहुत दिनों की बात है, फूलपुर नाम का एक गाँव था। उस गांव में सभी लोगों में आपस में बड़ा प्रेम था। मुसीबत पड़ने पर सभी एक दूसरे की सहायता करते थे। गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती व पशुपालन था। एक बार दुर्भाग्य से वहां अकाल पड़ा। वर्षा न होने से फसलें नष्ट हो गई, नदी नाले तालाब सूख गए, सभी लोग भूखे मरने लगे, संचित किया हुआ अनाज सब खत्म हो गया।
1: आदमी तो क्या, पशु पक्षी तक सभी बेहाल हो गए, लोग पीने के पानी के लिए तरसने लगे। ऐसे में मुखिया ने पंचायत बुलाई और सबसे सलाह मांगी, कोई भी सही सलाह न दे पाया। रामू नाम के एक किसान ने कुआं खोदने की सलाह दी ताकि पीने की पानी की समस्या का निराकरण किया जा सके। कोई भी उसकी इस बात से सहमत न था। सभी को लग रहा था कि वो बहुत मेहनत का काम है और जरूरी भी नहीं है कि जहां कुआं खोदा जाए वहां पानी निकल ही आए। रामू को पूरा विश्वास था कि यदि सभी लोग मिलकर परिश्रम करें तो कुआं अवश्य खोदा जा सकता है।
0: पर कोई उसका साथ देने को तैयार न था। अंततः पंचायत बिना कोई निर्णय लिए ही उठ गई, पर रामू ने हिम्मत न हारी। रामू के मित्र श्यामू ने उसका साथ देने का निर्णय लिया। दोनों मित्र कुदाले व फावड़े लेकर गाँव के मंदिर में पहुँचे। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की और वही मंदिर के किनारे ही कुआं खोदने का निश्चय किया। अपने हृदय में ईश्वर के प्रति असीम श्रद्धा और विश्वास लिए उन्होंने कार्य आरंभ किया। वे दोनों कड़ा परिश्रम करते रहे। उन्होंने न रात को रात समझा, न दिन को दिन, बस मेहनत करते रहे।
1: बहुत थक जाने पर थोड़ा विश्राम कर लेते और फिर जुट जाते। गांव के लोग उन्हें मूर्ख कहते रहे, पर दोनों मित्र अपने ही धुन में लगन और मेहनत से कुआं खोदते रहे। सूरज की चिलचिलाती धूप भी उन्हें उनके निश्चय से टिका नहीं पाई। उनके शरीर से धारों धार पसीना बहता रहा, हाथों में छाले पड़ गए, पर वे अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहे।
0: और आखिर वो दिन भी आ गया कि फावड़ा मारते ही जल की धारा फूट पड़ी। खुशी के मारे उनकी आंखों में आंसू आ गए और गले रुंध गए। उन्होंने ईश्वर को लाख लाख धन्यवाद दिया। उनकी मेहनत सफल हो गई थी। गांव वालों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। कल तक जो उनका मजाक उड़ाते थे आज उनके सिर लज्जा से झुक गए। रामू और श्यामू ने दिखा दिया कि लक्ष्य के प्रति दृढ़ विश्वास लेकर यदि कड़ी मेहनत और लगन से काम किया जाए तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। किसी ने सच कहा है कि मेहनत का फल मीठा होता है।
1: तो कैसी लगी बच्चों कहानी? बहुत अच्छी कहानी है और हमें परिश्रम से घबराना नहीं चाहिए और हमें तब तक उस काम में जुटे रहना चाहिए जब तक हमें सफलता न मिल जाए, है ना?
0: बिल्कुल।
1: और कहानी में कहा भी गया है आखिर में कि मेहनत का फल मीठा होता है ना बच्चों? तो चलिए अब कुछ जानकारी की बातें। हम हर हफ्ते आपको किसी न किसी एक प्रेरक व्यक्तित्व के बारे में आपको जानकारी देते हैं बच्चों। तो आज हम जिस प्रेरक व्यक्तित्व के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं उनका नाम है आर के नारायण।
0: बच्चों, आरके नारायण एक ऐसे महान लेखक थे जिन्होंने साधारण लोगों की साधारण जिंदगी को

0: बहुत ही सुंदर और रोचक कहानियों में बदल दिया। आर के नारायण का जन्म 1906 में भारत में हुआ। बचपन में वे अपनी दादी के साथ रहते थे। दादी उन्हें रोज कहानियां सुनाती थी। यहीं से उनके मन में कहानी लिखने का शौक पैदा हुआ। वे पढ़ाई में बहुत तेज नहीं थे, लेकिन उन्हें किताबें पढ़ना और नई नई बातें सोचना बहुत पसंद था।
1: नारायण जी को शुरू में बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ी। बच्चों, उनकी पहली कहानी कई बार प्रकाशकों ने छापने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे लगातार लिखते रहे। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई और उनकी कहानियां लोगों को पसंद आने लगी।
0: नारायण जी ने अपनी कहानियों के लिए एक काल्पनिक शहर बनाया, जिसका नाम था मालगुड़ी। ये शहर असली नहीं था, लेकिन उसमें रहने वाले लोग बिल्कुल हमारे जैसे ही थे। स्कूल जाने वाले बच्चे, दुकानदार, शिक्षक, परिवार आदि।
1: बच्चों, मालगुड़ी की खास बात ये थी कि यहाँ की हर कहानी में रोजमर्रा की जिंदगी दिखाई देती थी। छोटे छोटे मजेदार किस्से होते थे। पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे हम भी उसी शहर में रह रहे हों। और इस पर एक धारावाहिक बना बच्चों, जो बहुत ही पॉपुलर हुआ, और वो धारावाहिक दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया मालगुड़ी डेज के नाम से। इसके अलावा आर के नारायण ने फिल्मों के लिए भी पटकथा लिखी। देवानंद और वहीदा रहमान की फिल्म गाइड की कहानी भी इनकी इंग्लिश नॉवेल द गाइड पर बेस्ड थी।
0: नारायण ने अपनी साहित्यिक करियर शॉर्ट स्टोरीज से शुरू किया, जो द हिंदू में छपा करती थी। इनकी पहली नॉवेल का नाम था स्वामी एंड फ्रेंड्स। जैसे आज भी नए लेखकों को अपनी किताब के लिए पब्लिशर्स ढूंढने में दिक्कत आती है, ठीक यही दिक्कत उस समय भी नारायण को हुई। उन्हें शुरुआत में कोई पब्लिशर मिला नहीं, फिर ये ड्राफ्ट पहुंचा ग्राहम ग्रीन तक कॉमन फ्रेंड पूमा की मदद से। ग्रीन एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट थे। इन्हें 20वीं सदी के सबसे महान लेखकों में गिना जाता है। ग्रीन को ये नॉवेल बहुत पसंद आई। उन्होंने इसे पब्लिश करवाया। इसके बाद इन दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई।
1: बच्चों, आर के नारायण की बहुत सारी पुस्तकें मशहूर हुई। उनमें था स्वामी एंड फ्रेंड्स, एक शरारती बच्चे और उसके दोस्तों की कहानी, द गाइड, एक आदमी के जीवन की बदलाव की कहानी, मालगुड़ी डेज, अलग अलग छोटी कहानियों का संग्रह। और इन कहानियों को पढ़कर बच्चे हंसते भी हैं और कुछ अच्छा अच्छा सीखते भी हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इसी मालगुड़ी डेज पर दूरदर्शन ने एक धारावाहिक बनाया, जो काफी पॉपुलर हुआ। बच्चों, इनकी जो कहानियां थी, उसकी जो भाषा होती थी, वो बहुत आसान होती थी। कहानियां मजेदार तो होती ही हैं और दिलचस्प भी होती हैं। हर कहानी में कोई ना कोई एक सीख अवश्य होती है, जिसे बच्चे और बड़े दोनों पसंद करते हैं।
0: बच्चों, आर के नारायण को उनके उत्कृष्ट लेखन के लिए कई पुरस्कार मिले। उन्हें भारत सरकार द्वारा सम्मानित भी किया गया। छोटी कहानियों के संग्रह के रूप में मालगुड़ी डेज सबसे पहले 1943 में पब्लिश हुई थी। नारायण को अपने काम के लिए कई अवार्ड्स और सम्मान दिए गए। 1958 में अपने नॉवेल द गाइड के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 1964 में पद्मभूषण, 1980 में एसी बेंसन मेडल, 1989 में इन्हें राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया था। बच्चों,
1: आर के नारायण की कहानियों से हमें यह सीख मिलती है बच्चों, अगर हम अपने आसपास की छोटी छोटी बातों को ध्यान से देखें और उन्हें दिल से महसूस करें, तो हम भी सुंदर कहानियां बना सकते हैं। बच्चों, अगर आपको कहानियां पसंद हैं, तो आज से ही अपने आसपास की घटनाओं को लिखना शुरू करो। हो सकता है कि एक दिन आप भी महान लेखक बन सकते हैं। बस आवश्यकता है लिखने की। आप निरंतर लिखने का अभ्यास करते रहें। तो बच्चों, ये थे आर के नारायण, एक ऐसे महान लेखक जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी और रोचक कहानियां लिखी। तो दीदी, अब हमारे कार्यक्रम का समय भी समाप्त होने वाला है, तो बच्चों से विदा लेनी चाहिए। तो बच्चों, चलते चलते हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की जो प्रस्तुति थी, वो नूतन प्रसाद की थी। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, कुछ जानकारियों के साथ, कुछ कविताओं के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए विदा।
0: जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे बाल श्रोताओं का प्रोग्राम बाल सभा। इस कार्यक्रम के सूत्रधार थे अवधेश कुमार और रानी शुक्ला। प्रस्तुति नूतन प्रसाद की थी। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 10:30 होने को है अगला कार्यक्रम जोहार रांची। हम सुनेंगे कुछ ही पलों में।

मीडियम वेव 540.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10:30 हो चुके हैं और इस वक्त खास हम आपके लिए लेकर आते हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम जोहार रांची। तो बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे कुछ ही पलों में।

0: राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: RBI कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
5: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
4: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
6: स्वागत है, अभिनंदन है आपका आपकी अपनी प्रोग्राम जोहार रांची में। और आज इस कार्यक्रम के सफर में एक बार फिर आपकी हम सफर है आपकी दोस्त शिल्पी
7: और साथ में विनोद। दोस्तों कहते हैं ना कि आप वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं, और इस छोटे से विचार में जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई छुपी है। अक्सर हम चाहते हैं कि समाज बदले, लोग बदलें, परिस्थितियाँ बदलें,
6: लेकिन बदलाव की असली शुरुआत तो खुद से होती है। अगर हम अपने व्यवहार में प्रेम, सच्चाई और ईमानदारी लाएं, तो यही अच्छाइयाँ धीरे धीरे हमारे आसपास की दुनिया को भी बेहतर बना देती है।
7: यह संदेश हमें सिखाता है कि दुनिया को बदलने के लिए किसी चमत्कार की नहीं, बल्कि अपने भीतर एक सकारात्मक सोच जगाने की आवश्यकता है।
6: इसी सुविचार और सकारात्मकता के साथ बढ़ते हैं आज के सफर में और कहते हैं
8: जोहार।

0: जोहार रांची में अब बातें आज के इतिहास की। आज यानी 10 मई का दिन कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। तो सबसे पहले आपको बताएं कि आज ही के दिन सन 1857 में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम मेरठ में शुरू हुआ था।
1: मेरठ में भारतीय सैनिकों के ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जो 1857 की क्रांति यानी सिपाही विद्रोह की शुरुआत थी।
0: सन 1994 में 10 मई को ही दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला द्वारा प्रिटोरिया में एक ऐतिहासिक समारोह में राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की गई।
1: नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, जिससे रंगभेद का अंत हुआ।
0: सन 1993 में पर्वतारोही संतोष यादव लगातार 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला बनी।
1: और सन 1503 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने केमैन द्वीप समूह की खोज की आज ही के दिन।
0: और सन 1526 में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई जीतने के बाद आगरा पहुंचकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की।
1: सन 1908 में अमेरिका में आधिकारिक तौर पर मदर्स डे मनाया गया।
0: और सन 2003 में मोजाम्बिक के

संगठन ने कार्यस्थलों पर होने वाले भेदभाव पर रिपोर्ट जारी की और सन 2005 में आज ही के दिन लाहौर अमृतसर बस सेवा शुरू करने पर भारत और पाकिस्तान सहमत हुए।

0: आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जोहार रांची, और जोहार रांची में अब उन मशहूर शख्सियतों की बातें जिन्होंने आज ही के दिन यानी 10 मई को जन्म लिया। तो सबसे पहले आपको बताएं कि आज ही के दिन सन 1898 में जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ विचित्र नारायण शर्मा का जन्म हुआ।
1: सन 1905 में बांग्ला और हिंदी भाषाओं के फिल्मों के प्रसिद्ध गायक, संगीतकार और अभिनेता पंकज मलिक का जन्म हुआ था आज के ही दिन। पंकज मलिक ने हिंदी और बांग्ला दोनों भाषाओं को मिलाकर 100 से ज़्यादा फिल्मों में संगीत दिया और कई में अभिनय भी किया।
0: पंकज मलिक आकाशवाणी से जुड़ने वाले शुरुआती कलाकारों में थे। उनकी उल्लेखनीय संगीत रचनाओं में महिषासुर मर्दिनी भी शामिल है। आकाशवाणी के लिए बनाए गए बांग्ला और संस्कृत मिश्रित इस कार्यक्रम में हेमंत कुमार सहित उस दौर के कई प्रसिद्ध गायकों ने अपनी आवाजें दी थी।
1: इस कार्यक्रम को आज भी महालया के अवसर पर आकाशवाणी द्वारा प्रसारित किया जाता है, जिसे लोग बेहद ही श्रद्धा से सुनते हैं। भारत सरकार ने संगीत के क्षेत्र में पंकज मलिक के विशेष योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया, साथ ही उन्हें फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा गया।
0: सन 1909 में भारत के पहले राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष बीएस केशवन का जन्म हुआ था। उन्हें भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के जनक के रूप में जाना जाता है।
1: सन 1918 में रामेश्वर नाथ काव का जन्म हुआ था। ये भारत की गुप्तचर संस्था रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के संस्थापक थे।
0: सन 1929 में भारतीय संविधान के विशेषज्ञ पद्म भूषण से सम्मानित सुभाष कश्यप का जन्म हुआ था आज ही के दिन। और सन 1980 में परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक योगेंद्र सिंह यादव का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था।
1: सन 1951 में भारतीय थल सेना के 26वें थल सेना अध्यक्ष रहे वीके सिंह का भी जन्म हुआ था। और सन 1986 में भारतीय शतरंज खिलाड़ी पेंटाला हरिकृष्णा का भी जन्म हुआ था।
0: 12 सितंबर 2001 को वो भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने। 2001 में कॉमनवेल्थ चैंपियन, 2004 में विश्व जूनियर चैंपियन और 2011 में एशियाई व्यक्तिगत चैंपियन रही पेंटाला हरिकृष्णा को 2006 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

0: जो हर राज्य में अब जिक्र उनका जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा। तो सबसे पहले आपको बताएं कि आज ही के दिन सन 1983 में भारतीय प्रसिद्ध वैज्ञानिक ज्ञानेन्द्र नाथ मुखर्जी का निधन हुआ।
1: वर्ष 1964 में उन्हें विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सन 1999 में पेंसिलिन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सर एडवर्ड इब्राहम की मृत्यु भी आज के ही दिन हुई थी।
0: सन 2021 में भारत पाकिस्तान के बीच 1971 की जंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले स्क्वाड्रन लीडर अनिल भल्ला का निधन हुआ। सन 2022 में प्रसिद्ध भारतीय संतूर वादक शिव कुमार शर्मा ने भी अंतिम सांसें ली।
1: पंडित शिव कुमार शर्मा ने संतूर वादन की तकनीक और टोन को उन्नत बनाया। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।
0: सन 2020 में भारतीय इतिहासकार हरि वासुदेवन का भी निधन हुआ। हरि वासुदेवन को NCERT की सामाजिक विज्ञान पाठ्य पुस्तकों के निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। शेडोज ऑफ सब्सटेंस, इंडो रशियन ट्रेड एंड मिलिट्री कोऑपरेशन सिंस 1991, इन द फुटस्टेप्स ऑफ अफनासी निकिटिन, ट्रेवल्स थ्रू यूरेशिया एंड इंडिया इन द 21st सेंचुरी जैसी इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं।
1: सन 2002 में फिल्म जगत के मशहूर उर्दू शायर कैफी आजमी का भी निधन हुआ था। आज ही के दिन कैफी आजमी ने कागज़ के फूल, हकीकत, हिंदुस्तान की कसम, हीर रांझा और पाकीजा जैसी फिल्मों में कई हिट गीत दिए।
0: इन्हें पद्मश्री सम्मान सहित साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया था। इन्हें सात हिंदुस्तानी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
1: पाकीजा फिल्म का गीत चलते चलते भी कैफी आजमी के कलम का ही करिश्मा है, जिसे आज भी लोग सुनना पसंद करते हैं।

0: आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जोहार रांची। और अब आज यानी 10 मई को मनाए जाने वाले विशेष दिनों की चर्चा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि मई का दूसरा रविवार होने की वजह से आज पूरा विश्व मदर्स डे मना रहा है। जी हाँ, ममता को समर्पित और सम्मानित करने का दिन मदर्स डे।
1: मदर्स डे की शुरुआत अमेरिका में हुई थी। एना जार्विस नाम की महिला ने अपनी माँ की याद में इस दिन को मनाना शुरू किया था। पहली बार ये दिन 1908 में मनाया गया और वर्ष 1914 में इसे आधिकारिक मान्यता मिली थी और इसके बाद ये दिन पूरी दुनिया में मनाया जाने लगा।
0: इस धरती पर माँ ही वो शख्स है जो एक बच्चे को जन्म देने से लेकर हर सुख दुख में उसके साथ खड़ी रहती है। माँ जिंदगी का विश्वास होती है और आस भी होती है। तभी तो कहते हैं ना, तेरे दामन में सितारे हैं तो होंगे ए फलक, मुझे तो माँ की ओढ़नी भी चांदनी सी लगे। सचमुच माँ का आंचल उसके बच्चे की पूरी दुनिया ही होती है।
1: अपने बच्चे की एक मुस्कुराहट पर अपना सब कुछ कुर्बान कर देने वाली माँ की ममता और समर्पण को सेलिब्रेट करने के लिए किसी खास दिन या वजह की जरूरत नहीं, बल्कि हर दिन उसके लिए खास होना चाहिए।
0: माँ के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए हमें किसी खास दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि हर दिन उनके सम्मान का दिन और हर पल उनसे प्यार का पल होना चाहिए।
1: क्योंकि दुनिया के सारे प्यार उसी से शुरू और उसी पर खत्म होते हैं, तो क्यों ना आज के दिन अपनी माँ को स्पेशल फील कराया जाए।
0: और क्यों ना आज हम अपनी माँ के साथ वक्त गुजारें, उनके हाथों को थाम कर ये कहें कि आपके होने से ही मेरी दुनिया पूरी है। आज हम सब अपनी माँ के लिए दुआएं मांगते हैं कि वो स्वस्थ रहें, हंसती रहें, मुस्कुराती रहें, क्योंकि वो सलामत हैं तो हम सलामत हैं और हमेशा दुआ बनकर वो हमारे साथ खड़ी रहती हैं।

0: आज हम एक और ख़ास दिन मना रहे हैं और वो है वर्ल्ड ल्यूपस डे। ल्यूपस एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम अपने ही शरीर पर हमला करने लगती है।
1: इसे एक ऑटो इम्यून डिजीज कहा जाता है। ये शरीर के कई हिस्सों को प्रभावित करती है, त्वचा, जोड़, किडनी, दिल और यहाँ तक कि दिमाग को भी। कई बार मरीज बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है लेकिन अंदर ही अंदर दर्द और थकान से जूझ रहा होता है।
0: विश्व ल्यूपस दिवस की शुरुआत वर्ष 2004 में हुई थी। ल्यूपस फाउंडेशन ऑफ अमेरिका और दुनिया भर की कई ल्यूपस ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर इसकी पहल की थी और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है लोगों को ल्यूपस के बारे में जागरूक करना, मरीजों को बेहतर इलाज और समर्थन दिलाना, साथ ही सरकारों और स्वास्थ्य संस्थाओं का ध्यान इस बीमारी की ओर आकर्षित करना है।
1: क्योंकि जानकारी के अभाव में कई लोग समय पर इलाज नहीं करा पाते, इसलिए ल्यूपस दिवस हमें ये संदेश देता है कि बीमारी सिर्फ शरीर की नहीं होती, उससे जुड़ा मानसिक संघर्ष भी बहुत होता है।
0: तो जरूरी है कि स्वास्थ्य के प्रति हम जागरूक रहें, शरीर में लगातार दर्द और थकान को हम नजरअंदाज ना करें, नियमित जांच करवाते रहें। संवेदनशीलता और जागरूकता दोनों ही जीवन को बेहतर बना सकती है।
1: ल्यूपस से जूझ रहे व्यक्ति सिर्फ दवा की नहीं बल्कि समझ और साथ की भी जरूरत होती है। एक मुस्कान, एक हौसला और थोड़ा सा अपनापन इस लड़ाई को आसान बना देता है और जीने की चाहत पैदा करता है।

0: बातें करें अगर मौसम के मिजाज की, तो आज का मौसम भी खुशनुमा रहने वाला है, जैसा कि पिछले कुछ दिनों से हम महसूस कर रहे हैं।
1: हालांकि दोपहर तक हल्की धूप और बादलों की आंख मिचौली का खेल चलता रहेगा, लेकिन शाम होते होते हल्की बारिश और गरज के साथ आंधी की संभावना भी जताई गई है।
0: मौसम विभाग की माने तो झारखंड में आज बारिश और तेज हवाओं को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है, यानी बाहर निकलते समय थोड़ी सावधानी जरूर बरतें।
1: अगर बातें करें आज के तापमान की, तो आज का अधिकतम तापमान लगभग 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
0: हवा में हल्की ठंडक और बारिश की वजह से मौसम सुहाना महसूस होगा, यानी गर्मी के बीच राहत वाली फीलिंग।

0: दोस्तों, चलते चलते आखिर में बस इतना कहना चाहेंगे कि जिंदगी की भाग दौड़ में कई बार हम रास्ते तो चुन लेते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलने की प्रेरणा कहीं खोसी जाती है।
1: तो सफर जारी रखना जरूरी है, बेशक हम किन्हीं शब्दों को ही प्रेरणा बना लें और भावनाओं की ही उम्मीद जगा लें।
0: अगर कभी लगे कि जिम्मेदारियों का बोझ, समय की तेज रफ्तार और हालात की धूप हमारे अंदर जलती उम्मीद की लौ को धीमा कर रही है,
1: बस अंधेरों से घबराने के बजाय हम खुद एक रोशनी बनने की कोशिश करते रहनी चाहिए।
0: इन्हीं बातों के साथ वक्त हो चला है आज के जोहार रांची के पन्नों को यहीं समेटने का। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें और इस सफर से हमें दे इजाजत। जोहार,
1: जोहार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोहार रांची। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 11:15 हो चुके हैं, आइए आपको सुनवाते हैं पद्मश्री उमाशंकर पांडे से जल संरक्षण पर बातचीत। संकलन और वाचन हिमांशु शेखर का है, कार्यक्रम की प्रस्तुति प्रभु शरण की है।
1: ये आकाशवाणी रांची है, प्रस्तुत है बाह्य ध्वनांकन पर आधारित पद्मश्री उमा शंकर पांडे से जल संरक्षण पर बातचीत। हमारे साथ हैं पद्मश्री उमा शंकर पांडे सर, जो कि जल योद्धा के नाम से भी जाने जाते हैं और इन्होंने जल संरक्षण के क्षेत्र में बहुत काम किया है। तो इनसे जानते हैं कि जल के क्षेत्र में आपको काम करने की प्रेरणा कैसे मिली, कहां से शुरुआत हुई।
2: मेरी जल गुरु मेरी माँ है। माँ से बड़ा इस सृष्टि में कोई नहीं है। माँ और पिता इस सृष्टि के देवता हैं।
1: जी,
2: मैं कहता हूं कि अगर आप कुछ भी बनना चाहते हैं, गणेश जैसा बुद्धिमान बनना चाहते हैं, श्री गणेश जैसा, तो माता पिता की सेवा करनी होगी, परिक्रमा करनी होगी। और पिता के वचन मान के 14 साल के लिए जो बनवास गया राजकुमार, जब वो भगवान बन के लौटा, अर्थात 14 साल के लिए आप बाहर जाइए, पढ़िए लिखिए, अपना जीवन बनाइए। तो ये प्रेरणा मुझे पानी की माँ पिता से मिली। मैं मानता हूँ जल जगदीश है, पानी परमेश्वर है, पानी परमात्मा है, जल जगन्नाथ है, जल में जीवन है, जल है तो कल है। तो ये जो मुझे प्रेरणा है मेरी माँ से मिली है।
1: कैसे शुरुआत हुई अपने इस सफर की, हमारे तमाम श्रोताओं को विस्तार से बताएं।
2: मैं ऐसे गांव में जन्म लिया जहाँ प्राइमरी स्कूल नहीं था, पेड़ के नीचे पढ़ के आया हूँ, आने जाने के साधन नहीं थे। उस गांव के लगभग 80% लोग गांव छोड़ के चले गए थे, कोई आय के स्रोत नहीं थे। वहां पर मेरी माँ ने कहा कि माँ से बड़ी मातृभूमि होती है, इस गांव के लिए कुछ करो। तो मैंने समुदाय के आधार पर पुरखों के जो जल जोड़ने के बेजोड़ तरीके थे, खेत का पानी खेत में और खेत की मिट्टी खेत में, पुराने जमाने में हर खेत में मेड़बंदी होती थी, मेड़ बनाई जाती थी, उसके ऊपर पेड़ लगाए जाते थे। पेड़ और वृक्ष में अंतर है, बरगद वृक्ष है, धान का पेड़ है, गेहूं का पेड़ है, नींबू का पेड़ है, करौंदा का पेड़ है, सहजन का पेड़ है, आंवले का पेड़ है, नीम, महुआ, जामुन, बरगद, ये पेड़ है। तो मैंने ऐसी विधि खोजी जिसमें कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, किसी जेसीबी मशीन की जरूरत नहीं है, कोई नए ज्ञान की जरूरत नहीं है, और बूढ़ा बच्चा कोई भी कर सकता है। अपने खेत की मुट्ठी उठाना है और अपनी मेड़ पे रख देना है। आप ये नहीं लगाते, अरहर की दाल लगा दीजिए, तो उससे क्या होगा कि आपका योगा प्राणायाम हो जाएगा, ध्यान हो जाएगा। पहले जब हम छोटे थे तो बड़े बड़े बंधवा बनते थे गांव में, फिर छोटी आई बंधिया बनी, उसका छोटा रूप है मेड़बंदी। मेड़बंदी माने सीमांकन आपके खेत का। एक तो ये मैंने उसको सोचा। दूसरा, पानी बरसता मिट्टी नहीं बरसती, उपजाऊ मिट्टी 1 मिनट में 20 टन मिट्टी बह करके गांव से जा रही है। 1 मिनट में 20,000 बोतल पानी की बिक रही है दुनिया में। 16,000 पेड़ 1 मिनट में काटे जा रहे हैं। ऐसे में मेरा मानना है पानी बचाना सरकार का काम नहीं, समाज का काम है। मैं आपके माध्यम से आपके श्रोताओं से प्रार्थना करूंगा कि वे नहाने का पानी, बर्तन धोने का पानी, पोछा लगाने का पानी, सब्जी धोने का पानी, चावल धोने का पानी, जो भी पानी बचता है बेकार पानी, उसको पेड़ में डाल दें, रिसाइकलिंग करें, रीयूज, ज्यादा से ज्यादा उसका रीयूज करें। एक तो ये निवेदन है। दूसरा, 28 करोड़ बच्चे इस देश के केजी से पीजी तक में पढ़ते हैं। 1212 विश्वविद्यालय हैं, 45,000 डिग्री कॉलेज हैं, 1 से 12वीं तक के 12 लाख विद्यालय हैं, 12-13 लाख आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इन सब में हमको पानी पढ़ाना होगा, क्योंकि जल का कोई विश्वविद्यालय नहीं है, वाटर म्यूजियम नहीं है, वाटर लाइब्रेरी नहीं है। पुरखे हमारे कैसे तालाब भरते थे, कैसे कुएं बनाते थे, उनका कोई ज्ञान नहीं है, नई पीढ़ी को नहीं पता। हम नई पद्धति से भी सीखे और पुरानी पद्धतियों को खत्म न होने दें, क्योंकि 25 लाख तालाब जो समाज ने बनाए थे, 10,550 नदियां सदैव सदा नीरा थी समाज ने करी थी। जब से समाज ने पानी को छोड़ दिया तो पानी ने समाज को छोड़ दिया। ये जो पानी रोज भूजल नीचे जा रहा है, उसका केवल कारण यह कि हम उसका आदर नहीं करते। जब हम माँ के गर्भ में थे तो पानी में थे, बाहर आए तो पानी से नहाए गए, चिता पे रखे जाएंगे तो पानी की परिक्रमा होगी, राख बनेगी तो पानी में डाली जाएगी। आंख नहीं देखती, पानी देखता है। आंख का पानी खत्म, आप अंधे हो जाएंगे। दिमाग का पानी खत्म, आप पागल हो जाएंगे। शरीर में जब पानी कम होता तो दवा के साथ पानी चढ़ाया जाता है।
1: बिल्कुल,
2: ये जो बिजली बनी ये पानी से बनी, ये जो मकान बना है ये पानी से बना, पानी ने जोड़ा, सीमेंट लोहा गारा सब लगा लेकिन पानी जोड़ के चला गया। तो पानी तो जोड़ता है, सबसे बड़ा वित्त मंत्री दुनिया का मानसून है। पानी नहीं बरसेगा तो सारे वित्त मंत्रालय गड़बड़ा जाते हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि जो 28 करोड़ बच्चे हैं वो पानी बचाएं, पेड़ लगाएं। एक तो ये। दूसरा, हम जब छोटे थे तो तालाब में नहाते थे, तालाब में नहाने में 100 ग्राम पानी लगता था, कुएं में नहाते थे तो 3 बाल्टी पानी लगता था, 7 किलो की बाल्टी थी, 21 सेर पानी लगता। अब जब हम समर सेबल में नहाते हैं तो 1 मिनट में अगर अगर 2 किलो हॉर्स पावर सबमर्सिबल है तो 100 लीटर पानी फेंक देता है, और तभी नहा नहीं पाते। तालाब में जाते थे, डूब के आते थे, बाहर निकल के आते थे, नहा लेते थे, पानी बर्बाद नहीं होता था। एक तो ये हमको सोचना होगा कि पुरखों ने पहाड़ के ऊपर तालाब बनाए, पहाड़ के ऊपर कुआं बनाया। दुनिया का कोई वैज्ञानिक बादल नहीं बना सकता, बादल ला नहीं सकता, बादल को 2 भागों में नहीं बांट सकता। हमारे पुरखों के पास वो ज्ञान था कि संगीत से भी पानी को बरसा लेते थे, मेघ मल्हार, दीपक राग, ये हमारे पास प्रमाण है। पानी बनाने की 5 किताबें हैं और पानी बेचने की दुनिया में 4.5 लाख किताबें हैं। हमको पानी का साहित्य तैयार करना पड़ेगा, पानी की पाठशालाएं देश भर में चलानी पड़ेंगी, वाटर लिटरेसी करनी पड़ेगी। ये जो पानी का बेटा पेड़ है, पेड़ पहाड़ पर होता है, पहाड़ किसको पानी देता है? नदियों को पानी देता है। नदियां पानी कहां रखती हैं? बालू में रखती हैं। हमको ये 10-10 मंजिल की जो बिल्डिंगें बन रही हैं, 20-20, 50-50 मंजिल की, ये कम करनी पड़े। एक समय ऐसा आएगा, पहला युद्ध हुआ था वो भोजन के लिए हुआ था, विश्व युद्ध, खाने के लिए लोग लड़ने जाते थे, फिर पेट्रोल के लिए एक युद्ध हुआ, और अगला जो विश्व युद्ध होगा वो पानी के लिए होगा। हम गंगा और यमुना के देश के वासी हैं, भारत में पानी के लिए युद्ध, तो युद्ध कहीं ना हो, हम बुद्ध के देश के व्यक्ति हैं, लेकिन पानी के लिए युद्ध ना हो। आने वाले समय बॉटल एटीएम स्टेशन में लग गए हैं, फ्री में पानी मिलता था स्टेशन में, पानी तो होगा, पैसे पे होगा। आप पेट्रोल पंप लगेगा पानी के लिए, हम पेट्रोल पंप आएगा वो पानी पंप कहलाएगा, एक राशन कार्ड बनेगा कि आपको 5 लीटर पानी मिलेगा, 10 लीटर मिलेगा, वो दिन दूर नहीं है। केप टाउन दुनिया का पहला शहर है जहां पानी खत्म है, पहला है, आखिरी नहीं है। बेंगलोर में पानी नहीं, चेन्नई में पानी नहीं, मद्रास में पानी नहीं, दिल्ली में पानी नहीं, झांसी में पानी नहीं, तो बांटवाड़ा में पानी का संकट है, लातूर में पानी का संकट है, भुज में पानी का संकट है, क्या कहते हैं आपके, बहुत सारे राज्यों में पानी का संकट है। हमें पानी बचाना पड़ेगा, पानी के लिए चल, जल के लिए चल, जल आंदोलन जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के जल क्रांति जन क्रांति बनानी पड़ेगी। हम सब भाग्यशाली हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश पानी की दिशा में आगे बढ़ रहा है, प्रयोग हो रहे हैं। ये बड़ा देश है, 140 करोड़ की जनसंख्या का देश है, कई साल लगेंगे। हमने पानी, जो पुरखों ने पानी रखा था जमीन में, वो लाखों साल पुराना पानी था, हमने छेद करके पृथ्वी से पानी को बाहर निकाल दिया है। हमें पानी जो मेघ महाराज हजारों किलोमीटर से चल के मेरे गांव में फ्री में पानी दे जाते हैं, बूंद माने नदी, बूंद माने तालाब, बूंद माने हिमालय, उड़ता हुआ बादल, उड़ती हुई नदियां हैं, बादल नहीं उड़ रहा, नदियां उड़ रही हैं, हमको कुएं उड़ रहे हैं, तालाब उड़ रहे हैं, उनको रोकना होगा। एक तो ये मैं आपके माध्यम से बात कहूंगा, दूसरा हमको जल संस्कृति को फिर से जन्मना पड़ेगा। जल विद्या जो भगवान कृष्ण के पास थी, भगवान शंकर जी के पास थी, जो हनुमान जी विद्या जानते थे, हमारे देश में 35 प्रकार की जलवायु है, मराठवाड़ा की अलग है, बुंदेलखंड की अलग है, राजस्थान की अलग है, हमारे यहाँ करीब 100 प्रकार का पानी पाया जाता है, जिसमें 7 प्रकार के पानी का हम यूज करते हैं, 50 प्रकार की हवाएं चलती हैं। जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई तो चरे मरुत 49। हमको कबीर कितना बड़ा ज्ञानी है, पानी के रा बुदबुदास मानुष की जात, तुलसी और बड़ी बात कहते हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा 5 तत्व से बना सरिया, रहीम कहते हैं रहीमन पानी राखी, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष सून। तो हमको जो जल ज्ञान है वो नई और पुरानी दोनों पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए पानी बचाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास करना होगा। और सारे काम छोड़ दो, अगर हम एक टाइम पर सड़क बना सकते हैं 100 किलोमीटर

0: महीने में, तो हम क्या 50 किलोमीटर नदी नहीं साफ कर सकते? कर सकते हैं, बस हमको इच्छा शक्ति की जरूरत है। भारत में 10,550 नदियां थी, 100 नदियों को छोड़ दिया जाए तो पानी नहीं बचा किसी में। सदा नहीं रहा तो 50 नदियां बची होंगी जहां पानी बह रहा है। मैं 100 नदियों पे गया हूं, मैंने 300 से ज्यादा विश्वविद्यालय, IIT, IIM, राज्य विश्वविद्यालय, स्टेट विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, डिग्री कॉलेजों में मैंने लेक्चर दिए हैं, और पिछले कई सालों से मैं लगातार पानी के लिए पूरे देश भर में घूम रहा हूं। मुझे लगता है कि पानी बचाना सामुदायिक प्रयास है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है। राज, समाज, सरकार और मीडिया सब मिलकर के पानी की बचाने की दिशा में प्रयास करें। मैं आपके माध्यम से जो आपके श्रोता हैं उन सबसे प्रार्थना करता हूं कि पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और आने वाली पीढ़ी को जीवन बीमा ना करें, जल बीमा करें। धन ना दें, जल धन दें। उसके आने के लिए उसे तालाब दिखाएं, कुएं दिखाएं, कुएं के पास ले जाएं, कुएं की पूजा करें, नदी की पूजा करें। पानी को सभी धर्मों ने, कुरान हो या पुराण हो, बाइबल हो, गीता हो, पानी बचाने की बात सभी ने कही है। कोई ऐसा धर्म नहीं है जो पानी नहीं बचाता। इसलिए पानी की एक एक बूंद बचाना, अगर आप धनवान बनना चाहते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो विष्णु भगवान जहां लेटते हैं वो पानी में लेटते हैं। शंकर जी स्वयं गंगाधर हैं। भगवान प्रभु श्री राम का सारा जो वनवास का काल था वो नदियों किनारे रहा है, और उन्होंने कहा भी है, पिता दीन मुनि कानन राजू, मुझे जंगल का राजा बनाया पिता ने। भगवान कृष्ण का कालिंदी में जन्म हुआ और द्वारिका, नई द्वारिका बनाई तो भगवान श्री कृष्ण का भी पानी से रिश्ता रहा। ब्रह्मा जी के कमंडल में पानी है। तो मुझे लगता है कि जैन मुनि कुछ नहीं रखते पर कमंडल में जल रखते हैं। तो हमको इन महापुरुषों से, वेद से, शास्त्र से, पुराण से, सभी से प्रेरणा लेकर के पानी बचाने की दिशा में काम करना होगा, नहीं तो देर हो जाएगी।
1: सरकार के स्तर पर वर्तमान में क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसा कुछ हो तो हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: देखिए, सरकार ने जो पानी का एक बाजार खड़ा हो गया था, 100 रुपए की बोतल, 500 की बोतल, 2,500 की बोतल, 5,000 पानी की बोतल, पेट्रोल से महंगा, दूध से महंगा, घी से महंगा पानी बिक रहा है बाजार में। सरकार ने जल जीवन को लेकर हर व्यक्ति को स्वच्छ पानी मिले एक बड़ी योजना चलाई। अब उस योजना को जमीन पे उतारने का काम तो समाज का है। सरकार तालाब बना सकती है, तालाब में पानी नहीं सरकार भर सकती, वो समाज भरेगा। सरकार की अनेकों कल्याणकारी योजनाएं हैं, सरकारें जो भी होंगी सरकार अच्छा काम करती है, लेकिन वर्तमान में तो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन पानी को लेकर बहुत क्लियर है, पेड़ को लेकर बहुत क्लियर है। एक पेड़ माँ के नाम, कितना बढ़िया संदेश है। जल जीवन मिशन, स्वच्छता मिशन, तो जब लोगों उन्होंने शुरू किया था तो लोग दुनिया के हंस रहे थे, क्या बात शौचालय कर रहे हैं, लेकिन आज स्टेशन में जाइए स्वच्छता हो गई है। आप राज्य सरकार में देख रहा हूँ, रांची में, मैं आपके रांची में हूँ, रांची शहर में 2 नदियां थी उनको भी थोड़ा देखना पड़ेगा। यहाँ की राज्य सरकार भी अच्छा काम कर रही है, वहाँ के जल शक्ति मंत्री जी आए थे, बहुत अच्छी प्रभावी बात कर रहे थे। ये एक का विषय नहीं है, पानी स्टेट का मुद्दा है, लेकिन नदियों की हद और सरहद नहीं होती, हमको सबको मिलकर के इस दिशा में प्रयास करना होगा।
1: इस कार्यक्रम को सुनने वाले तमाम श्रोताओं से जल संरक्षण को लेकर क्या कुछ अपील करना चाहेंगे?
0: मैं तो पहले तो अपील करता हूँ कि माँ और पिता से बड़ा इस सृष्टि में कोई नहीं है। जो स्वयं गीले में सोती है, सूखे में सुलाती है, भूखी रहकर भोजन देती है, माँ होती है। और पिता, जिसके बैंक में पैसे नहीं जमा किए जाते पर उसके बैंक से मांगोगे तो तुरंत मिलते हैं। तो अगर आपको पानी बचाना है तो अपनी आंखों का पानी बचाना होगा। और मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि आप अपने दैनिक जीवन के पानी का कम से कम उपयोग करें, कम से कम उपयोग करें। पानी बना नहीं सकते, केवल बचा सकते हैं। ऐसी मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूँ, अपील करता हूँ, कल ना हो, देर ना हो। हमारा समाज पानीदार था, पानीदार है, आगे पानीदार रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना।
1: और कुछ अपने अनुभव हमारे तमाम श्रोताओं से शेयर करना चाहें तो?
0: मेरा आग्रह ये है कि पानी के बचाने के लिए, पानी के काम के लिए सरकार के संसाधन की तरफ मत देखें, अपने स्वयं के संसाधनों से। एक पेड़ 10 पुत्र समान, हमारे शास्त्रों ने कहा है। पानी की प्रार्थना की गई है, हम जल को जगदीश मानकर, जल को जगन्नाथ मानकर, पानी को परमात्मा मानकर, जल ही जीवन है, जल है तो कल है, इस भावना के साथ काम करें तो मुझे लगता है कि पानी सबका है, ये सामूहिक संपत्ति है, यह तो किसी की नहीं है। पृथ्वी सबकी है, हवा सबकी है, सूर्य सबका है, पानी सबका है, तो सब इसकी सामूहिक हिस्सेदारी से बचाएं, क्योंकि मैं भी पानी पीता हूं, ऐसी भावना के साथ काम करें। हम भी पानी पीते हैं और हमारे भी लोग पानी पिए, ऐसी मेरी भावना के साथ हम काम करेंगे तभी पानी बचेगा। ऐसी मेरी आपके साथ और आपके माध्यम से युवा पीढ़ी से खासकर प्रार्थना है, जिन्होंने तालाब नहीं देखे, नदियां नहीं देखी, कुएं नहीं देखे, वो तालाब पर जाएं, नदी पर जाएं, कुएं में जाएं, नानी के यहां जाएं, नाना के यहां जाएं और गांव की पानी की कहानियों को सुने, पानी की पाठशालाएं आयोजित, करें, ऐसा मेरा आपके माध्यम से आग्रह है।
1: उमाशंकर पांडे जी, जल संरक्षण को लेकर आपने हमारे तमाम श्रोताओं से जो जानकारियां, जो अनुभव शेयर किए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने पानी जैसे मुद्दे पर मुझे बुलाया, मुझसे बात की। आज जरूरत है ऐसे प्रयासों को आगे बढ़ाने की, और मैं आपका, पूरी आपकी टीम का और जो आपको श्रोता सुन रहे हैं सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अब संपन्न होता है बाह्य ध्वनांकन पर आधारित ये कार्यक्रम। संकलन एवं वाचन था हिमांशु शेखर का, प्रस्तुति थी प्रभु शरण की।
2: अभी आप सुन रहे थे पद्मश्री उमाशंकर पांडे से जल संरक्षण पर बातचीत। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 11:30 होने को है, थोड़ी देर में हम सुनेंगे हमारे श्रोताओं के फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 11:30 हो चुके हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं आपके ही फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। और सबसे पहली फरमाइश हमने ली है कोटवा नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय की। इन्होंने सुनना चाहा है समीर का लिखा गीत सोनू निगम की आवाज़ में। इस गीत की धुन बनाई है जतिन ललित ने और फिल्म का नाम है संघर्ष।

आपकी पसंद कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमने ली है दुबिहा निवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय की, और इन्होंने सुनना चाहा है देवदास फिल्म से श्रेया घोषाल को। इस गीत के पोल लिखे नुसरत बद्र ने और धुन बनाई है इस्माइल दरबार ने।

श्रेया घोषाल और उदित नारायण के गाए इस गीत के बाद आइए अब आपको सुनवाते हैं नीरज का लिखा गीत लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत की धुन बनाई है सचिन देव बर्मन ने और फिल्म का नाम है प्रेम पुजारी। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है चक्रधरपुर ग्राम गेलिया लोहर से कोमल बेसरा, बासंती, अनु बनमाली, सिद्ध कुमारी और पूजा ने।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अगर टाइम मैनेजमेंट सीख ली और समय का प्रोडक्टिव यूज सीख लिया तो आप देखिए, आप कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस की यात्रा।
3: तुमने मोबाइल चार्ज करना,
4: दिमाग चार्ज कर अपना।
5: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
4: देखा
3: पापा, रुको मैं पे करता। नो सिग्नल।
5: अब क्या करोगे?
3: तेरी वाईफा है ना?
4: सुन, वो दो सुधर जा।
5: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
3: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
5: RBI कहता है
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
3: ये देख कैसे।
4: हैप्पी बर्थडे भाई।
3: दीका, हाँ मेरा फेवरेट कलर
4: हमेशा शॉपिंग।
3: I know ma, but खर्चा करने की भी यही उम्र है, right?
7: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: I know pa, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।

0: RBI कहता है
1: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
2: आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं श्रोताओं की फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद, और आइए अब सुनते हैं इनकी फरमाइश। ये है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, और इन्होंने सुनना चाहा है मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत परवीन सुल्ताना की आवाज में। इस गीत की धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने और फिल्म का नाम है कुदरत।

अगली फरमाइश हमने ली है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मिका, बलविंदर बिरक, चैतिक बिरक और मीका बिरक की, और इन्होंने सुनना चाहा है गुलजार का लिखा गीत बेला शिंदे, मधुश्री, सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में। इस गीत की धुन बनाई है MM किरवानी ने और फिल्म का नाम है पहेली।

अब आज के फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज पर और 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। 12 बज चुके हैं और ये वक्त है बहनों के पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी का। गृहलक्ष्मी कार्यक्रम लेकर आज हमारे साथ हैं मधु और लता।

0: आज का यह खास दिन आपके जीवन में नई रोशनी लाए, भर कर नई ऊर्जा, आपकी सपनों में पंख लगाए।
1: उत्साह आपका आपकी पहचान बने, खुशियों का दीप ऐसे जले कि तूफान भी उसे बुझा न पाए। स्नेहसिल नमस्कार सखियों, मैं लता आप सभी का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में दिल से स्वागत करती हूँ।
0: और मैं मधु, तो स्वीकार कीजिए सखियों मेरा भी प्यार भरा नमस्कार और स्वागत कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। सखियों, दिन के 12 बजे का यह समय सचमुच बहुत व्यस्तता से भरा हुआ होता है ना?
1: लेकिन यह वह समय भी है जब सखियां अपने व्यस्त जीवन में थोड़ा समय चुराकर बैठती हैं हमारे साथ कार्यक्रम के विविध कलेवर को सुनने और समझने के लिए, है ना?
0: बिल्कुल लता, और हमारे कार्यक्रम का यही उद्देश्य भी होता है कि सखियां हमारे संग बैठें, हमें सुने, समय के साथ चले और अपने जीवन में अपने ध्येय को पूरा करते हुए एक सफल व्यक्तित्व बने।
1: बिल्कुल, क्योंकि रास्ते मुश्किल हैं तो क्या हुआ, मंजिलें भी तो खास होंगी। जो थक कर भी चलता रहे, एक दिन मंजिल उसके पास होगी।
0: वाह, क्या खूब कहा तुमने लता। तुम्हारा इशारा मैं समझ चुकी हूँ और मुझे लगता है कि सखियाँ भी जरूर समझ गई होंगी कि आज की चर्चा में तुम बताना चाह रही हो कि हाँ। बड़ी सफलता एक दिन कैसे खुद ब खुद आकर कदम चूमती है।
1: हाँ सखियो, और तुमने सही कहा मधु, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि छोटी छोटी शुरुआत हम पहले करें। छोटी छोटी शुरुआत से ही एक दिन बड़ी सफलता जरूर मिलती है, है ना?
0: बिल्कुल सही कहा तुमने लता। अक्सर देखा जाता है कि लोग अचानक से बड़ा लक्ष्य बना लेते हैं और उसे पूरा करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, ये सोच कर कि सफलता तुरंत मिल जाए। लेकिन सखियों, अचानक सफलता नहीं मिलती है तो लोग ऐसे में निराश हो उठते हैं।
1: हाँ बिल्कुल, और जानती हैं आप सखियों, बड़े आंदोलनों और चमत्कारी परिवर्तनों से जीवन की दिशा तय नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे प्रयासों से ही होती है जो नियमित ढंग से किए जाते हैं।
0: बिल्कुल, और सखियों, छोटे छोटे छोटे शुरुआत, जैसे कि कोई प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होना चाहता है तो उसे रोज थोड़े समय के लिए अध्ययन की आदत डालनी होगी, ना कि एक दो दिन में ही ज़्यादा पढ़कर। रोज का छोटा प्रयास ही एक दिन कामयाबी दिलवाता है।
1: हाँ।
0: इसी तरह यदि आपने कोई व्यायाम करने या अपने हुनर को दिखाने की ठानी है तो उसके लिए आप शुरुआत अपने उत्पाद आसपास के लोगों को दिखा कर करिए या बेच कर करिए। जैसे जैसे मांग बढ़े वैसे वैसे सामान का दायरा बिक्री के लिए बढ़ाइए, उसे दुकानों के द्वारा बिकवाइए और मांग बढ़े तो अपनी स्वयं की दुकान खोलकर विक्रय आरंभ कर दीजिए।
1: हाँ, और यदि सेहत के लिए कुछ खास करने का सोच रही हैं तो आरंभ कुछ एक व्यायामों से करिए और धीरे धीरे आगे के दिनों में जैसे जैसे सीखती जाएं और उसे बढ़ाएं, सफलता निश्चित ही मिलेगी बहनों।
0: बिल्कुल, कहने का मतलब ये है बहनों कि जिस क्षेत्र में आपने अपना ध्येय सोच रखा है उसे मूर्त रूप दीजिए, साकार कीजिए, उसके लिए कदम बढ़ाइए। शुरुआत छोटे छोटे प्रयासों से कीजिए, क्योंकि कोई भी अचानक बड़े लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता जब तक उसकी कोशिश ना करे, इसीलिए छोटी शुरुआत की जरूरत है। पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन स्वर्गीय डॉक्टर कलाम ने कहा था कि सफलता कभी किस्मत से नहीं मिलती, इसके लिए रोज पसीना बहाना पड़ता है, जो आज दर्द सहता है वही कल जीत का जश्न मनाता है।
1: हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात कही तुमने, और यही कारण था कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति की जी की उपलब्धियों को पूरी दुनिया लोहा मानती है।
0: एक उदाहरण यहाँ देना चाहूंगी सखियों को लता, कि मुझे याद आता है बचपन का वो दिन जब माँ दादी वगैरह ऊन कांटा लेकर घर में अपने हाथों से ही स्वेटर बनाया करती थी बुन करके।
1: हाँ।
0: बड़े ध्यान से तब मैं उसे देखा करती थी कि कैसे कांटे पर एक फंदा से शुरुआत करती थी स्वेटर का, और बढ़ाते हुए कई फंदे डालकर धीरे धीरे कुछ ही दिनों में एक बड़ा सा स्वेटर तैयार कर दिया करती थी।
1: हाँ हाँ बिल्कुल, यदि वे लोग ये सोचती कि जल्दी से एक बड़ा स्वेटर बिना उनके नींव दिए यानी फंदा बनाए तैयार कर दे तो बुनाई भी ना करे करना पड़े, तो ऐसा संभव है क्या? ऐसा नहीं संभव हो सकता। स्वेटर अचानक अपने से बड़ा सा नहीं बन सकता था, उनकी छोटी सी कोशिश ही एक दिन अपनी रंगत दिखाती और उतना बड़ा रंग बिरंगा खूबसूरत स्वेटर तैयार हो जाता था।
0: बिल्कुल लता, एकदम सही कह रही हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध कवि पंडित सोहनलाल द्विवेदी की एक रचना की चंद पंक्तियां याद आ रही है मुझे, कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए सखियो करिए छोटी छोटी कोशिशें, मिलेगी बड़ी सफलता एक दिन, बस रखिए खुद पर भरोसा, जारी रखिए लगातार नियमित मेहनत या अभ्यास, और संजो कर रखिए विजयी होने का जुनून।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RBI Life इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
4: दीदी नौकरी लग गई।
5: अरे वाह बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
4: हाँ जी नया मोबाइल।
5: अरे रुको शहजादे सैलरी से पहले खर्चे।
4: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
5: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
4: पर दीप
5: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
4: हाँ दी पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
5: अच्छा।
6: RBI कहता है
7: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
8: तो मैनो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। और अब गृहलक्ष्मी में हम आगे बढ़ते हैं और मधु बताएंगे कि आगे हम कहाँ जा रहे हैं।
9: अब सखियों को सुनवाते हैं रोज की तरह एक भेंटवार्ता। भेंटवार्ताकार हैं अनीता जायसवाल। इनसे बातचीत की है रेडियो सखी लता ने और आज का विषय है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण आज की जिम्मेदारी कल का भविष्य। आइए सुनते हैं सखियों।
10: प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण आज की जिम्मेदारी कल का भविष्य केवल एक विषय नहीं बल्कि मानव जीवन के अस्तित्व से जुड़ा महत्वपूर्ण संदेश है। जल वायु वन भूमि और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधन हमारे जीवन की आधारशिला है लेकिन शहरीकरण और संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के कारण प्रकृति का संतुलन लगातार बिगड़ रहा है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण आज की जिम्मेदारी कल का भविष्य विषय पर आज हम बात करने जा रहे हैं और इसके लिए आज हमारे बीच है समाज सेविका अनीता जायसवाल जी जो लंबे समय से सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हैं और बतौर एक समाज सेविका समाज में अपनी योगदान दे रही हैं। अनीता जी आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
11: धन्यवाद
10: जी। अनीता जी जैसे कि आज हम बात करने जा रहे हैं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बारे में जो कि हमारी आज की जिम्मेदारी है और कल का भविष्य भी, तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि प्राकृतिक संसाधन क्या है और हमारे जीवन में इनका क्या महत्व है।
11: ऐसा है लता जी कि प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन है जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं जैसे जल वायु मिट्टी जंगल खनिज और सूर्य की ऊर्जा। ये हमारे जीवन का आधार है। भोजन पानी घर कपड़े ऊर्जा और उद्योग सब कुछ प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। इसके बिना हमारा जीवन ही संभव नहीं है लता जी।
10: वाह बहुत खूब मैम। मैम आज के समय में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों बढ़ गई है।
11: इसलिए पड़ रही है कि जनसंख्या वृद्धि औद्योगिकरण अत्यधिक उपभोग के कारण प्राकृतिक संसाधन बहुत तेजी से कम हो रहे हैं। यदि हम इसका सही तरीके से संरक्षण नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को पानी स्वच्छ हवा और अन्य आवश्यक संसाधनों की भारी कमी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए संसाधनों का संतुलित और जिम्मेदार उपयोग बेहद जरूरी हो गया है।
10: ये तो सही कहा मैम आपने। अगर हम अभी से ही इसका संतुलित व्यवहार न करें तो आगे बहुत परेशानी में पड़ सकते हैं।
11: हाँ हाँ हाँ लता जी
10: जी
11: बिल्कुल सही है
10: जी। मैम जल जंगल और जमीन के अंधाधुंध दोहन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है।
11: ऐसा है लता जी ये सवाल ने आपने बहुत अच्छा पूछा है हमसे। अत्यधिक दोहन के कारण हमारा जल स्तर घट रहा है। जंगलों की कटाई से जैव विविधता खत्म हो रही है और भूमि बंजर होती जा रही है। इससे जलवायु परिवर्तन बाढ़ सूखा प्रदूषण तापमान में वृद्धि जैसी अनेक समस्याएं बढ़ रही है। पर्यावरण को संतुलित रखने और बिगाड़ने में मानव और पशु पक्षियों का जीवन भी इससे प्रभावित हो रहा है।
10: जी मैम, बिल्कुल बहुत प्रभावित हो रहा है। और ऐसे में जरूरत है कि हम अपना जो है, जैसा कि आपने पहले ही कहा कि संतुलित व्यवहार हमें करना होगा। मैम, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में आम नागरिक की क्या भूमिका हो सकती है?
11: देखिए लता जी, हम आम नागरिक जो है अपनी छोटी छोटी आदतों से आदतों को बदल के, जैसे पानी की बर्बादी को रोकना, हम जगह जगह पर पेड़ पौधे लगाएं, बिजली जैसे इस रूम से उस रूम निकलते हैं तो स्विच ऑफ करें, प्लास्टिक का बहुत कम प्रयोग करें क्योंकि प्लास्टिक गलती नहीं है
10: जी।
11: जल संरक्षण के लिए वर्षा का संरक्षण होना, जो बरसात के समय जल संचयन करना बहुत जरूरी होता है, वो अलग से हमें जैसे सोखता टाइप का कुछ बनाना चाहिए
10: जी।
11: नलों की मरम्मत, जो हमेशा नल खराब होते हैं जिससे टप टप पानी चूती रहती है, वो सब को हमें ठीक करना होगा और जरूरत के अनुसार ही हमें पानी का उपयोग करना होगा। अगर हम समाज में जल बचाने के प्रति जागरूक नहीं होंगे तो आगे हम अपने भविष्य को क्या जवाब देंगे? इसके लिए तो सबसे पहले हमको सुधरना होगा, हमको जल बचाने के प्रति जागरूक होना होगा, तभी हम समाज को ही कर सकेंगे।
10: वाह, बहुत खूब मैम। जल संरक्षण के साथ ही आपने बताया कि हमें किस तरह से जो है भावी पीढ़ी के लिए हमें उनको अपना जवाब देना है, तो ये तमाम कदम उठाए जा सकते हैं।

0: बहुत खूब उत्तर दिया मैम आपने। मैम, ऊर्जा संरक्षण के लिए लोगों को किन आदतों को अपनाना चाहिए?
1: देखिए, ऊर्जा संरक्षण के लिए बिजली के उपकरणों को जरूरत से ज्यादा बंद रखना होगा, एलईडी बल्ब का उपयोग करना होगा और सार्वजनिक परिवहन को अपनाना होगा।
0: जी
1: जैसे ज्यादा जो नगर निगम की बसें होती हैं वो, और रिक्शा का उपयोग करना चाहिए। सौर ऊर्जा जैसे वैकल्पिक ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए। जैसे छोटी छोटी बचत करके ही ना हम बहुत ज्यादा ऊर्जा को संरक्षित कर सकते हैं लता जी।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और बातों बातों में ये बहुत आवश्यक है मैम कि हम छोटी छोटी बचत से ऊर्जा के, बिल्कुल आपने सही कहा, हम बड़ी बचत कर सकते हैं, क्योंकि हमें भावी पीढ़ी के लिए भी अभी से सोचना बहुत जरूरी है। नहीं तो
1: हाँ,
0: आने
1: एकदम
0: वाले
1: बिल्कुल
0: दिनों में ये बहुत बड़ी चिंतनीय विषय तो बन ही चुका है, नहीं तो बहुत मुसीबत में आगे की पीढ़ी पड़ जाएगी। बहुत खूब जवाब आपने दिया मैम, हमारी बहनें आपको सुन रही हैं और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आपकी बातों से बहुत प्रभावित हो रही होंगी हमारी
1: हाँ,
0: बहनें।
1: एकदम एकदम
0: मैम, अगला सवाल मैं आपसे यही मेरा है कि प्लास्टिक प्रदूषण प्राकृतिक संसाधनों को किस प्रकार से नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्या
1: देखिए,
0: कहेंगे?
1: प्लास्टिक की मिट्टी जो होती है
0: जी
1: सबसे पहले हमारे जल को प्रदूषित करती है, क्योंकि प्लास्टिक मिट्टी आसानी से नष्ट नहीं होता।
0: जी
1: वो फिर नदी में जाएगी, उसके बाद समुद्र में जाएगी, फिर जमीन जाएगी, जिसके कारण जमीन की जो उपजाऊ जमीन होती है उसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है। प्लास्टिक खाने से हमारे जो पशु पक्षियों, अचानक देखते होंगे कि ढेर सारे पक्षी मर गए, वो सब
0: बिल्कुल
1: प्लास्टिक खाने से ही होता है। तो ये मानव के साथ साथ जानवरों पर भी इसका बहुत खराब प्रभाव पड़ता है।
0: ये तो बहुत गंभीर बात आपने बताई मैम कि हमारा कई बार होता है जब हम चिड़ियों को देखते हैं तो हमारा ध्यान ही नहीं इस विषय पर जाता है कि
1: सही
0: कहीं ये हमारे गलती का तो शिकार नहीं हो गए।
1: बात है,
0: बहुत
1: हमारी ही गलती के शिकार वो हो रहे हैं।
0: बिल्कुल मैम, बहुत सचेत रहना होगा और हम कोशिश कर सकते हैं कि कम से कम प्लास्टिक का हम यूज करें और कोशिश करें कि हम इसका उपयोग ना ही करें। बहुत खूब मैम, हम यह भी जानना चाहेंगे आपसे कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता कैसे बढ़ाई जा सकती है?
1: देखिए, छोटी छोटी जैसे समाज में, स्कूलों में, कॉलेजों में अभियान चला के वृक्षारोपण करके, जैसे हम लोग क्लब के द्वारा करते हैं, बार बार महीने में कम से कम एक बार वृक्षारोपण तो जरूर करते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पर्यावरण की गुणवत्ता को बताना होगा, उसके महत्व को बताना होगा। बच्चों युवाओं से ही शुरुआत किया जा सकता है ताकि वो प्रकृति के प्रति जिम्मेवारी अपना समझे। अगर हम आज उन्हें नहीं समझाएंगे तो फिर हमारी एक जिम्मेवारी बनती है उन्हें सिखाना।
0: बहुत खूब मैम, और हम आशा करते हैं कि हमारी बहनें इस जिम्मेवारी को बखूबी समझेंगी और घर से इसकी शुरुआत हो, हमारे बच्चों से, हमारे युवाओं से इसकी शुरुआत हो, ताकि हम जितना ज्यादा इस विषय पर जागरूकता फैलाएंगी उतना ही हम पर्यावरण के करीब आएंगे। जी मैम, आपने हमारे तमाम सवालों का बहुत खूबसूरती से जवाब दिया। हम चाहेंगे कि चलते चलते आप हमारी बहनों से कुछ कहें, हमारी बहनों को संदेश दें।
1: मैं हमारी सभी बहनों से यही कहना चाहूंगी कि वे पर्यावरण संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। घर और समाज में जल, ऊर्जा और स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाएं। अपनी छोटी छोटी पहल से आने वाले भविष्य को हम सुंदर बना सकते हैं। साथ ही हमको अपने आप में आत्मविश्वास बढ़ाना होगा। अगर हम अपने आप में आत्मविश्वास नहीं बढ़ाएंगे तो हमारा समाज और देश के प्रति महिलाओं की भूमिका बहुत बढ़ जाएगी।
0: बिल्कुल
1: इसलिए हमें चाहिए कि साथ में सारी महिलाओं को, कि देश के प्रति, समाज के प्रति हम अपनी भूमिका, अपनी जिम्मेवारियों को समझें और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।
0: वाह, बहुत खूबसूरत संदेश मैम। और हम महिलाओं को चाहिए कि किस तरह से हम पर्यावरण संरक्षण में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं, इस बात को समझे और अपना भी योगदान दे। मैम, आज आप हमारे कार्यक्रम में जुड़ी, आपने हमारी बहनों से इतनी अच्छी, इतनी अहम बातें साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद लता जी।
2: अभी आपने सुना सखियों भेंट वार्ता। आज की मेहमान थी अनीता जायसवाल, इनसे बातचीत की थी लता ने, और आज का विषय था प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, आज की जिम्मेदारी, कल का भविष्य। अब लता सखियों को अब मनोरंजन भी करवा दिया जाए क्या?
3: बिल्कुल बिल्कुल, अब वक्त हो चला है बहनों को खूबसूरत से गीत की ओर ले जाने के लिए। तो चलो बहनों के साथ मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

0: गीत तो बहुत मधुर सुनवाई लता तुमने। अब सखियों को एक महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी हम लोग दे देते हैं, क्यों सही रहेगा ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल मधु, बिल्कुल। आजकल बदलते मौसम में कभी धूप तेज निकल जा रही है तो कभी बारिश होने लग रही है, ऐसे में हम सब पानी पीने के प्रति लापरवाही बरतने लगते हैं, है ना, क्योंकि तब प्यास तेज लगना बंद हो जाती है। ऐसे में शरीर में जल की कमी होने की आशंका रहती है बहनों, तो ख्याल रहे इन दिनों।
0: बिल्कुल सही कह रही हो लता। दरअसल हमारे शरीर का लगभग 2/3 भाग पानी से बना होता है सखियों। पानी ही हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और भोजन पचाने में मदद भी करता है, लेकिन कभी कभी लापरवाही या अन्य कारणों से इसकी मात्रा शरीर में कम हो जाती है तो शरीर को बहुत हानि पहुंचता है।
1: तो आइए आपको बता दें है सखियों कि वो कौन से मुख्य कारण हो सकते हैं जिससे शरीर में जल की कमी यानी डिहाइड्रेशन हो सकता है। तेज गर्मी में अधिक देर तक रहते हुए पानी पर्याप्त मात्रा में ना पीना, बहुत अधिक पसीना का शरीर से निकलना, उल्टी दस्त होना, बुखार आना, शारीरिक श्रम अधिक करना, इसके अलावा छोटे बच्चों और बुजुर्गों को यह रोग जो है वो जल्दी लगने की संभावना होती है। इन्हीं तमाम कारणों से जो है वो डिहाइड्रेशन हो जाता है।
0: अब बात करते हैं सखियों डिहाइड्रेशन के लक्षणों की, तो आपको बता दे सखियों कि पानी की कमी शरीर में होने पर उस व्यक्ति को प्यास बार बार लगने लगती है, मुंह गला सूखने लगता है, होठ फटने लगते हैं, शरीर में बहुत कमजोरी महसूस होती है और चक्कर भी आने लगता है।
1: और डिहाइड्रेशन ज्यादा हो जाने पर जो हमारा यूरिनल का जो प्रॉब्लम है वो भी समस्या जो बढ़ जाती है और रंग भी पीला हो जाता है, कई बार दिल की धड़कनें भी बढ़ जाती है बहनों, बेचैनी, भ्रम, ये सब भी चीज़ें आने लगती है। लेकिन इसके लिए आपको चिकित्सा के पास ज़रूर जाना चाहिए, हमारी तो यही सलाह होगी, क्यों मधु।
0: बिल्कुल। और नींबू पानी, छाछ, लस्सी, फलों का रस, तरबूज, खरबूजा इत्यादि भी सेवन करना चाहिए।
1: मधु मधु समय हो चला है बहनों से, वक्त अब हो चला है विदा लेने का, तो बहनों आपको बता दें कि आज के हमारे कार्यक्रम की प्रस्तुति नूतन प्रसाद की थी, तो अपनी सखी लता
0: और मधु को दीजिए आज्ञा,
1: नमस्कार, नमस्कार।
2: गृहलक्ष्मी
3: अभी आप सुन रहे थे बहनों का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज पर और 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:30 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं आंचलिक लोकगीतों का कार्यक्रम भारत भारती। भारत भारती कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मगही लोकगीत। कलाकार हैं सिसोदिनी सिंह और साथी।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 12:45 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लोक रंग। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं खड़िया लोकगीत। कलाकार हैं इग्नासियस किरकिट्टा और साथी।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 1 बजने को है, आइए अब आपको दिल्ली लिए चलते हैं जहां से आप सुन सकेंगे समाचार। समाचार हम क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में सुनेंगे।

0: समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
0: श्री मोदी आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेल्लूर से महबूबनगर तक के 4 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
1: आंखों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। श्री रंगासामी 13 मई को पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। निर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता 2020 की धारा 55(3) के अंतर्गत मुख्य नियोक्ता के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि ठेकेदार समय पर वेतन का भुगतान करें। आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi participated in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru this morning. He also inaugurated the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Addressing the gathering, the Prime Minister lauded the role of the Art of Living Foundation in promoting service, spirituality and social transformation. He also called for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being. Mr. Modi also emphasized that societal participation was more powerful than political systems and was essential for nation building.
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
2: Prime Minister Modi will travel to Hyderabad later today, where he will lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana. The Prime Minister will also inaugurate the PM Mitra Park at Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park, developed under the PM Mitra scheme. He will also dedicate Sindhu Hospital to the nation. The state-of-the-art institution in Hyderabad is a cancer-focused multi-super-speciality quaternary care not-for-profit hospital. Earlier, Prime Minister Modi emphasized that the BJP victory in West Bengal, Assam and Puducherry is a testament of public support for the national policy implemented by his government. He said that the election outcomes reflect the mood of the nation, indicating that the public is supporting national programs and policies of his government. Addressing BJP cadres in Bengaluru today, the Prime Minister underscored the need for a government that delivers, that provides good governance at speed, provides solutions and takes the country forward.
1: भारत की जनता कह रही है कि हमें पीड़ चाहिए, हमें गेम नहीं, सॉल्यूशंस चाहिए, हमें राष्ट्रनीति वाली राजनीति चाहिए। साथियों, आज पूरा का पूरा देश भाजपा की राष्ट्र नीति के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और कर्नाटका तो हमेशा से ही बीजेपी के लिए ऊर्जा का केंद्र रहा है।
2: In Tamil Nadu, the founder of Tamilaga Vetri Karagam or TVK, C. Joseph Vijay, was sworn in as the Chief Minister this morning. State Governor Rajendra Vishwanath Arlekar administered the oath of office and secrecy to Mr. Vijay at the swearing-in ceremony held at Nehru Indoor Stadium. Along with him, nine ministers were also sworn in. Rahul Gandhi and several personalities from the Tamil film industry were present on the occasion. Mr. Vijay created history as his party emerged as the single largest party on debut, and he became the first chief minister of the state since 1967, who does not come either from DMK or All India Anna DMK. Mr. Vijay, with the backing of Congress, CPI, CPIM, VCK and IUML, secured the support of 120 MLAs elect in the 234-member house. According to a Lok Bhavan press release, the governor has directed Mr. Vijay to seek a vote of confidence in the assembly on or before Wednesday. Prime Minister Modi has congratulated C. Joseph Vijay. In a social media post, Mr. Modi said, "The central government will keep working with the Tamil Nadu government to improve the lives of the people." He expressed his best wishes for Mr. Vijay's tenure ahead. Senior leader Dr. Himanta Biswa Sarma has been elected as the leader of the BJP Legislature Party as well as the NDA Legislature Party. In the BJP Legislature Party meeting held in Guwahati this morning, a total of 8 BJP MLAs proposed the name of Dr. Sarma as the leader of the Legislature Party. In IPL cricket, the Super Sunday doubleheader will feature crucial matches for playoff qualification today. In the first match of the day, Chennai Super Kings will lock horns with Lucknow Super Giants in Chennai at 3:30 p.m. In another clash, Royal Challengers Bengaluru will take on Mumbai Indians in Raipur at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 1:10 होने को है। ये वक्त है प्रादेशिक समाचार का।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के ऐतिहासिक महत्व को किया याद, कहा शौर्य और सामर्थ्य की यही विरासत देश की सबसे बड़ी ताकत। पीएम कुसुम हरित ऊर्जा योजना से आर्थिक समृद्धि की ओर अग्रसर किसान, चतरा जिला योजना का लाभ लेने में बना अग्रणी। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मदर्स डे पर सभी माताओं को किया नमन, दी हार्दिक शुभकामनाएं, कहा स्नेह समर्पण और शक्ति सभी के लिए प्रेरणा स्रोत। आकाशीय बिजली गिरने की अलग अलग घटना में 5 लोगों की मौत, 2 घायल, आज भी राज्य के कई हिस्सों में आंधी बारिश और वज्रपात का अलर्ट। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने जीता स्वर्ण पदक, चीन को 5-4 से हराया, टीम में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहित शामिल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 मई 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के ऐतिहासिक महत्व को याद करते हुए एक प्रेरणादायक संदेश दिया है। बेंगलुरु में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज ऐतिहासिक तारीख है। श्री मोदी ने कहा कि साहस और शौर्य की यह विरासत हमारी सबसे बड़ी ताकत है।
2: 10 मई की ऐतिहासिक तारीख है 1857 में। आज के ही दिन स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी फूटी थी। समय के साथ ये चिंगारी एक बड़ी ज्वाला में बदल गई, जिसने गुलामी की बेड़ियों को जलाकर भस्म कर दिया। शौर्य और सामर्थ्य की विरासत ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए ऐसे ऐतिहासिक अवसर हमें नई ऊर्जा से भरते हैं।
0: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रैमजेट कंबस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल के विकास में बड़ी सफलता हासिल की। एक रिपोर्ट।
3: इस सफल परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इससे भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। कम्बस्टर को DRDO ने उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित किया है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित तरल हाइड्रोजन ईंधन और उन्नत थर्मल बैरिंग कोटिंग तथा आधुनिक विनिर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और उद्योग भागीदारों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान PM कुसुम योजना चतरा जिले में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ जिले के किसानों के लिए समृद्धि का रास्ता बन चुकी है। सिमरिया अनुमंडल के इचाक पंचायत के नवाटाड़ गांव के सभी किसान इस योजना का लाभ सफलतापूर्वक उठा रहे हैं। किसान मित्र संजय कुमार ने बताया कि पीएम कुसुम योजना से किसानों ने डीजल और पेट्रोल पर निर्भर रहना छोड़ दिया है। अब किसान निर्भीक होकर खेती करते हैं।
4: प्रधानमंत्री कुसुम योजना किसानों के लिए अति आवश्यक योजना है। इस योजना से किसान खेती में तरक्की किया है, अच्छे से खेती कर पा रहा है, पानी की सुविधा भी अच्छी हो जा रही है और न तो डीजल का खपत है न पेट्रोल का खपत है और मोटर भी लगाने की जरूरी नहीं है, मोटर कंपनी लगा कर देती है, खेती अच्छे ढंग से हो रहा है।
0: जमशेदपुर में विश्व थैलेसीमिया दिवस के अवसर पर अनुराग फाउंडेशन द्वारा जागरूकता एवं सामुदायिक समर्थन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस वर्ष कार्यक्रम की थीम थी अब छिपे नहीं।
1: जिसके तहत अनपहचाने मरीजों की पहचान और पीड़ित परिवारों को सहयोग देने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे, अभिभावक, चिकित्सक और समाज सेवी शामिल हुए। कार्यक्रम में शामिल थैलेसीमिया पीड़ित बच्ची ने इस बीमारी को रोकने के लिए समय पर जांच और जागरूकता की आवश्यकता बताई।
5: आज के समाज को यही कहना चाहूंगी कि प्लीज एक बार शादी से पहले थैलेसीमिया टेस्ट करवा ले, ताकि आगे इस तरह का बच्चा ना हो, क्योंकि एक बार अगर किसी बच्चे को थैलेसीमिया हो गया तो लाइफ टाइम उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय ब्लड चलाने के लिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट से रखने का। जैसे हमारे अदर बच्चे हैं वैसे हम लोग भी है, वो जो काम कर सकते हैं हम भी वो सारे काम कर सकते हैं। तो प्लीज हमें किसी से तुलना ना करें, हम भी एज अ स्पेशल है।
1: खूंटी गुमला जिले के सीमावर्ती क्षेत्र भालू टोली के पास रनिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध डोडा से लदे एक ट्रक को जब्त किया। हालांकि इस दौरान ट्रक चालक, खलासी और डोडा खरीददार मौके से फरार होने में सफल रहे। फरार तस्करों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मदर्स डे के अवसर पर सभी माताओं को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने अपने संदेश में लिखा है कि मां केवल एक शब्द नहीं बल्कि प्रेम, त्याग, संस्कार और असीम ममता का स्वरूप है। एक मां ही परिवार, समाज और राष्ट्र की प्रथम शिक्षिका होती है, जिनके स्नेह और मार्गदर्शन से पीढ़ियों का निर्माण होता है। केंद्रीय मंत्री ने सभी माताओं के स्वस्थ, सुखी एवं दीर्घायु होने की कामना करते हुए कहा कि आपका स्नेह, समर्पण और शक्ति हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। मातृत्व भाव की मिसाल पेश करते हुए कोडरमा के मॉडर्न पब्लिक स्कूल की निदेशक संगीता शर्मा ने सड़क हादसे में अपने बेटे को खोने की पीड़ा को समाज सेवा और शिक्षा की मिसाल में बदल दिया है। उनका कहना है कि विद्यालय के हर बच्चे में उन्हें अपना बेटा नजर आता है, इसलिए बच्चों को शिक्षित और संस्कारी के साथ साथ बेहतर इंसान बनाने में जुटी हैं। उन्होंने बच्चों को जीवन रक्षा में हेलमेट के महत्व को लेकर जागरूक किया।
6: कोई भी बच्चा अगर मोटरसाइकिल बहुत तेज चलाते हुए दिख जाता है तो मैं स्कूल में ही कान पकड़ के एक चपत लगा दे, और पता नहीं क्यों मेरा एक आध चपत लगाया हुआ उन लोग को बुरा भी नहीं लगता है। इसलिए नहीं लगता है कि मैं उन लोग को यही कहती हूँ कि एक मैंने खो दिया है, दूसरा मैं खोना नहीं चाहती। इसलिए जब भी तुम लोग बाइक चलाओ तो तरीके से चलाओ, इतनी तेज न चलाओ कि कोई दुर्घटना घट जाए।
1: राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,40,500 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,64,000 रुपये प्रति किलो है। राज्य में वज्रपात की अलग अलग घटना में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। कोडरमा जिले के सतगांवा प्रखंड के मंडरोडीह गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं लातेहार जिले के हेरहंज थाना क्षेत्र में भी वज्रपात की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। चतरा जिले के टंडवा के बड़गांव में भी एक किशोरी की मौत हो गई। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के कई जिलों में आंधी के साथ बारिश और कहीं कहीं वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। हजारीबाग के बरकट्ठा प्रखंड के ग्राम गोरहर में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए। पहली घटना में पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर पुलिया के नीचे गिर गई जिसमें चालक की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी घटना में 4 वाहनों की टक्कर से हादसा हुआ। हॉकी झारखंड ने राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 के अनुरूप संविधान और उपनियमों को अपनाने के लिए 24 मई को विशेष आम सभा की बैठक बुलाई है। यह बैठक मरांगोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम मोरहाबादी रांची में आयोजित होगी, जिसमें संविधान संशोधन और अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी। शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप चरण दो के रोमांचक फाइनल में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। रिकर्व टीम में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहोत शामिल थीं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के ऐतिहासिक महत्व को

को किया याद, कहा शौर्य और सामर्थ्य की यही विरासत देश की सबसे बड़ी ताकत। पीएम कुसुम हरित ऊर्जा योजना से आर्थिक समृद्धि की ओर अग्रसर किसान, चतरा जिला योजना का लाभ लेने में बना अग्रणी। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मदर्स डे पर सभी माताओं को किया नमन, दी हार्दिक शुभकामनाएं, कहा स्नेह समर्पण और शक्ति सभी के लिए प्रेरणा स्रोत। आकाशीय बिजली गिरने की अलग अलग घटना में 5 लोगों की मौत, 2 घायल, आज भी राज्य के कई हिस्सों में आंधी बारिश और वज्रपात का अलर्ट। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने जीता स्वर्ण पदक, चीन को 5-4 से हराया, टीम में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहद शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। वक्त हो चला है उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम अनुरंजनी का। अनुरंजनी कार्यक्रम हम सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: भाकपा माओवादी के भाइयों और बहनों, सरकार आपके पुनर्वास के लिए लगातार प्रयासरत है। अतः आपसे आग्रह है कि वर्तमान परिस्थितियों का आकलन करते हुए सही निर्णय लेकर मुख्यधारा में लौट आइए। भयमुक्त जीवन का आनंद अपने परिवार के साथ लीजिए। साथियों, समय रहते विचार कीजिए और मुख्यधारा में लौट आइए। साथियों, आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या जल, जंगल, जमीन की रक्षा मात्र हिंसा से ही हो सकती है? इतने सालों की प्रयास के बाद क्या हमारा आदिवासी समाज सुरक्षित हो पाया? आज सैकड़ों पूर्व माओवादी साथी हिंसा को पीछे छोड़कर समाज के बीच एक अत्यंत गरिमापूर्ण और कुशल जीवन बिता रहे हैं। प्रशासन आपकी सुरक्षा और गोपनीयता की 100% गारंटी देता है। हिंसा और कठिनाइयों का जीवन छोड़े और अपनों के पास लौट आइए। मुख्यधारा में आने के उपरांत आपको पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यधारा में आने के बाद आपको जेल जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होगी और आपकी सहायता की जाएगी। मुख्यधारा में आने के बाद आपको सारी सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा और मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। स्वरोजगार के लिए भी आपको उचित अवसर प्रदान किए जाएंगे। पुनर्वास हेतु कृपया इस नंबर पर संपर्क करें 9863475217। नंबर एक बार फिर नोट करें 9863475217।
0: उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम अनुरंजनी में आज हम आपको सुनवा रहे हैं बंदिश। कलाकार हैं अनीता सिंह।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 1:45 हो चुके हैं और ये वक्त है सुगम संगीत के कार्यक्रम का। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की गाई चंद गजलें। आइए सबसे पहले सुनते हैं सागर सिद्दीकी की लिखी गजल, एहसास के मैखाने में कहाँ अब फिक्रो नजर की कंदीलें, आलाम की शिद्दत क्या कहिए, कुछ याद रही कुछ भूल गए, रुदा दे मोहब्बत क्या कहिए। फनकार हैं आशा भोसले।

आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुगम संगीत, और आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की गाय गजलें। आइए अब सुनते हैं फैज अहमद फैज की लिखी गजल, यूं सजा चांद कि छलका तेरे अंदाज का रंग।

जुदाइयों के जख्म दर्द ज़िंदगी ने भर दिए, तुझे भी नींद आ गई, मुझे भी सब्र आ गया, दयारे दिल की रात में चराग सा जला गया। आइए अगली गज़ल सुनते हैं नासिर काज़मी की लिखी हुई आशा भोसले की आवाज़ में।

0: सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं, 2 बजने को है। आइए एक बार फिर दिल्ली लिए चलते हैं मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार के लिए।
1: द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi calls for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being. C. Joseph Vijay takes oath as Chief Minister of the

0: Tamil Nadu along with 9 ministers. Himanta Biswa Sarma unanimously elected as leader of BJP Legislature Party in Assam. Punjab's industry minister remanded to 7-day ED custody in over 100 crore rupee GST fraud case. Russian President Vladimir Putin says Ukraine conflict may be nearing an end. And in Archery World Cup, Indian women's recurve team clinches gold, defeating host China in a shoot-off in Shanghai. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi participated in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru today. He inaugurated the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Addressing the gathering, the Prime Minister lauded the role of the Art of Living Foundation in promoting service, spirituality and social transformation.
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं और इन्हीं पुरातन संस्कारों से भारत की भी अनेक संस्थाओं को प्रेरणा मिलती रही है
0: The Prime Minister also called for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being.
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग मेंटल हेल्थ योग मेडिटेशन इस पर काम करने वाली आपकी महत्वपूर्ण गतिविधि और इस प्रकार से काम करने वाली अन्य संस्थाएं भी इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है
0: Mr. Modi also emphasized that societal participation was more powerful than political systems and was essential for nation building. The Prime Minister also launched the year-long projects of the Foundation on mental well-being, rural development, nature conservation and social transformation. Before proceeding to the Art of Living International Centre, the Prime Minister addressed BJP leaders and workers at HAL Airport in Bengaluru. The Prime Minister said BJP's victories in West Bengal, Assam and Puducherry reflect public support for the centre's policies and programmes. He said that people want a government that delivers good governance and fast solutions.
1: भारत की जनता कह रही है कि हमें स्पीड चाहिए, हमें गेम नहीं, सॉल्यूशंस चाहिए, हमें राष्ट्र नीति वाली राजनीति चाहिए। साथियों आज पूरा का पूरा देश भाजपा की राष्ट्र नीति के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और कर्नाटक तो हमेशा से ही बीजेपी के लिए ऊर्जा का केंद्र रहा है
0: Attacking Congress, the Prime Minister accused the party of opposing the Nari Vandan Sanshodhan Bill in Parliament.
1: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी बड़ा खेल चला करता था बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया लेकिन साथियों कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया
0: Prime Minister Modi will travel to Hyderabad later today where he will lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana. The Prime Minister will also inaugurate the PM Mitra Park at Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park, developed under the PM Mitra scheme. He will also dedicate Sindhu Hospital to the nation. State-of-the-art institution in Hyderabad is a cancer-focused multi-super-speciality quaternary care, not-for-profit hospital. The founder of Tamil Nag Vetri Karagam, TVK, actor turned politician, C. Joseph Vijay, has been sworn in as the Chief Minister of Tamil Nadu.

0: today. Governor Rajendra Vishwanath Adlekar administered him the oath of office and secrecy in a swearing-in ceremony held at Nehru Indoor Stadium. Nine ministers also took oath along with Mr. Vijay. Congress leader Rahul Gandhi and several personalities from the Tamil film industry were also present on the occasion. During his address after taking the oath, Chief Minister Vijay appealed to the people to remain confident about his government and said that he will enable smooth and transparent governance to all. After that, Mr. Vijay went to the Chief Minister's office at Fort St. George and signed the files declaring his taking over. He signed the files enabling 200 units of free power to every family, setting up of a special unit for women's safety and a special unit to handle drug smuggling. The assembly session will be held tomorrow for the swearing-in of the MLAs. The newly sworn-in government has also to prove the majority on or before Wednesday. Mr. Vijay created history as his party emerged as the single largest on debut, and he becomes the first chief minister of the state since 1967 who does not come either from DMK or All India Anna DMK. Mr. Vijay, with the backing of Congress, CPI, CPIM, VCK and IUML, secured the support of 120 MLAs elect in the 234 member house. Prime Minister Modi has congratulated C. Joseph Vijay on taking oath as the Chief Minister of Tamil Nadu. In a social media post, Mr. Modi said, "The central government will keep working with the Tamil Nadu government to improve the lives of the people." He expressed his best wishes for Mr. Vijay's tenure ahead. Senior leader Dr. Hemanta Biswa Sarma has been elected as the leader of the BJP Legislature Party as well as the NDA in Assam. In the Legislature Party meeting held in Guwahati this morning, a total of 8 BJP MLAs including Ranjit Kumar Das, Biswajit Daimari, Ajanta Nayok, Rajdeep Roy, Ashok Singhal and Piyush Hazarika proposed the name of Dr. Sarma as the leader of the Legislature Party. The proposal was subsequently seconded by other MLAs in attendance. Thereafter, in the presence of 10 Ahamgaon Parikhar MLAs and BPF legislators, AGP leader Atul Bora and BPF leader Rihan Daimari proposed Dr. Sarma's name as the leader of the NDA. Following these proposals, BJP Central Observer Jagat Prakash Nadda formally declared Dr. Sarma as the leader of the BJP and the NDA. After being elected as the NDA leader, Mr. Sarma met Governor Lakshman Prasad Acharya at Lok Bhavan and formally submitted the proposal to form the government. In Puducherry, NDA leader N. Rangasamy will take oath as the Chief Minister on the 13th of this month. Yesterday, President Draupadi Murmu appointed AINRC leader N. Rangasamy as the Chief Minister of the Union Territory. Following the notification, Lieutenant Governor K. Kailashanathan invited Mr. Rangasamy to form the government. The expansion of the Uttar Pradesh cabinet will take place at 3 p.m. this afternoon. Chief Minister Yogi Adityanath met Governor Anandiben Patel last evening. Sanjay Prasad, Additional Chief Secretary to the Chief Minister and the State Information Department, confirmed that the swearing-in will begin at Jan Bhavan in the state capital from 3 p.m. onwards. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back. You're listening to Midday News. A special PMLA court in Gurugram granted 7-day remand of Punjab Industries Minister Sanjeev Arora to the Enforcement Directorate or ED in a money laundering case. The ED yesterday arrested Sanjeev Arora from Chandigarh in a case linked to alleged fraud in goods and services tax or GST transactions of over 100 crore rupees. He was produced before the court by the agency officers seeking custodial interrogation. The Punjab minister was arrested following a day-long search at his four premises, including his residence, his associated entities, and one office premises belonging to Hampton Sky Realty Limited, which is also under the agency's scanner in the case. The ED's action was part of an enforcement case information report recorded on the 5th of this month. The Ministry of Education will organize Bharatiya Bhasha Summer Camp 2026 in all schools across the country during the summer vacation. In a social media post, the ministry said that the week-long camp will provide students an engaging opportunity to learn basic communication skills in various Indian languages through interactive activities. Russian President Vladimir Putin has said that he believes the conflict in Ukraine was coming to its end. He also expressed hope that tensions in West Asia would also be resolved soon, warning that all sides would suffer if the conflict escalated further. Russia's 2022 invasion of Ukraine triggered the most severe breakdown in relations between Moscow and the West since the 1962 Cuban Missile Crisis. When asked whether he was open to talks with European leaders, Putin said that his preferred person for discussions was former German Chancellor Gerhard Schroeder. The cruise ship linked to hantavirus outbreak arrived at Tenerife, which is the largest of Spain's Canary Islands. The Dutch-flagged MV Hondius arrived at Spain's port of Granadilla today, escorted by a civil guard vessel. The ship had left for Tenerife on 6th of May after WHO and European Union asked Spain to manage the evacuation of its passengers. On the 2nd of this month, WHO received a notification regarding a cluster of severe acute respiratory illness, including two deaths and one critically ill passenger aboard a Dutch-flagged cruise ship. At the Archery World Cup Stage 2 in Shanghai, India's women's recurve team of Deepika Kumari, Ankita Bhakat and Kumkum Bahar defeated host China in a dramatic shoot-off to win the gold medal today. After the match ended, tied at 4-all following four sets, the Indian trio held their nerve to edge past China 5-4 in the shoot-off. Veteran Deepika Kumari sealed India's first Archery World Cup gold since 2021 with a crucial final arrow under pressure. Earlier, India had stunned record 10-time Olympic champion South Korea in the semi-finals. And an IPL Cricket Super Sunday doubleheader will feature crucial matches for playoff qualification today. In the first match of the day, Chennai Super Kings will lock horns with Lucknow Super Giants at the M.H. Chidambaram Stadium in Chennai at 3:30 p.m. In another clash of the day, Royal Challengers Bengaluru will take on Mumbai Indians at the Shahid Veer Narayan Singh International Stadium in Raipur at 7:30 p.m. Yesterday, Gujarat Titans defeated Rajasthan Royals by 77 runs in Jaipur, chasing a massive target of 230 runs set by Gujarat. The host team Rajasthan got bundled out for just 152 runs in the 17th over. India Meteorological Department has forecast heatwave conditions over Gujarat and Rajasthan till tomorrow. Warm night conditions are likely to persist in places over West Rajasthan during the next 4 to 5 days. IMD further predicted a gradual rise in maximum temperatures by 3 to 5 degrees Celsius over northwest India during the next 7 days. The weather agency has also forecast heavy rainfall over Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal during the next 2 days. World Lupus Day is being observed today globally. The day is marked to raise awareness about lupus, which is a complex autoimmune disease in which the immune system mistakenly attacks healthy tissues and organs, causing widespread inflammation and damage to joints, skin, kidneys, heart, and lungs. Lupus has no known cure and often put a devastating impact on daily life. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being. C. Joseph Vijay takes oath as Chief Minister of Tamil Nadu along with 9 ministers. Himanta Biswa Sarma, unanimously elected as leader of BJP Legislature Party in Assam, stakes claim to form government. Punjab's industry minister remanded to 7-day ED custody in over 100 crore rupee GST fraud case. Russian President Vladimir Putin says Ukraine conflict may be nearing an end. And in Archery World Cup, Indian women's recurve team clinches gold, defeating host China in a shoot-off in Shanghai. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंता बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया, सरकार बनाने का दावा पेश किया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
2: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
2: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
1: प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए का शासन अब 21 राज्यों में है, जहां लोक कल्याण तथा देश की समृद्धि के लिए काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
2: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
1: तमिलक वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
3: सी जोसेफ विजय एनम नान तमिलनाडु अरसिन मुदलमेच्चर एन्र मुरैयिल एनदु गवनत्तिर्कुल्लावदुम तेरियवरुवदुमान एन्द पोरुळैयुम முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
1: ஸ்ரீ விஜய் கே சாத் 9 மந்திரியோ நே பி சபத் லி ஹே. இன்மே கே ஜி அருண்ராஜ், ஆதவ் அர்ஜுன், என் ஆனந்த், செல்வி எஸ் கீர்த்தானா ஆர் டாக்டர் டி கே பிரபு ஷாமில் ஹே. इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई फाइलों को मंजूरी भी दी। इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़ी फाइलें शामिल हैं।

0: राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि एनडीए का नेता चुना जाने के बाद श्री शर्मा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की।
1: आज सुबह गुवाहाटी में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में भाजपा के 8 विधायकों ने, जिनमें रंजीत कुमार दास, विश्वजीत दोईमरी और अजंता नियोग शामिल है, डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव नेता पद के लिए रखा। बैठक में उपस्थित अन्य सभी विधायकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके बाद एजीपी और बीपीएफ के सभी विधायकों के साथ हुई संयुक्त बैठक में डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा को सर्वसम्मति से एनडीए का नेता स्वीकार किया गया। इन औपचारिक प्रस्तावों के बाद भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा ने आधिकारिक रूप से डॉक्टर शर्मा को भाजपा और एनडीए का नेता घोषित किया। निर्वाचित होने के बाद डॉक्टर शर्मा ने आज दोपहर को लोकभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की। 102 विधायकों के हस्ताक्षर प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर शर्मा ने नई सरकार गठन का औपचारिक दावा पेश किया। एनडीए सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटनरी कॉलेज मैदान में आयोजित होगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं।
2: 90 मीटर ऊंची क्रेन की सहायता से एक विशाल धार्मिक कुंभ को मंदिर के शिखर तक पहुंचाया जाएगा, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र जलाभिषेक अनुष्ठान संपन्न होगा। सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के विशेष अवसर पर भारतीय वायुसेना भी प्रभास पाटन की पावन धरती पर रोमांचक हवाई करतब प्रस्तुत करेगी, जिसमें हवा से हवा और जमीन से हवा में समन्वित उड़ान प्रदर्शन दिखाए जाएंगे। आज सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एयर शो के लिए हवाई निरीक्षण और रिहर्सल किया, जिससे आसमान में मनमोहक दृश्य देखने को मिले। आज हेलीकॉप्टर से मंदिर के शिखर पर पुष्प की गई। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। आज तिरुपति में संवाददाताओं से चर्चा में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, पुद्दुचेरी और तमिलनाडु में शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 दिन के तिरुपति दौरे पर हैं। नागालैंड सरकार ने गाड़ियों पर ऐसे नारों, स्टिकर, संकेतकों और पहचान चिन्हों के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है जो धर्म आधारित हैं, गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हैं और गैर कानूनी हैं। ये प्रतिबंध निजी और सार्वजनिक वाहनों पर लागू होगा। 30 अप्रैल को जारी अधिसूचना में वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे अधिसूचना जारी होने के 45 दिन के भीतर इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का यह शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुरुग्राम की धन शोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर जीएसटी के लेनदेन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। अरोड़ा को उनके आवास, उनसे जुड़ी संस्थाओं और हैम्पटन स्कॉर्ड रियल्टी लिमिटेड के एक कार्यालय सहित उनके 4 परिसरों की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध अब समाप्ति की ओर है। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष के भी जल्द समाधान की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि तनाव और बढ़ता है तो सभी पक्षों को भारी नुकसान होगा। वर्ष 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों के साथ पहले से खराब रूस के संबंधों में और कड़वाहट आ गई है। यूरोपीय नेताओं से वार्ता के बारे में पूछे जाने पर श्री पुतिन ने कहा कि ऐसी किसी भी बातचीत के लिए जर्मनी के पूर्व चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर उनके पसंदीदा नेता हैं। श्री पुतिन ने यह भी कहा कि स्थायी शांति समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। इस बीच दोनों देश रूस के वार्षिक विजय दिवस परेड के दौरान 3 दिन के संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कल कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अस्सानी से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पर चर्चा हुई। श्री अस्सानी ने एक दिन पहले वाशिंगटन में उपराष्ट्रपति जेरीवेन से भी मुलाकात की थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के बीच हुई वार्ता का पहला दौर असफल रहा था, वार्ता का दूसरा दौर नहीं हो पाया था। कतर भी अमरीकी अधिकारियों के साथ मध्यस्थता के लिए काम कर रहा है। अमरीका ने ईरान के साथ बातचीत में कतर को विशेष रूप से प्रभावी बताया है। आज विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस ऑटो इम्यून रोग ल्यूपस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ल्यूपस का कोई ज्ञात इलाज नहीं है और यह रोजमर्रा के जीवन पर असर डालने वाली बीमारी है। और अब खेल खबरों के साथ है प्रशांत कुमार।
3: चीन के शंघाई में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। दूसरे चरण में आज दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहोत की टिकड़ी ने मेजबान और खिताब के प्रबल दावेदार चीन को शूट ऑफ में हराया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है।
0: हंता वायरस से संक्रमित रहा जहाज स्पेन के टेनरिफ द्वीप पहुंच गया है। डच ध्वज वाला एमवी होंडियस आज स्पेन के ग्रेनाडेला बंदरगाह पर पहुंचा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपीय संघ द्वारा स्पेन से यात्रियों को निकालने का अनुरोध किए जाने के बाद यह जहाज 6 मई को टेनरिफ के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज पर 4 मई को हंता वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। 8 मई को 3 मौतों सहित कुल 8 मामले सामने आए। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 73वां संस्करण आज सुबह दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसमें रक्षा बलों के जवान भी नागरिकों के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में 800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। और अब जानकारी मौसम की। गुजरात और राजस्थान में कल तक लू चलने का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी बनी रह सकती है। अगले 7 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिन उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के हिमालय से सटे इलाकों में गरज चमक का अंदेशा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंत बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

फौजी भाइयों को समर्पित फिल्मी गीतों के कार्यक्रम जय भारती का। जय भारती कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं प्रसून जोशी का लिखा गीत शंकर महादेवन की आवाज में। इस गीत को संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने और फिल्म का नाम है मणिकर्णिका।

आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं फौजी भाइयों को समर्पित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जय भारती। और जय भारती कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में धुरंधर फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा है इरशाद कामिल ने।

आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं फौजी भाइयों को समर्पित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जय भारती। जय भारती कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं लाल सिंह चड्ढा फिल्म से अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज़ों में अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा गीत। इस गीत की धुन बनाई है प्रीतम ने।

बॉबी जासूस की फिल्म का नाम, और आइए सुनते हैं इस फिल्म से पैपॉन और श्रेया घोषाल को। गीत के बोल लिखे हैं स्वानंद किरकिरे ने और धुन बनाई है शांतनु मोइत्रा ने।

0: मोनाली ठाकुर के गाए इस गीत के साथ ही फौजी भाइयों को समर्पित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जय भारती अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 2:55 होने को है, वक्त हो चला है प्रादेशिक समाचार का।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु में द आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें वर्षगांठ समारोह में भी शामिल हुए। उन्होंने परिसर में स्थित ध्यान मंदिर और 9 सेवा प्रकल्पों का लोकार्पण किया। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि मानसिक रूप से शांत युवाओं से विकसित भारत का निर्माण होगा।
2: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि और इस प्रकार से काम करने वाली अन्य संस्थाएं भी, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
1: ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका

0: पांडे सिंह ने आज गोड्डा के मेहरमा प्रखंड अंतर्गत धोरीचक से कुमारडीहा तक पथ सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने बेनीदास भूसका तक बनने वाली सड़क की आधारशिला रखी। मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। ग्रामीण विकास मंत्री ने इस दौरान जन समस्याएं भी सुनी और समाधान का भरोसा दिलाया। श्रीमती सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ढांचागत संरचना और मूलभूत सुविधाओं के विस्तार पर जोर दे रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से जुड़े एक स्टिंग ऑपरेशन को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि मामले की जांच के लिए डीएसओ सहित विशेष टीम गठित की गई है और आरोप सही पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर अंसारी ने कहा कि सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांत पर काम करती है तथा भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर सी जोसेफ विजय को बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने आशा जताई कि उनके नेतृत्व में तमिलनाडु विकास, सुशासन और जन कल्याण के नए आयाम स्थापित करेगा। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने असम के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति के तहत भाजपा असम में लगातार तीसरी बार सरकार बना रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आज मदर्स डे पर मां की ममता को सभी लोग याद कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर कहा कि मां केवल एक शब्द नहीं बल्कि प्रेम, त्याग, संस्कार और असीम ममता का स्वरूप है। एक मां ही परिवार, समाज और राष्ट्र की प्रथम शिक्षिका होती है, जिसके स्नेह तथा मार्गदर्शन से पीढ़ियों का निर्माण होता है। केंद्रीय मंत्री ने मदर्स डे पर सभी मतदाताओं को नमन करते हुए शुभकामनाएं दी। खूंटी जिले में लकड़ी तस्करों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग के निर्देश पर कल जिले के तपकरा थाना क्षेत्र में लकड़ी तस्करों के खिलाफ चलाए गए छापेमारी अभियान में चालक को लकड़ी लदे वाहन के साथ गिरफ्तार किया गया है।
1: गश्ती पार्टी के द्वारा उसको जाके जब इंटरसेप्ट किया गया तो उसमें देखा गया कि लकड़ी का अवैध रूप से काफी ज्यादा संख्या में वो काट करके लेके जा रहा था और फिर वहां पे उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की गई। लकड़ी को जब्त किया गया और जो व्यक्ति इसमें संलिप्त था, जो ड्राइवर के रूप में गाड़ी भी चला रहा था, उसको भी हिरासत में लिया गया।
0: हजारीबाग जिले के बरकट्टा में आज दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में दो लोगों की मौत हो गई जबकि तीन अन्य घायल हो गए। बताया जा रहा है कि एक अनियंत्रित मालवाहक वाहन पुलिया के नीचे जा गिरा जिससे चालक की मौके पर ही मौत हो गई। एक अन्य घटना में गोरहर गांव में चार वाहनों की टक्कर हो गई जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि तीन अन्य घायल हो गए। राज्य में 16 मई तक बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक इस अवधि में राज्य के कई इलाकों में तेज हवाओं के चलने और वज्रपात की भी आशंका है। पिछले 24 घंटे के दौरान डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। फिलहाल सभी जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है। आने वाले दिनों में तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 3 बज चुके हैं। कुछ ही पलों में हम सुनेंगे फिल्म संगीत।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

आइए सुनते हैं जावेद अख्तर का लिखा गीत ए आर रहमान और श्रीनिवास की आवाज़ों में। इस गीत की धुन बनाई है ए आर रहमान ने और फिल्म का नाम है लगान।

फिल्म संगीत में फिलहाल इतना ही। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 3:10 होने को है। आइए एक बार फिर आपको दिल्ली लिए चलते हैं, जहां से आप सुन सकेंगे प्रोग्राम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। आप सुन रहे हैं फिल्मी तराने। अगला नगमा है फिल्म काला पत्थर से और स्वर है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का।

कुछ कहे सुने मन की भाषा पढ़ लेने की जादूगरी सिर्फ एक माँ ही के पास हो सकती है। माँ तो वो है जो अपने हिस्से की रोटी भी बच्चों में बांट देती है। गम हो या खुशियाँ, जीवन के हर किस्से में वो साथ देती है। चलती फिरती हुई आँखों से अज़ा देखी है, चलती फिरती हुई आँखों से अज़ा देखी है,

माँ, वो एहसास जो दर्द में दवा बन जाती है, अंधेरे में रोशनी बन जाती है और हारने पर हौसला। बचपन याद है ना, जब हम गिरने से पहले माँ का हाथ पकड़ लेते थे। जिंदगी की ठोकरों में भी सबसे पहले उसी की याद आती है। कितना अजीब है ना, भले ही हम सारी दुनिया हासिल कर लेना चाहते हों, लेकिन माँ तो सिर्फ हमें खुश और मुस्कुराना देखना चाहती है। माँ सिर्फ एक माँ की भूमिका नहीं निभाती, बल्कि बचपन में खिलौनों से खेलते वक्त वो आपको हंसाने वाला सबसे बेहतरीन खिलौना बन जाती है। वक्त के साथ शिक्षा, सभ्यता, संस्कृति और संस्कार सिखाते समय एक शिक्षिका का किरदार निभाती है, और बड़े होने पर माँ ही सबसे अच्छी सहेली बन जाती है। बिना मांगे जहाँ पूरी हर मन्नत होती है, बिना मांगे जहाँ पूरी हर मन्नत होती है, माँ के कदमों में ही तो वो जन्नत होती है।

माँ का एहसास, माँ का स्पर्श, माँ की बातें, माँ की आवाज़ हर पल हर क्षण हमारे साथ रहती हैं। जब हम छोटे थे तो कभी कभी लगता था माँ सिर्फ रसोई में रहती है, कभी टिफिन में, कभी स्कूल बैग में, कभी माथे पर हाथ फेरती हुई। लेकिन बड़े होने पर समझ आया कि माँ तो कहीं जाती ही नहीं, वो रहती है हमारी बातों में, हमारी आदतों में, हमारी फिक्र में, हमारी मुस्कुराहटों में, और उसकी परछाई तो कभी हमारा पीछा ही नहीं छोड़ती। किताबों से निकलकर तितलियां गजलें सुनाती हैं, किताबों से निकलकर तितलियां गजलें सुनाती हैं, टिफिन रखती है मेरी माँ तो बस्ता मुस्कुराता है।

सचमुच ये भी माँ का एक रूप है। वैसे तो हमारी भारतीय परंपरा में हमारा हर दिन माँ से शुरू होकर माँ पर ही खत्म होता है। हमारी दुनिया, हमारी खुशियाँ, हमारी सांसें, सब कुछ माँ ही तो है। वो माँ जो अपनी सोती जागती आंखों में हर वक्त अपने बच्चों के सपने लिए उनकी सलामती और तरक्की की दुआएं मांगती नहीं थकती। मुझे मालूम है माँ की दुआएं साथ चलती हैं, मुझे मालूम है माँ की दुआएं साथ चलती हैं। सफर की मुश्किलों को हाथ मलते मैंने देखा है।

अपने बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियां न्यौछावर कर देने वाली माँ के लिए सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हर दिन हर पल उनकी खुशियों का ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस धरती पर ईश्वर कहीं है तो वो माँ की सूरत में ही तो है। माँ ही है जो अपने बच्चों के चेहरे को पढ़ लेती है कि कब वो खुश है, कब नाराज़ है और कब उसे डर लगता है। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है।

माँ हमारे लिए इस दुनिया का एक ऐसा महफूज आशियाना है जहाँ हम बिना दस्तक दिए पहुँच जाते हैं, जहाँ कोई सवाल नहीं पूछे जाते, जहाँ हर गलती माफ हो जाती है, और उस जगह का नाम है माँ। सचमुच माँ पास हो या ना हो, उसका एहसास हर वक्त हमारे साथ रहता है, और हर मुश्किल में हौले से वो हमारे कानों में कहती है, मैं हूँ ना, फिक्र मत कर।

माँ जिंदगी का संबल होती है, जिंदगी का विश्वास भी वही है, रगों में बसी संस्कार और जीवन का सार भी वही है। मैंने कल शब चाहतों की सारी किताबें फाड़ दी, मैंने कल शब चाहतों की सारी किताबें फाड़ दी, सिर्फ एक कागज़ पे लिखा लफ्ज़े माँ रहने दिया। और आज की रांची मेलोडीज़ में बस इतना ही।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम रांची मेलोडीज। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 4 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बंगलुरु में द आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें वर्षगांठ समारोह में शामिल हुए। उन्होंने परिसर में स्थित ध्यान मंदिर और 9 सेवा प्रकल्पों का लोकार्पण किया। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि मानसिक रूप से शांत युवाओं से विकसित भारत का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की रक्षा, जल और बिजली का संरक्षण आर्ट ऑफ लिविंग है। श्री मोदी ने कहा कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन शैली अपनाने की जरूरत है। असम में आज केंद्रीय पर्यवेक्षक जेपी नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में भाजपा विधायक दल की बैठक हुई। श्री नड्डा ने बताया कि हिमंता बिस्वा शर्मा को विधायक दल का नेता चुना गया है। बाद में श्री शर्मा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात कर सरकार गठन का दावा पेश किया। 12 मई को दूसरी बार हिमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राजधानी रांची के काके स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में कल से 2 दिवसीय खरीफ कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कृषि मंत्री शिवपी नेहा तिर्की शिरकत करेंगे। कार्यक्रम के पहले दिन कल जिलावार

आकस्मिक योजनाओं पर प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। वहीं दूसरे दिन 12 मई को खरीफ पर कार्यशाला आयोजित की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने खाद एवं आपूर्ति विभाग से जुड़े एक स्टिंग ऑपरेशन को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि मामले की जांच के लिए डीएसओ सहित विशेष टीम गठित की गई है और आरोप सही पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर अंसारी ने कहा कि सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांत पर काम करती है तथा भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में दोपहर बाद गरज के साथ हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के तत्कालिक पूर्वानुमान के मुताबिक अगले कुछ घंटों में खूंटी, सिमडेगा और पूर्वी सिंहभूम जिले के कुछ हिस्सों में गरज के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान तेज हवा के चलने और वज्रपात की भी आशंका है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 4:02 हो चुके हैं और ये वक्त है बाल श्रोताओं के कार्यक्रम बाल सभा का। कार्यक्रम हम सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: बच्चों कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब बच्चे स्वस्थ होंगे और प्रसन्न भी। बच्चों आज है रविवार, यानी थोड़ी मस्ती, थोड़ा आराम और ढेर सारी फुर्सत का दिन। और आज की सुबह तो सच में बहुत सुहानी है।
1: सुबह का समय, हल्की धूप, ठंडी हवा और पेड़ों पर बैठी चहचहाती चिड़िया, क्या दृश्य है ना? बच्चों कितना शांत और सुंदर लगता है ना?
0: बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद हमें सुप्रभात कह रही हो। और इस सुंदरता का एक अहम हिस्सा है ये छोटी छोटी चिड़ियाँ।
1: और ये नन्ही नन्ही चिड़ियाँ वातावरण और पर्यावरण के साथ साथ हमारे जीवन में भी खुशियाँ भर देती हैं। पेड़ों की डालियों पर फुदकना, आंगन में आना जाना और इनकी हर छोटी सी हरकत मन को मोह लेती है बच्चों।
0: लेकिन बच्चों क्या आप ये जानते हैं कि ये चिड़िया रहती कहाँ है? दिन भर तो इधर उधर फुदकती रहती हैं, कभी आंगन में, कभी छत पर, तो कभी पेड़ की डालियों पर, और शाम होते ही वापस अपने घर में।
1: हाँ बच्चों, इन चिड़ियों का एक छोटा सा घर होता है जिसे हम कहते हैं घोंसला। पेड़ों की डालियों पर बना वो नन्हा सा घर कितना छोटा दिखता है ना, उतना ही खास होता है।
0: हाँ बिल्कुल, पता है बच्चों चिड़िया अपना घोंसला बहुत मेहनत से बनाती है। वे सूखी टहनिया, घास, पत्ते और रेशों से अपना घर तैयार करती है। ये उनके लिए सिर्फ एक घोंसला नहीं होता बल्कि उनके पूरे परिवार के लिए उनका सुरक्षित संसार होता है।
1: हाँ बच्चों, तिनका तिनका जोड़कर प्रेम, धैर्य और इतनी मेहनत से चिड़िया अपना घोंसला तैयार करती हैं ताकि वो अपने बच्चों को सुरक्षित रख सके।
0: लेकिन कभी कभी हम अनजाने में, खेल खेल में या जिज्ञासा के कारण भी उनके घोंसले को छेड़ देते हैं, तोड़ देते हैं, नुकसान पहुंचा देते हैं, जो उनके लिए बहुत कष्टदायक होता है। बच्चों
1: बच्चों जरा सोचिए, अगर कोई हमारे घर को नुकसान पहुंचाए तो हमें कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना? ठीक वैसे ही चिड़िया महसूस करती हैं, वो भी परेशान हो जाती है, दुखी हो जाती है।
0: इसलिए बच्चों हमें एक बहुत छोटी लेकिन जरूरी बात याद रखनी है कि घोंसले किसी का घर होते हैं, उन्हें छूना नहीं चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए।
1: अगर कभी पेड़ पर घोंसला दिखे बच्चों तो उसे दूर से देखें, बिना छुए, बिना उन्हें नुकसान पहुंचाए। अपने दोस्तों को भी इस बारे में बताएं क्योंकि चिड़िया भी हमारी तरह अपने घर से बहुत प्यार करती है।
0: बिल्कुल बच्चों, हम सब जानते हैं कि चिड़िया हमारे पर्यावरण का एक अनमोल हिस्सा है। वे न केवल प्रकृति को सुंदर बनाती हैं बल्कि हमारे पर्यावरण का संतुलन भी बनाए रखती हैं।
1: अगर हम घोंसलों को नुकसान पहुंचाते हैं बच्चों तो हम न केवल चिड़ियों को दुख देते हैं बल्कि प्रकृति के संतुलन को भी बिगाड़ रहे होते हैं।
0: इसलिए याद रखें बच्चों कि पेड़ पौधे और चिड़िया हमारी धरोहर है, उनकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। घोंसलों को छेड़ना गलत है और हमें दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करना चाहिए।
1: बच्चों हमें पता है कि आप सब चिड़ियों से बहुत प्यार करते हैं, इनकी आवाज आपको अच्छी लगती है, लेकिन सच्चा प्यार केवल महसूस करने में नहीं है, सच्चा प्यार है उनकी सुरक्षा करने में, है ना?
0: हाँ बिल्कुल, हमें ये समझना होगा बच्चों कि प्रकृति में हर जीव का अपना स्थान और अपना महत्व है। इसलिए अगर चिड़ियों से है प्यार तो ना करे घोंसलों से छेड़छाड़।
1: वाह क्या बात कही है दीदी ने।
0: बच्चों अभी हमने बातें की अपने आसपास रहने वाली चिड़ियों की, जो हमारे घर आंगन और छतों पर फुदकती रहती है और पेड़ों पर अपना घर बनाती है।
1: लेकिन क्या आप जानते हैं बच्चों कि कुछ चिड़िया ऐसी भी होती हैं जो एक जगह हमेशा नहीं रहती, ये मौसम बदलने पर हजारों किलोमीटर दूर से हमारे देश में भी आती हैं और दूसरे देशों में भी जाती हैं।
0: और इन्हें ही कहा जाता है प्रवासी पंछी, यानी ऐसे पक्षी जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करते हैं। बच्चों जरा सोचिए, इतनी लंबी यात्रा करना इनके लिए कितना कठिन होता होगा, है ना?
1: तेज हवाएं, लंबा रास्ता, थकान, फिर भी ये नन्हे पंछी हिम्मत नहीं हारते बच्चों। जब ये हमारे यहाँ आते हैं तो हमारे तालाब, पेड़ पौधों और खेतों की शोभा और भी बढ़ जाती है।
0: बिल्कुल, ये प्रवासी पंछी ठंड के मौसम में हमारे यहाँ आती हैं क्योंकि यहाँ उन्हें अनुकूल वातावरण और भोजन मिल जाता है। बच्चों ऐसे कई प्रवासी पंछी हैं जो हमारे देश आते हैं, जैसे साइबेरियन क्रेन, राजहंस और बार हेडेस गुस। साइबेरियन क्रेन साइबेरिया से भारत आता है वहीं राजहंस ये अपनी गुलाबी रंगत के लिए जाने जाते हैं। और बार हेडेस गूस ये बत्तख के प्रजाति के होते हैं बच्चों। और साइबेरियन क्रेन के बारे में और भी आपको बताएं तो ये अपनी लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध हैं।
1: इसके अलावा बच्चों कॉमन कुकू ये भी सर्दियों में भारत आते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे पक्षी हैं जो भारत आते हैं, उन्हीं में से एक है यूरोपीय रोलर। ये एक सुंदर प्रवासी पक्षी है जो भारत आता है और खास करके ये गुजरात के क्षेत्र में ज्यादा देखा जाता है। इसके अलावा लाल पीठ वाले श्रीके ये भी एक प्रवासी पक्षी है जो गुजरात में आता है और हमारे झारखंड में आता है। दीदी सबसे ज्यादा हमारे झारखंड में आता है साइबेरियन पक्षी।
0: बच्चों आपने भी ये ध्यान दिया होगा ना कि सर्दियों में अचानक कुछ नए पंछी दिखाई देने लगते हैं जो बहुत सुंदर होते हैं। कुछ तो झुंड में उड़ते हैं और कुछ तालाब के पास दिखते हैं।
1: प्रवासी पक्षी सिर्फ सुंदर ही नहीं होते बच्चों, बल्कि ये हमारे सच्चे दोस्त भी होते हैं। ये कीड़े मकोड़े खाकर फसलों की रक्षा करते हैं, बीज फैलाकर नए पेड़ उगाने में मदद करते हैं और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं।
0: बिल्कुल बच्चों, जब भी आप आसमान में उड़ते इन पंछियों को देखें तो ये बात जरूर याद रखें कि ये सिर्फ पंछी नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर का सफर तय करने वाले हमारे मेहमान हैं, हमारे दोस्त हैं,
1: जिनका स्वागत करना, जिनकी मदद करना, सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है बच्चों, जो आप जरूर निभाएंगे और वो भी छोटे छोटे लेकिन बड़े ही महत्वपूर्ण काम है।
0: जैसे अधिक से अधिक पेड़ लगाकर, साफ पानी रखकर, पंछियों को डराए बिना और अपने आसपास का वातावरण साफ रखकर।
1: तो याद रखें बच्चों, ये भी हमारे दोस्त हैं जिन्हें हमारे प्यार और सुरक्षा की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें कभी परेशान ना करें, नुकसान न पहुंचाएं और इन्हें डराए नहीं।
0: बिल्कुल, जब हम पक्षियों का ध्यान रखते हैं तो हमारा वातावरण और भी सुंदर हो जाता है बच्चों, और प्रकृति से प्रेम करना ही सच्ची समझदारी है। और बच्चों आपको एक बात और बता दें, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस वर्ष में मई के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है बच्चों। ये दिन पक्षियों के संरक्षण और उनके प्रवास के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है।
1: तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप जो हमारे यहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं, जो हमारे दोस्त हैं, आप उनकी सुरक्षा करेंगे और उन्हें किसी भी तरह का कोई नुकसान न पहुंचाएंगे। और दीदी जानकारी की बातें तो बहुत सारी हैं आज हमारे पास, लेकिन उससे पहले हम बच्चों का कुछ मनोरंजन करवा दें तो कैसा रहेगा?
0: बिल्कुल, बच्चों को सुनवाते हैं ये बाल गीत।

0: कैसा लगा बच्चों ये गीत? अच्छा लगा ना? तो चलिए, हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं, वो भी कुछ सुनाना चाहते हैं। तो चलिए दीदी, उनसे भी कुछ सुन लेते हैं।
1: क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम प्रीशा नाया है।
1: आज आप अपने दोस्तों को क्या सुनाना चाहेंगी?
2: मैं अपने दोस्तों को एक कविता सुनाने चाहूंगी जिसका शीर्षक है विनती। ईश्वर तुमने सूर बनाया जो अंधियारा दूर भगाता, प्रभु तुमने चंदा चमकाया स्वयं जगता हमें सुलाता, तुमने जल की धार बहाई हमसे कहते बढ़ते जा, झजे सुर में झरना गाता कभी न तुम मन में घबरा, दीपक जल कर हमें सिखाता तुम दुख सह कर भी सुख देना, धरती का कंकन सिखलाता सिर पर सारे दुख सह लेना, हम इस धरती पर रहते धरती माँ के संतान बने, हे प्रभु हम पर दया करो हम भी अच्छे इंसान बने, धन्यवाद।
3: वाह, बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छी कविता।
4: बच्चों कहते हैं अगर हौसले बड़े हो तो उम्र छोटी नहीं पड़ती। आज बाल सभा में हम मिलवाने जा रहे हैं आपको एक ऐसी नन्ही स्टार से जिसने अपनी अनोखी कला से सबको हैरान कर दिया है। सिर्फ 10 साल की उम्र और नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज। जी हाँ, नाक पर हुला हूप घुमाकर रिकॉर्ड बनाने वाली आदित्य सिंह। बच्चों आदित्रि ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और वर्ल्ड रिकॉर्ड तक में अपना नाम दर्ज कराया है। तो चलिए स्वागत करते हैं नन्ही चैंपियन आदित्रि सिंह का। हेलो आदित्रि, बहुत स्वागत है आपका बाल सभा में।
5: थैंक यू।
4: अच्छा आदित्रि, सबसे पहले आप हमें बताइए कि आपको हुला हूप घुमाने का ये आइडिया कैसे आया, ये क्यों पसंद है आपको जबकि इतने सारे खेल हैं?
5: मुझे ये आइडिया अपने दोस्त को देखकर आया, वो इसको करती थी। बाकी खेल तो अच्छे हैं लेकिन हुला हूपी में मुझे एक सुपर हीरो जैसा फीलिंग आती है। जब मैं हुला हूप घुमाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई जादुई शक्तियाँ हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं इसे टीवी देखते गाना सुनाते पैसे भी कर सकती हूँ।
4: बिल्कुल, क्या बात है। अच्छा आप एक बात सच सच बताइए कि रिकॉर्ड बनाते समय डर लगा था या मजा आया?
5: थोड़ा थोड़ा डर और बहुत सारा मजा मिलकर रिकॉर्ड की डर को गायब ही कर गया।
4: और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाने के लिए आप रोज कितनी प्रैक्टिस करती थी?
5: जब मेरे मन में रिकॉर्ड बनाने का ख्याल आया था तो मैं इसको खेलने समय करती थी लगभग एक घंटा, और मैं इसको सुबह भी करती थी। जहाँ लोग एक्सरसाइज और योगा करते हैं सुबह उठकर, वही मैं हुला हूप करती थी।
4: वाह, वैसे अभी आप किस क्लास में पढ़ती हैं?
5: 6A।
4: तो अब आप पढ़ाई के साथ खेल को कैसे मैनेज करती हैं?
5: मैं पढ़ाई और प्रैक्टिस के लिए अपना टाइम टेबल बनाती हूँ, स्कूल के काम करती हूँ, उसके बाद फिर मैं शाम को प्रैक्टिस करती हूँ जिससे

0: दोनों काम मैनेज हो जाते हैं।
1: बहुत खूब। और आपको और क्या पसंद है?
0: मुझे और स्केटिंग करना पसंद है, वेबोर्ड चलाना पसंद है और रिबन डांस करना पसंद है।
1: चलते चलते अपने दोस्तों को आप क्या कहना चाहेंगी? कुछ संदेश देना चाहेंगी?
0: जी बिल्कुल, मैं अपने दोस्तों को ये बताऊंगी कि मस्ती के साथ साथ पढ़ाई और अपने हॉबी पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हम दिल से किसी चीज को करना चाहे ना तो वो हमें जरूर मिलता है। जैसे मैंने अपने हुला हूप के पैशन को एक रिकॉर्ड में बदल दिया।
1: बिल्कुल।
0: मैं अपने दोस्तों को बोलना चाहूंगी कि तुम भी मेहनत करो अपने हॉबी पे जो तुम्हारा हॉबी है और उसमें सक्सेस हासिल करो, रिकॉर्ड बनाओ।
1: बिल्कुल सही कहा आदित्री आपने, और शाबाश आदित्री, आपने सच में साबित कर दिया कि मेहनत और आत्मविश्वास से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। और बाल सभा की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।
0: थैंक यू सो मच मैम।
2: आदित्री से मिलकर बहुत अच्छा लगा, क्यों बच्चों? और आदित्री जैसे बच्चों से हमें प्रेरणा भी मिलती है। तो चलिए अब कुछ और जानकारी की बातें।
1: हाँ बिल्कुल,
2: तो शुरू करते हैं जानकारी का ये सिलसिला। और अगली जानकारी क्या है
1: बच्चों? गर्मियों का मौसम आ चुका है। तेज धूप और गर्म हवाएं केवल हमें ही नहीं बल्कि हमारे पेड़ पौधों को भी प्रभावित करती हैं।
2: हाँ बिल्कुल, गर्मी अपने पूरे असर में है बच्चों, और इस मौसम में सिर्फ हम ही नहीं हमारे बगीचे के पौधे भी परेशान होते हैं। बच्चों पौधे बोल नहीं सकते लेकिन उनकी हालत बहुत कुछ कह जाती है।
1: हाँ, और अगर समय पर ध्यान न दिया जाए तो हरियाली सूखने लगती है, खासकर गर्मियों में। इसलिए जरूरी है कि हम बगीचे की देखभाल को हल्के में ना ले। बच्चों आपने भी देखा होगा कि गर्मी में पौधे जल्दी सूखने लगते हैं।
2: ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि तेज धूप में मिट्टी की जो नमी है वो जल्दी खत्म हो जाती है। इसलिए सबसे जरूरी है कि पौधों को समय पर पानी देना। सुबह या शाम के समय पौधों को पानी देना सबसे अच्छा होता है।
1: दोपहर की तेज धूप में पानी देना नुकसान कर सकता है बच्चों, और बहुत ज्यादा पानी भी पौधों के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए पानी उतना ही दे जितनी
2: पौधों को आवश्यकता हो। और सिर्फ पानी ही नहीं बच्चों, मिट्टी का भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अगर मिट्टी सूखी और सख्त हो जाए तो पौधों की जड़ें ठीक से सांसें नहीं ले पाती।
1: हाँ, इसलिए समय समय पर मिट्टी को हल्का सा खोदना जरूरी है। इससे हवा अंदर तक पहुंचती है और पौधे मजबूत बनते हैं।
2: एक और बात जो अक्सर लोग भूल जाते हैं और वो ये है कि पौधों को छांव देना। बहुत तेज धूप में छोटे पौधों को छांव की जरूरत होती है बच्चों, तो अगर संभव हो तो पौधों को तेज धूप से बचाने के लिए हल्की छाया की व्यवस्था जरूर करें। छतरी या कपड़े की मदद से आप ऐसा कर सकते हैं।
1: हाँ बच्चों, ये छोटी छोटी कोशिशें ही तो बड़े बदलाव लाती हैं। बच्चों एक और महत्वपूर्ण काम है जो आप कर सकते हैं, और वो है सूखे पत्तों को हटाना, क्योंकि सूखे और पीले पत्ते सिर्फ पौधे की खूबसूरती को ही नहीं घटाते बल्कि उसकी ताकत भी कम कर देते हैं।
2: इसलिए उन्हें समय पर हटाना जरूरी है बच्चों। इसके साथ ही साथ छोटे कीड़े भी पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसके लिए महंगे दवाइयों की जरूरत नहीं होती। नीम का पानी या हल्का घरेलू उपाय भी पौधों की रक्षा कर सकता है बच्चों।
1: गमलों को हमेशा एक ही जगह पर ना रखें बच्चों, उन्हें ऐसी जगहों पर रखें जहां उन्हें सही मात्रा में धूप और हवा मिल सके, क्योंकि हर पौधे की जरूरत अलग होती है। कुछ को ज्यादा धूप चाहिए तो कुछ को कम।
2: और अगर हम ये समझ लें तो पौधा खुद ही स्वस्थ रहने लगते हैं। बच्चों लापरवाही धीरे धीरे असर दिखाती है, और जब तक हम समझते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।
1: इसलिए ध्यान रखना जरूरी है कि बगीचे की देखभाल सिर्फ काम नहीं एक जिम्मेदारी है जिसे निभाना हमें सीखना चाहिए। और ये सिर्फ आपके माता पिता की जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी भी जिम्मेदारी है।
2: हम सब की जिम्मेदारी बनती है बच्चों पेड़ पौधों की देखभाल करें।
1: बिल्कुल, और एक छोटा सा कदम और, रसोई से निकलने वाले सब्जियों के छिलके इत्यादि का अगर सही तरीके से इस्तेमाल किए जाए तो वो पौधों के लिए खाद बन सकते हैं बच्चों।
2: यानी हम कचरे को भी काम में ला सकते हैं बच्चों, और ये आदत न सिर्फ बगीचों को बेहतर बनाती है बल्कि पर्यावरण को भी सुरक्षित रखती है।
1: याद रखें बच्चों, अगर हम प्रकृति से लेते ही रहेंगे और कुछ लौटाएंगे नहीं तो एक दिन संतुलन बिगड़ जाएगा।
2: इसलिए बच्चों बगीचे की देखभाल को समझदारी और संवेदनशीलता के साथ अपनाएं, क्योंकि यही छोटे कदम बड़े बदलाव ला सकते हैं।
1: हाँ बिल्कुल, बगीचे की देखभाल को आदत बनाएं, क्योंकि हर पौधा हर हरा पत्ता हमारे भविष्य की सांस है।
2: तो दीदी हमने बच्चों को जानकारी दे दी कि गर्मियों में बगीचों की देखभाल कैसे करना है, पेड़ पौधों की देखभाल कैसे करनी है, और अब बच्चों को हम सुनाते हैं एक बाल कथा। आज हम जो बाल कथा सुनाने जा रहे हैं उसका शीर्षक है परिश्रम का फल।
1: बहुत दिनों की बात है, फूलपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में सभी लोगों में आपस में बड़ा प्रेम था। मुसीबत पड़ने पर सभी एक दूसरे की सहायता करते थे। गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती व पशुपालन था। एक बार दुर्भाग्य से वहां अकाल पड़ा। वर्षा न होने से फसलें नष्ट हो गई, नदी नाले तालाब सूख गए, सभी लोग भूखे मरने लगे। संचित किया हुआ अनाज सब खत्म हो गया।
2: आदमी तो क्या, पशु पक्षी तक सभी बेहाल हो गए। लोग पीने के पानी के लिए तरसने लगे। ऐसे में मुखिया ने पंचायत बुलाई और सबसे सलाह मांगी। कोई भी सही सलाह न दे पाया। रामू नाम के एक किसान ने कुआं खोदने की सलाह दी ताकि पीने की पानी की समस्या का निराकरण किया जा सके। कोई भी उसकी इस बात से सहमत न था। सभी को लग रहा था कि वो बहुत मेहनत का काम है और जरूरी भी नहीं है कि जहां कुआं खोदा जाए वहां पानी निकल ही आए। रामू को पूरा विश्वास था कि यदि सभी लोग मिलकर परिश्रम करें तो कुआं अवश्य खोदा जा सकता है।
1: पर कोई उसका साथ देने को तैयार न था। अंततः पंचायत बिना कोई निर्णय लिए ही उठ गई, पर रामू ने हिम्मत न हारी। रामू के मित्र श्यामू ने उसका साथ देने का निर्णय लिया। दोनों मित्र कुदाले व फावड़े लेकर गांव के मंदिर में पहुंचे। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की और वही मंदिर के किनारे ही कुआं खोदने का निश्चय किया। अपने हृदय में ईश्वर के प्रति असीम श्रद्धा और विश्वास लिए उन्होंने कार्य आरंभ किया। वे दोनों कड़ा परिश्रम करते रहे। उन्होंने न रात को रात समझा न दिन को दिन, बस मेहनत करते रहे।
2: बहुत थक जाने पर थोड़ा विश्राम कर लेते और फिर जुट जाते। गांव के लोग उन्हें मूर्ख कहते रहे, पर दोनों मित्र अपने ही धुन में लगन और मेहनत से कुआं खोदते रहे। सूरज की चिलचिलाती धूप भी उन्हें उनके निश्चय से टिका नहीं पाई। उनके शरीर से धारो धार पसीना बहता रहा, हाथों में छाले पड़ गए, पर वे अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहे।
1: और आखिर वो दिन भी आ गया कि फावड़ा मारते ही जल की धारा फूट पड़ी। खुशी के मारे उनकी आंखों में आंसू आ गए और गले रुंध गए। उन्होंने ईश्वर को लाख लाख धन्यवाद दिया। उनकी मेहनत सफल हो गई थी। गांव वालों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। कल तक जो उनका मजाक उड़ाते थे आज उनके सिर लज्जा से झुक गए। रामू और श्यामू ने दिखा दिया कि लक्ष्य के प्रति दृढ़ विश्वास लेकर यदि कड़ी मेहनत और लगन से काम किया जाए तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। किसी ने सच कहा है कि मेहनत का फल मीठा होता है।
2: तो कैसी लगी बच्चों कहानी? बहुत अच्छी कहानी है, और हमें परिश्रम से घबराना नहीं चाहिए, और हमें तब तक उस काम में जुटे रहना चाहिए जब तक हमें सफलता न मिल जाए, है ना?
1: बिल्कुल।
2: और कहानी में कहा भी गया है आखिर में कि मेहनत का फल मीठा होता है ना बच्चों? तो चलिए अब कुछ जानकारी की बातें। हम हर हफ्ते आपको किसी न किसी एक प्रेरक व्यक्तित्व के बारे में आपको जानकारी देते हैं बच्चों। तो आज हम जिस प्रेरक व्यक्तित्व के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं उनका नाम है आर के नारायण।
1: बच्चों, आर के नारायण एक ऐसे महान लेखक थे जिन्होंने साधारण लोगों की साधारण जिंदगी को बहुत ही सुंदर और रोचक कहानियों में बदल दिया। आर के नारायण का जन्म 1906 में भारत में हुआ। बचपन में वे अपनी दादी के साथ रहते थे। दादी उन्हें रोज कहानियां सुनाती थी। यहीं से उनके मन में कहानी लिखने का शौक पैदा हुआ। वे पढ़ाई में बहुत तेज नहीं थे, लेकिन उन्हें किताबें पढ़।
3: अभी आप सुन रहे थे बच्चों का साप्ताहिक कार्यक्रम बाल सभा। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आइए श्रोताओं, आज हमारे रांची केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें।

अब से थोड़ी देर बाद यानी 4:35 पर आप सुनेंगे कुछ फिल्मी गाने। कार्यक्रम होगा सांझ सरगम। प्रादेशिक मुख्य समाचार होंगे शाम 5 बजे और 5:02 पर आप सुनते हैं युवा श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

श्रमिक लोग, ये कार्यक्रम का वक्त होगा शाम 5:30, जिसमें आज श्रोताओं चर्चा होगी माँ, जीवन की पहली शिक्षक, रेडियो से डिजिटल युग तक आकाशवाणी की यात्रा, सड़क सुरक्षा का संकल्प, जिम्मेदार नागरिक की पहचान और नई श्रम संहिता में श्रमिकों की सामाजिक और स्वास्थ्य सुरक्षा। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी प्रशांत गौरव की और शाम 6 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार।

कार्यक्रम खेती बारी का समय रहेगा 6:02, जिसमें आज चर्चा का विषय होगा जैविक कीट प्रबंधन। प्रश्नोत्तरी में आप सुनेंगे बदलते मौसम का झारखंड के कृषि और वनों पर प्रभाव। विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर ताहिरा अर्जुमंद और भेंटकर्ता होंगे कृष्ण जीवन पौराणिक। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी संजीव कुमार लाल की। और 6:32 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हमारी दुनिया, जिसमें चर्चा होगी पर्यावरण संरक्षण। और एक खोटा वार्ता भी हम आपको सुनवाएंगे, जिसमें विषय होगा आज का हमारे युवा राष्ट्र निर्माता। वार्ताकार होंगे ज्ञान रंजन कुमार, प्रस्तुति होगी संजीव कुमार लाल की।

प्रादेशिक समाचार का वक्त होगा शाम 7 बजे, 7:11 पर जिले में आजकल। श्रोताओं, आज रविवार है और आज के दिन आप सुनते हैं हिंदी साहित्यिक पत्रिका शतदल। समय होगा 7:15 और 7:45 पर आप सुनेंगे संताली समाचार पत्रिका। रात 8 बजे हम लेकर आएंगे श्रोताओं के लिए फिल्मी गीतों का प्रोग्राम रजनीगंधा और 8:15 पर आज आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां। और 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में। समाचारों का समय होगा 8:45 से। पहले आप सुनेंगे समाचार संध्या 9 बजे News@9 और 9:15 पर होंगे उर्दू में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

11 बजे से आप सुनेंगे क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, और रात 11:10 पर हमारी सांध्यकालीन सभा का समापन होगा। तो ये थे कार्यक्रम विवरण, आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझे सरगम।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: फिल्म संगीत के कार्यक्रम सांझ सरगम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त रौनक जहां। सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुनिए कार्यक्रम का पहला गीत अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में, रानी मलिक के बोल, आनंद मिलिंद का संगीत, फिल्म का नाम छोटे सरकार।

इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम आकाशवाणी के रांची केंद्र से। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर।

देव कोहली के बोल अभी आप सुन रहे थे, जिसे संगीत से सवारा था राजेश रोशन ने। आवाजें थी कुमार सानू और अलका याग्निक की। फिल्म का नाम था श्रोताओं सबसे बड़ा खिलाड़ी। और अब सुनिए आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश, साधना सरगम की आवाज में गीत आनंद बख्शी का, संगीत बीजू शाह का, फिल्म का नाम विश्वात्मा।

0: इसी गीत के साथ ही श्रोताओं, कार्यक्रम सांझ सरगम अब खत्म होता है। अगली मुलाकात तक के लिए अपनी दोस्त रौनक जहां को दीजिए इजाजत, नमस्कार। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं, शाम के 5 बज चुके हैं। आइए सुने प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। भाजपा के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्वा सरमा ने आज असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की और राज्य में भाजपा की अगुवाई वाली सरकार बनाने का औपचारिक दावा पेश किया। इससे पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा ने हिमंता बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए का नेता घोषित किया। श्री शर्मा 12 मई को असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आज गोड्डा के मेहरमा प्रखंड अंतर्गत धोरीचक से कुमारडीहा तक पथ सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने बेनीदास भूसका तक बनने वाली सड़क की आधारशिला भी रखी। मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। ग्रामीण विकास मंत्री ने इस दौरान जन समस्याएं भी सुनी और समाधान का भरोसा दिलाया। श्रीमती सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ढांचागत संरचना और मूलभूत सुविधाओं के विस्तार पर जोर दे रही है। राजधानी रांची के काके स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में कल से 2 दिवसीय खरीफ कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की शिरकत करेंगी। कार्यक्रम के पहले दिन कल जिलावार आकस्मिक योजनाओं पर प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। वहीं दूसरे दिन 12 मई को खरीफ पर कार्यशाला आयोजित की जाएगी। गढ़वा में पुलिस को अपराधियों के खिलाफ सफलता हाथ लगी है। गढ़वा थाना क्षेत्र से पुलिस ने 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 4 देशी कट्टा, कारतूस, मोबाइल और 2 पहिया वाहन बरामद किए गए हैं। ये अपराधी किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। इसी क्रम में अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में दोपहर बाद गरज के साथ हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के तात्कालिक पूर्वानुमान के मुताबिक अगले कुछ घंटों में बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, लातेहार और लोहरदगा जिले के कुछ हिस्सों में गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान तेज हवा के चलने, ओलावृष्टि और वज्रपात की भी आशंका है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर। आइए सुनिए युवा श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है युवाणी के इस कार्यक्रम में। मैं हूं आपका दोस्त ओमकार
1: और मैं हूं आपकी दोस्त रिया।
0: हम दोनों की ओर से आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जी हां दोस्तों, आज की ये शाम बहुत ही खास होने जा रही है, क्योंकि ना सिर्फ आप आज रोचक जानकारियों से रूबरू होंगे बल्कि मधुर गीतों के साथ आप सभी को आनंद भी मिलने वाला है।
1: जी दोस्तों,
0: रिया आज सुबह जब मैं उठा तो बालकोनी में खिली हुई धूप और नन्हे से मनी प्लांट को देखकर जो सुकून मिला ना, दिल खुश हो गया।
1: वाह ओमकार, दोस्तों हम बात कर रहे हैं घर पर पौधे लगाने की, क्योंकि कंक्रीट के इस जंगल में अगर थोड़ी सी फ्रेश ऑक्सीजन मिल जाए तो दिन बन जाता है ना।
0: बिल्कुल सही कहा। ऑफिस की टेंशन हो या पढ़ाई की, बस 5 मिनट अपने पौधों को पानी देने से ऑक्सीजन के साथ सौंधी खुशबू चारों ओर छा जाती है। सच में दोस्तों, मन तरोताजा हो जाता है और सच माना जाए तो सारा स्ट्रेस भी दूर हो जाता है।
1: बिल्कुल दोस्तों, घर पर पौधे लगाना ना केवल घर की खूबसूरती बढ़ाता है बल्कि हम मानसिक शांति, बेहतर स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा का भी बेहतरीन स्रोत होता है।
0: ये हवा को शुद्ध करते हैं, ऑक्सीजन बढ़ाते हैं जिससे तनाव कम होता है और घर में सुख समृद्धि रहती है।
1: बिल्कुल दोस्तों, घर में पौधे लगाने से जब भी हमारी नजर उन पर पड़ती है, उस हरियाली को देखकर हमारी आंखें सुकून से भर जाती है।
0: सही कहा रिया, ये छोटे छोटे घर पर लगे हुए पौधे एयर को फोटोसिंथेसिस के जरिए प्यूरिफाई करते हैं, साथ पर्यावरण में अपनी अहम किरदार भी निभाते हैं।
1: बिल्कुल, इंडोर पौधे घर के कोनों की सुंदर और जीवंत बनाते हैं जिससे घर का माहौल बिल्कुल खुशनुमा हो जाता है।
0: साथ ही दोस्तों, ये नमी का स्तर बढ़ाते हैं जिससे सूखी त्वचा, सामान्य सर्दी और गले की खराश भी कम हो सकती है।
1: दोस्तों छोटे छोटे पौधे अपने घरों पर लगाने से ना सिर्फ एयर प्यूरिफाई होता है बल्कि हम उसके औषधि गुणों को भी फायदा उठा सकते हैं।
0: ठीक कहा तुमने रिया। तो दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं कुछ ऐसे ही गुणों से भरपूर पौधों पर।
1: बिल्कुल, एलोवेरा औषधीय गुणों से भरपूर होता है, साथ ही एरिका पाम हवा को साफ करता है। सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि के लिए मैरीगोल्ड, तुलसी पीस और मनी प्लांट लगाए जाते हैं।
0: यहाँ तक कि दोस्तों एलोवेरा, स्नेक प्लांट एवं तुलसी लगाने से तो ये रात में भी ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, है ना, अपने आप में ये इंटरेस्टिंग।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो बस आज ही अपने घरों की ओर लौटते वक्त एक मनी प्लांट या कोई भी प्लांट जरूर लेकर जाए, क्योंकि आप पौधा नहीं लगा रहे हैं बल्कि आप अपने साथ एक दोस्त को भी लेकर जा रहे हैं। तो चलिए लेते एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम में। दोस्तों जैसा कि हमने चर्चा किया कि पौधे हमारे डेली लाइफ में कितना अहम भूमिका निभाते हैं, उसी प्रकार वातावरण पर भी उनकी एक बड़ी भूमिका है।
1: जी बिल्कुल दोस्तों, पौधे हमारे जीवन का आधार है। वे ना केवल धरती को हरा भरा बनाते हैं बल्कि हवा में मौजूद हानिकारक धूल के कणों और धुएं को भी सोखकर हवा को शुद्ध करते हैं।
0: वे वातावरण से जहरीली गैसें जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड को कम करने में भी मदद करते हैं।
1: यहाँ तक कि तापमान नियंत्रण करने में भी ये सहायक होते हैं, जिससे गर्मी का प्रभाव कम होता है और प्रदूषण जैसी समस्याओं से लड़ने में भी हमें मदद मिलती है।
0: इसके साथ ही दोस्तों, पौधे वाटर साइकिल का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वे बादलों को आकर्षित करके वर्षा लाने में भी अहम भूमिका निभाते हैं।
1: बिल्कुल दोस्तों, पौधों के बिना धरती पर जीवन की कल्पना करना असंभव है। वे हमें स्वच्छ हवा और भोजन भी देते हैं।
0: आज के समय के बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाना और मौजूदा वनों की रक्षा करना हमारा नैतिक कर्तव्य है।
1: बिल्कुल दोस्तों, वीनस फ्लाई ट्रैप के बारे में आपने कभी सुना है क्या? तो आइए हम बताते हैं और इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ऐसे ही कुछ शाकाहारी पौधों के बारे में भी हम आपको आगे जानकारियां देंगे।
0: संडियू जैसे मुगजली या ड्रोसेरा भी कहा जाता है, एक कार्निवोरस प्लांट है। इसके पत्तों में चिपचिपे बाल होते हैं जो ओस की बूंदों जैसे दिखते हैं, जिनमें फंसकर छोटे छोटे कीड़े इनका भोजन बन जाते हैं। ये दलदली और पोषक तत्वों की कमी वाली मिट्टी में उगते हैं। दुनिया भर में ड्रोसेरा के 194 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में भी इसकी कुछ प्रजातियां हैं, जिसमें से एक है ड्रोसेरा बर्मानी।
1: एक और मांसाहारी पौधा है कोबरा लिली, जिसे बाद जंदरा भी कहा जाता है। इस पौधे के विशिष्ट आकार के कारण ये सांप जैसा प्रतीत होता है। ये मुख्य रूप से हिमालय और नीलगिरी पहाड़ों में पाया जाता है।
0: नीलगिरी की टोडा जनजाति के लोग इस फूल के खिलने को मानसून के आगमन का संकेत मानते हैं। सबसे खास बात यह है दोस्तों कि ये 2400 से 3000 फीट की ऊंचाई में भी ऑक्सीजन कम होने पर वहां खिल जाते हैं।
1: और दोस्तों, क्या आपको पता है अगर चूहे अचानक कुतरना बंद कर दे तो क्या होगा? सुनने में छोटा सा सवाल लगता है ना, लेकिन इसका जवाब काफी डरावना है। असल में चूहों के दांत इंसानों की तरह कभी रुकते नहीं है, वे जिंदगी भर बढ़ते ही चले जाते हैं। इसलिए वे कभी लकड़ी, कभी प्लास्टिक तो कभी बिजली के तारों को कुतरते ही रहते हैं, ताकि उनके दांत हमेशा घिसते चले जाए। अगर चूहे कुतरना बंद कर दे तो उनके दांत इतने लंबे हो जाएंगे कि वे जबड़ों को चीरते हुए खोपड़ी तक चले जाएंगे और उनको घायल भी कर देंगे। यानी चूहों के लिए कुतरना सिर्फ उनकी आदत नहीं है, बल्कि उनके जीने का जरिया है। और साथ ही दोस्तों, आपको पता है आखिर पुराने जमाने के लोग पानी में सिक्के क्यों डालते थे? ये सिर्फ एक अंधविश्वास था या इसके पीछे भी साइंस छुपा था? तो मैं बताती हूँ। पहले के समय में ज्यादातर सिक्के तांबे या कॉपर के बने होते थे, और तांबा पानी में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करने की ताकत रखता था। जब लोग कुएं, तालाब या नदी में सिक्के डालते थे तो पानी शुद्ध हो जाता था। यानी ये सिर्फ मनोकामना मांगने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की सेहत बचाने के लिए भी देसी साइंटिफिक तरीका था। लेकिन आज के सिक्के स्टील या दूसरे मेटल के बने होते हैं, इसलिए अब पानी में सिक्के डालने से कोई फायदा नहीं होता। तो अगली बार अगर कोई सिक्का पानी में डाले तो समझ जाना कि इसके पीछे भी साइंस छुपा है। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं आज यानी 10 मई को इतिहास में क्या कुछ हुआ था। आज 1857 को आज ही के दिन मेरठ से भारत की पहली स्वतंत्रता क्रांति की शुरुआत हुई थी। भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूका, जिसने पूरे देश में आजादी की चिंगारी फैला दी। इसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है।
1: दोस्तों, 1994 को आज ही के दिन नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। इस दिन को दुनिया में इक्वालिटी और लोकतंत्र की जीत का प्रतीक माना जाता है।
0: आज ही के दिन 1526 में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में जीत हासिल करने के बाद आगरा में प्रवेश किया और मुगल साम्राज्य की नींव भी रखी। साथ ही 1993 में संतोष यादव, पर्वतारोही संतोष यादव ने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर एवरेस्ट पर दो बार पहुंचने वाली पहली महिला बनी थी। साथ ही दोस्तों, चलिए जानते हैं प्रमुख करेंट अफेयर्स के बारे में। सिक्किम भारत की पहली पूर्ण न्यायपालिका वाला राज्य बना। भारतीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने का विचार किया है।
1: भारत ने अरब सागर में अपना पहला विश्व परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी वाली जहाज INS ध्रुव तैनात किया। साथ ही नासा ने मंगल ग्रह की यात्रा के लिए प्लाज्मा इंजन का परीक्षण भी किया।
0: झारखंड ने 16वीं हॉकी इंडियन सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता और भारत ने अफगानिस्तान को चिकित्सा सहायता के रूप में 13 टन BCG वैक्सीन भेजी। चलिए दोस्तों, लेते एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: दोस्तों, बचपन का सबसे खूबसूरत रिश्ता पेड़ों से होता है। कभी उनकी ठंडी छांव में बैठकर खेलना, कभी दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना, तो कभी उदास होने पर पेड़ को गले लगाकर ऐसा महसूस करना जैसे कोई अपना हमें समझ रहा हो। पेड़ सिर्फ हमें हवा और छांव नहीं देते, बल्कि हमारे बचपन की अनगिनत यादों के साथी भी बन जाते हैं। उनकी डालियों पर झूलना, पत्तों की सरसराहट सुनना और मिट्टी की खुशबू के साथ बिताया हर पल दिल में हमेशा के लिए बस जाता है। इसलिए हमें पेड़ों से वही प्यार करना चाहिए जैसा वो बिना कुछ कहे हमसे करते आए हैं हमेशा।
1: बिल्कुल रिया, मुझे प्यारी सी कविता याद आ रही है। बचपन की वो प्यारी छांव, पेड़ों संग बीते थे गांव, कभी डालियों पर झूला झूले, कभी पत्तों संग सपने भूले, थक जाते जब खेल खेल में, बैठ जाते उनकी गोद के मेल में, पेड़ भी जैसे दोस्त हमारे, सुनते थे राज सारे सारे, ठंडी हवा और मिट्टी की खुशबू आज भी देती दिल को सुकून, बचपन और पेड़ों का नाता यादों में रह जाता और देता हमें सुकून।
0: बहुत खूब। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक ऐसे प्रदूषण की जो बाहर नहीं बल्कि हमारे घर के अंदर ही छुपा बैठा है।
1: बिल्कुल दोस्तों, बाहर की धूल धुएं तो हम देख लेते हैं, लेकिन घर के अंदर का प्रदूषण यानी इंडोर पॉल्यूशन अक्सर नजर नहीं आता।
0: और तो और, कभी कभी घर के अंदर की हवा बाहर से ज्यादा हानिकारक होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे, घर के अंदर प्रदूषण ये कहाँ से आता है भला।
1: तो सुनिए, किचन का धुआं, अगरबत्ती, रूम फ्रेशनर, पेंट की गंध, धूल और कभी कभी बंद कमरे में कम हवा आना, ये सब कारण हो सकते हैं।
0: और इसका असर सिर दर्द, एलर्जी, सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन और थकान जैसी समस्याएं।
1: लेकिन चिंता ना करें, क्योंकि प्रकृति ने इसका इलाज भी दिया है, पौधे।
0: बिल्कुल दोस्तों, यानी पौधे सिर्फ घर सजाने के लिए नहीं बल्कि हवा साफ रखने के लिए भी जरूरी होते हैं।
1: बिल्कुल, जैसे स्नेक प्लांट, एरेसिया पाम एंड मनी प्लांट।
0: जी हाँ, पौधे हवा में मौजूद कुछ हानिकारक तत्वों को कम करने में मदद करते हैं और घर को ताजगी से भर देते हैं।
1: और सबसे अच्छी बात, इन्हें ज्यादा देखभाल भी नहीं चाहिए, थोड़ा पानी, थोड़ी धूप और ढेर सारा प्यार।
0: तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका घर रहे हेल्दी और फ्रेश, तो आज ही अपने घर में एक छोटा सा ग्रीन कॉर्नर जरूर बनाइए, क्योंकि हवा साफ होगी तो जिंदगी भी खुशहाल होगी। तो दोस्तों, हमें बातें तो आपसे और भी करनी थी, लेकिन अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। तो दीजिए अपनी दोस्त रिया
1: और ओमकार
0: को इजाजत। हम दोनों की ओर से आप सभी को प्यार भरा
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवाओं का कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी की रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर। आइए अब सुने अगला कार्यक्रम श्रमिक लोक।

0: नमस्कार जोहार श्रमिक साथियों, आज के कार्यक्रम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त आशीष और आज मेरे साथ हैं श्वेता। आपको भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार आशीष, साथ ही सभी श्रोताओं को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूं आप सभी अच्छे से होंगे और सुन रहे होंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम श्रमिक लोक।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, सभी साथीगण हमारे कार्यक्रम को सुन ही रहे होंगे। साथियों, हम आपको बता दें कि आज का यह विशेष अंक समर्पित है उस महान व्यक्तित्व को जो हमारे जीवन की पहली गुरु, पहली मित्र और सबसे बड़ी प्रेरणा होती है, माँ।
1: बिल्कुल सही कहा। कहा जाता है कि बच्चे की पहली पाठशाला उसका घर होता है और उसकी पहली शिक्षक होती है उसकी माँ। जब बच्चा बोलना भी नहीं सीख पाता तब माँ उसे मुस्कुराना, पहचानना और भावनाओं को समझना सिखाती है। माँ ही वह शक्ति है जो अपने संस्कारों से बच्चे के व्यक्तित्व की नींव तैयार करती है।
0: सच ही तो है, माँ हमें सिर्फ चलना या बोलना नहीं सिखाती बल्कि जीवन के कठिन रास्तों पर संभल कर चलना भी सिखाती है। वह त्याग, प्रेम, धैर्य और करुणा का ऐसा पाठ पढ़ाती है जो किसी पुस्तक में नहीं मिलता।
1: बिल्कुल, माँ की सीख समय के साथ और भी अनमोल लगने लगती है। उसकी कही छोटी छोटी बातें जीवन का बड़ा अनुभव बन जाती है। माँ केवल जन्म देने वाली नहीं बल्कि जीवन को दिशा देने वाली होती है।
0: मातृ दिवस हमें यह अवसर देता है कि हम अपनी माँ के प्रेम, त्याग और शिक्षाओं के प्रति आभार व्यक्त करें। आइए इस दिन हम केवल उपहार ही नहीं बल्कि सम्मान, समय और स्नेह भी अपनी माँ को दें।
1: बिल्कुल, सभी माताओं को समर्पित है मातृ दिवस। माँ की ममता में संसार बसता है, उसके आशीर्वाद से हर सपना सजता है। और आज इसी अवसर पर आइए सुनते हैं एक खूबसूरत सा प्यारा सा गीत।

0: किसी तकनीकी कारण से ये गाना अभी नहीं आप सुन पा रहे, आपको नहीं सुना पा रहे हैं, लेकिन तब तक कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं।
1: जो कभी ट्रांजिस्टर से गूंजती थी आवाज, आज मोबाइल ऐप और इंटरनेट के माध्यम से दुनिया के हर कोने तक पहुंच रही है। समय बदला, तकनीक बदली, लेकिन आकाशवाणी की आत्मीयता आज भी वैसी ही बनी हुई है।
0: बिल्कुल साथियों, भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत वर्ष 1927 में हुई। धीरे धीरे यह माध्यम लोगों के जीवन का हिस्सा बनता गया। फिर आया वर्ष 1936, जब ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। बाद में इसे नाम मिला आकाशवाणी। यह सिर्फ एक प्रसारण सेवा नहीं थी, बल्कि देश की संस्कृति, भाषा और भावनाओं को जोड़ने वाला माध्यम बन गया।
1: अरे भाई, वो भी क्या दिन थे, सुबह सुबह समाचार सुनना, फिर भूले बुसरे गीत और रात को नाटक, पूरा परिवार रेडियो के आसपास बैठ जाता था।
0: जी हाँ, आकाशवाणी ने मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा और जागरूकता का भी बड़ा काम किया। खेती किसानी से जुड़े कार्यक्रम, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, युवाओं और श्रमिक साथियों के लिए विशेष कार्यक्रम और देशभक्ति गीत, हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ जरूर था, जो आज भी है।
1: बिल्कुल सही कहा, और आज भी ये सब कार्यक्रम हमारे श्रोतागण सुन सकते हैं। समय के साथ तकनीक बदली, ट्रांजिस्टर से FM रेडियो तक का सफर शुरू हुआ। FM ने युवाओं को नई ऊर्जा दी, संगीत, बातचीत और लाइव कार्यक्रमों ने रेडियो को और लोकप्रिय बना दिया।
0: मैं तो मोबाइल पर भी रेडियो ही सुनती हूँ। अब एप्स और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग से भी कहीं भी कभी भी आकाशवाणी को सुना जा सकता है। और मैं अपने साथियों से भी कहूंगी कि आप भी अपना पसंदीदा कार्यक्रम को सुनते रहिए।
1: और ये आज की युवा को मैं देखता हूँ कि वो गाड़ी में हैं तो बड़े अच्छे से FM लगा दिए, कोई झंझट नहीं, प्यारे प्यारे से गीत आ रहे हैं, कार्यक्रम आ रहे हैं और सुन रहे हैं और वो चल रहे हैं।
0: बिल्कुल, और साथ ही साथ बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ भी आपको मिलती है रेडियो पर।
1: तो डिजिटल युग में आकाशवाणी ने खुद को समय के साथ साथ ढाला है। आज समाचार पोर्टल, मोबाइल ऐप, पॉडकास्ट और डिजिटल स्ट्रीमिंग के माध्यम से इसकी पहुंच और भी व्यापक हो चुकी है। अब देश ही नहीं, विदेशों में बसे भारतीय भी अपनी मातृभाषा और संस्कृति से जुड़े, अपने को रेडियो से जुड़े पा रहे हैं।
0: बिल्कुल, और दोस्तों, आकाशवाणी की सबसे बड़ी ताकत है उसकी विश्वसनीयता। जब भी कोई बड़ी सूचना या राष्ट्रीय अवसर आता है, लोग आज भरोसे के साथ आकाशवाणी की ओर देखते हैं।
1: साथियों, रेडियो ने केवल आवाज नहीं दी, उसने भावनाओं को जोड़ा, दूरियों को मिटाया और पीढ़ियों को साथ लाने का काम किया। पुराने दौर का ट्रांजिस्टर हो या आज का स्मार्टफोन, आकाशवाणी की आवाज आज भी उतनी ही अपनत्व भरी है।
0: बिल्कुल, तो श्रोताओं, यह थी आकाशवाणी की प्रेरणादायक यात्रा और रेडियो से डिजिटल युग तक। तकनीक चाहे कितनी भी बदल जाए, लेकिन दिलों को जोड़ने वाली आवाज़ कभी पुरानी नहीं होती। और दोस्तों, हम आज सबसे पहले जो बात कर रहे थे मदर्स डे पर, तो आज हमारे पास है मदर्स डे पर कवित्री सत्या सिन्हा की कुछ कविताएँ, तो आइए सुनते हैं उनकी कुछ रचनाएँ।
2: कहने को तो बड़ा छोटा सा शब्द है माँ, पर न जाने कैसे पूरी दुनिया इसमें सिमट सी जाती है। इस शब्द के सही मायने मैंने तभी जाना जब खुद माँ बनकर इस किरदार को निभाया। माँ के चेहरे पर झुर्रियाँ दिखनी शुरू हो गई हैं। ये झुर्रियाँ नहीं, हम भाई बहनों के जीवन का सार है। जीवन के करघे पर माँ ने 65 बरस बड़ी नियमतों से बुने हैं। दोस्तों, स्वर्ग में टिफिन सेवा उपलब्ध नहीं होगी। अपने माता पिता को हाथों से बनाकर हर वो चीज खिलाएं जिनकी उन्हें लालसा है, जिससे न सिर्फ उनकी आत्मा तृप्त हो बल्कि स्वयं का हृदय भी बोझ मुक्त रहे। 10 मई को मदर्स डे है। मेरी आज की प्रस्तुति इसी से संबंधित कविताओं पर होगी। मेरी पहली प्रस्तुति है मेरी माँ। माँ के चेहरे पर झुर्रियाँ दिखनी शुरू हो गई। ये झुर्रियाँ नहीं, हम भाई बहनों के जीवन का सार है। गाढ़ी कमाई में मैं एक रुपए भी नहीं बचा पाती, पर न जाने सीमित पैसों में माँ कैसे मैनेज कर पाती। लिख से लाख करना हो या फिर रिश्तों का समीकरण बैठाना हो, यह बरकत सिर्फ एक माँ ही कर सकती है। जितना माँ हमें नियोज कर लुटाती, उतना तो हम कमा कर भी नहीं दे पाते। माँ कहती, तू तो मेरी परछाई है। माँ कहती, तू तो मेरी परछाई है। मैं कहती, तेरी एक दहाई भी मुझ में ना आई है। एक दिन उत्सुकता वश मैंने पूछा, माँ तुमने कैसे जाना कि तूने मुझे पाया है। माँ बोली, मन शांत हो गया, तभी लगा कोई मुझ में समाया है। बड़ी बड़ी डिग्रियों को लेने के बाद पता चला, अरे असली मैनेजमेंट गुरु तो माँ ही है। अंगुल चुटकियों मुट्ठियों का परफेक्ट अंदाज हो, या हाथ से छूकर बुखार की डिग्री मापनी हो, या फिर मौसम का पूर्वानुमान हो, मैनेजमेंट का इतना प्रैक्टिकल ज्ञान कोई और नहीं दे सकता। माँ बार बार कहती, जितना तपेगा उतना ही निखरेगा सोना। चहुं ओर परचम फहराए, वही है लंबी रेस का घोड़ा। यूं तो माँ की महिमा गा रही, लेकिन माँ मैं तुझे कोई देवी का दर्जा नहीं दूंगी। तुम साधारण जीवन जियो माँ, तुम गलतियां करो, जिद करो, अरे जो भी करो दिल से करो। बचपन में हमारे दसों सवाल से भी तुम नहीं खींचती, आज तुम्हारे अनगिनत सवालों को मैं सुलझाऊंगी। परफेक्ट ना भी बनूं, पर लाइन में थोड़ी सी तो आगे आऊंगी। मेरे लिए तो दुनिया की बेशकीमती दौलत है, आज जो भी हूं सब तेरी ही बदौलत है। मेरी अगली कविता का शीर्षक है जननी। आसान नहीं जननी बनना, आसान नहीं जननी बनना, खुद को मिटा निस्वार्थ सृजन करना। बचानी पड़ती है अपनी बगिया हर खरपतवार से, बुरी नजरों के वार से, काढ़ कलेजा ललना कमरिया टेक। मरण की विधि ढेरों, जनन का तरीका एक। मुट्ठी भर फांक के दो दिन भूखी रह जाए, और फिर उसी तन से दूध काढ़ बबुआ के सुलाए। महीनों से आईना देखा नहीं, जब देखा तो खुद को चीन्हा नहीं। लटों की चमक सफेदी में खो जाए, तबे जाकर बिटवा ढंग से पोसाए पलाए। बिटवा पे उठे सवाल तो जवाब लेकर माई आई। अरमानों की कूची से रजवा की दुनिया सजाई। बटुए में तो सिक्के थे, पर जज्बा नोटों की दिखाई। बहुत खट चुकी है माई, अब चश्मों की बारी आई। के विधि माई ने आपन सपनन के संसार सजाई। खोई जवानी ओढ़निया में कितने पैबंद नजर आई। जगने

मेरे दोस्तों को देख तुम भी उन्हें अपनाया करो ना, करो ढेर सारी बातें, भरपूर दुलार लुटाया करो ना, माँ किसना की माँ जैसी बनो ना। अरे क्या होता है पर्सनल टाइम, किसे कहते हैं बिजी शेड्यूल, यूजर आईडी पासवर्ड भूलकर अपने लल्ला को पास बुलाओ ना। जितनी नेमते से रखती हो मोबाइल को पास में, कभी गोद में मुझे भी सुलाओ ना। माँ किसना की माँ जैसी बनो ना, गुस्से में पापा अगर बोल जाएं कुछ उल्टा सीधा, अपनी चुप्पी दिखाकर उन्हें हराओ ना। अरे दोनों के कलेश में पिस रहा मेरा बचपन, ममता की मूरत बन मुझे गले लगाओ ना। माँ किसना की माँ जैसा बनो ना। मेरी अगली कविता का शीर्षक है अरे मेरा बिटवा बड़ा हो गया। घुटनों की बल चलता था, आड़े तिरछे चलने लगा, एक दिन खुद ब खुद खड़ा हो गया, अरे बिटवा मेरा बड़ा हो गया। मेरे हाथों खाता था मिसी रोटी, कहानियां सुलाती थी मैं लेटी ही लेटी, सपनों का बस्ता लिए खड़ा हो गया, अरे देख मेरा बेटा बड़ा हो गया। मेरा आंचल पकड़कर आती थी नींद जिसे, तकिए में मुंह छिपाकर रात भर जागने लगा, पग पग परीक्षा पग पग परीक्षा, टक्कर कड़ा हो गया, अरे देख बिटवा मेरा बड़ा हो गया। मुझसे परे नहीं उसकी व्यथा, फिर क्यों छुपाने लगा अपनी दर्द कथा, किस भव बाधा में खड़ा हो गया, अरे देख मेरा बिटवा बड़ा हो गया। अमर बेल सी फैली है मेरी गृहस्थी, पार लगानी है जिम्मेदारियां, सकून कम संघर्ष कड़ा हो गया, अरे देख बिटवा मेरा बड़ा हो गया। मायूस आंखें फिर भी होठों पर हंसी, ना कोई बहस ना कोई विवाद, मौन स्वीकृति पर अड़ा हो गया, अरे देख मेरा बिटवा बड़ा हो गया। माँ और बच्चे की इसी नोकझोंक और प्यार पर आधारित मेरी आखिरी प्रस्तुति है माँ बेटी। मैं हूँ माँ तू है बेटी, मैं हूँ माँ तू है बेटी, आज सुनाऊंगी कहानी लेटी ही लेटी। एक रोज मजार पर जब मैं तुझे मांग आई, ऊपर वाले ने सुनी रजा हुई गोद भराई, माना तू मेरी है परछाई, पर तुझे पाकर मैं पहले से ज्यादा नरमाई, तुझे पालकर फिर से जिया अपना बचपन, वही चोर सिपाही वही गुड्डे गुड़ियों की शादी, अरे जोड़ तोड़ का पंडाल न जाने कितने बार आती, हर मायने में तू मुझसे है बेहतर, माँ बेटी जैसी नहीं दोस्तों के जैसे रहते हैं अक्सर, अलहड़ सी रहने वाली तू जब पहली बार दर्पण के सामने आई, मैं चौंक उठी समझा आ गई तेरी तरुणाई, जिन बातों को हमारी माए करती थी छिपन छिपाई, हमने उन विषयों पर भी गंभीर बहस छिड़ाई, तेरी लाई साबुन क्रीम पर न जाने मैंने कितनी सख्ती से रोक लगाई, अंदर से मजबूत और खूबसूरत बनो मैंने उसी पर जोर लगाई, एक दिन पिया संग तूने अपनी दुनिया बसाई, बाबुल की बिटिया ने न जाने कैसे हर किरदार निभाई, सबों में नमक चीनी सी घुल गई, मैं तो बस तेरी सपनों में खो गई, अब धीरे धीरे तेरी माँ बुढ़ापे की ओर आई, तुझ में मुझे अब अपनी माँ की छवि दिखाई, कभी प्यार तो कभी डांट तो मनवा ही लेती अपनी बात, कभी डगमगाऊं तो तू झट से बढ़ाए हाथ, रब

0: पूछा, अरे मैंने तो सिर्फ तुझे मांगा था। तो रब बोले, मैंने बेटी, दोस्त, हमराज सब दे डाला। रब बोले, तूने बरकत मांगी थी और मैंने तेरी झोली भर डाली। धन्यवाद।
1: प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही आरटीएलआई, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस आरटीएलआई की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कवित्री सत्या किरण की रचनाएं, सत्या सिन्हा की रचनाएं मदर्स डे पर। तो दोस्तों, माँ की तो जितनी भी चर्चा की जाए, जितना उनका गुणगान किया जाए, वो कम ही है। जो हम लोग कार्यक्रम में शुरुआत में सुनना चाह रहे थे एक खूबसूरत सा गीत, तो आइए सुनते हैं वो प्यारा सा गीत।

0: साथियों, एक प्यारा सा गीत सुनने के बाद अब आगे की चर्चा हम शुरू करते हैं आपके साथ। साथियों, सड़कें केवल मंजिल तक पहुंचने का रास्ता नहीं होती, बल्कि ये हमारी जिम्मेदारी, अनुशासन और जागरूकता की भी परीक्षा लेती है।
1: हाँ बिल्कुल, एक छोटी सी लापरवाही किसी परिवार की खुशियां छीन सकती है, जबकि थोड़ी सी सावधानी कई जिंदगियां बचा सकती है।
0: साथियों, हर दिन हजारों लोग सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। इनमें से अधिकांश दुर्घटनाएं तेज गति, ट्रैफिक नियमों की अनदेखी, मोबाइल फोन के उपयोग और शराब पीकर वाहन चलाने जैसी गलतियों के कारण होती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आशीष, लेकिन यदि हर नागरिक कुछ सरल नियमों का पालन करे तो इन दुर्घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकता है। जैसे दूरी छोटी हो या बड़ी, सुरक्षा हमेशा जरूरी है। हेलमेट केवल चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि जीवन बचाने के लिए पहना जाता है।
0: वाह, कितना सही कहा आपने श्वेता। सिर्फ दो पहिया वाहन ही नहीं, कार चलाते समय सीट बेल्ट लगाना भी उतना ही आवश्यक है। सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करें और ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें। बच्चों को भी ट्रैफिक से सड़क से सुरक्षा के नियमों को सिखाना भी बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, और ये सब जानकारियां बचपन से ही दी जानी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई एज आएगा जिस समय आप सीखेंगे। एक जिम्मेदार नागरिक वही है जो अपनी सुरक्षा के साथ साथ दूसरों की भी सुरक्षा का ध्यान रखे। और दोस्तों, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, साथ ही निर्धारित गति सीमा का पालन भी जरूर करना चाहिए, और शराब पीकर तो वाहन बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए। और इन संकल्पों के साथ ही हम जिम्मेदार नागरिक बन सकेंगे।
0: वाह, कितना सही कहा आपने। और साथियों, देश के विकास की मजबूत नींव हमारे श्रमिक भाई बहन हैं। कारखानों से लेकर खेतों तक, निर्माण स्थलों से लेकर दफ्तरों तक, हर जगह श्रमिकों की मेहनत देश को आगे बढ़ाती है। ऐसे में उनकी सामाजिक और स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करना भी बेहद जरूरी हो जाता है।
1: बिल्कुल, और दोस्तों अब हम आपको जानकारी देंगे नई श्रम संहिताओं में श्रमिकों की सामाजिक और स्वास्थ्य सुरक्षा के बारे में। दोस्तों, बदलते समय के साथ काम करने के तरीके भी बदल रहे हैं। आज असंगठित क्षेत्र, गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर और संविदा कर्मियों की संख्या भी तेजी से बढ़ती जा रही है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने श्वेता, और हमने देखा कि नई श्रम संहिताओं में इन सभी चीजों को ध्यान रखा गया है। खासतौर पर जो अभी हमने कहा कि गिग वर्कर, तो बेसिकली गिग वर्कर क्या है, ये जो हम देखते हैं कि जोमैटो से या हमने ब्लिंकिट जो अभी आपने देख रहे हैं जो ऐप से माध्यम से वो तुरंत आपके घर पर सामान को पहुंचा लेते हैं, उन्हीं को ही हम लोग गीग वर्कर कहते हैं। तो इन श्रम संहिताओं में ये गीग वर्कर का भी ख्याल रखा गया है। अभी कुछ दिन पहले संसद में ये सवाल भी उठा, लोगों ने इसे आवाज दी कि भाई इतना जल्दी में पहुंचाना थोड़ा खतरा हो जाता है, तो हमें उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए।
1: हाँ,
0: तो ये श्रम संहिताओं में भी इन बातों को जोड़ा जा रहा है।
1: 10 मिनट में सामान घर पे पहुंचाना हमें तो बहुत आसानी से मिल जाता है कि पलक झपकते सामान आपके घर पर हाजिर होता है, लेकिन ये सामान सेंटर से उठाकर, शॉपिंग सेंटर से उठाकर आपके घर तक पहुंचाने में जो लोग लगे हुए हैं और कितनी उन्हें जद्दोजहद करनी पड़ती है सड़क में, क्योंकि ट्रैफिक उनके लिए भी उतनी ही है। तो ऐसे में ये 10 मिनट का जो समय जो बांधा गया है, क्योंकि ये जो कंपटीशन का युग है कि हर दुकान चाहता है कि मेरा सामान लोगों तक पहुंचे, तो इसके लिए वो चाहता है कि जितनी जल्दी हम कस्टमर्स को सर्विस दें, और इसके चक्कर में परेशान होते हैं या
0: और मानव मूल्यों का हमें ध्यान रखना चाहिए।
1: बिल्कुल, तो दुर्घटना के शिकार भी इसमें लोग हो रहे हैं, तो इसका ध्यान हम सबको भी रखना बहुत जरूरी है।
0: इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने श्रम कानूनों को सरल बनाकर 4 नई श्रम संहिताओं का निर्माण किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है सामाजिक सुरक्षा संहिता। इसके तहत कर्मचारियों के भविष्य निधि यानी PF, कर्मचारी राज्य बीमा यानी ESI, मातृत्व लाभ, पेंशन और ग्रेच्युटी जैसी सुविधाओं को जोड़ने का प्रयास किया गया है।

0: बिल्कुल दोस्तों, और स्वास्थ्य सुरक्षा भी नई श्रम संहिताओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियां संहिता के तहत कार्यस्थलों पर सुरक्षा मानकों को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है।
1: अब उद्योग और संस्थानों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे श्रमिकों को सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराएं, जैसे स्वच्छ पेयजल, प्राथमिक उपचार की सुविधा, उचित रोशनी और वेंटिलेशन काम के तय घंटे।
0: अब बिल्कुल, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो नियोक्ता होते हैं वो सोचते हैं कि जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनसे हम जितनी चाहे उतना काम करा सकते हैं, और इसके बदले में उन्हें अलग से कोई मजदूरी, कोई मेहनताना भी नहीं दी जाती थी। लेकिन दोस्तों, ये कहा तो जाता है कि आपके लिए ये सारी सुविधाएं हैं, ये आपके हक हैं, ये आपके अधिकार हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप इसकी मांग खुद करें या जागरूक हों, तभी आप इन सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।
1: तो साथियों, नई श्रम संहिताएं श्रमिकों को सामाजिक और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसी आशा के साथ हर श्रमिक सुरक्षित, स्वस्थ और सशक्त बने, हमें दीजिए अनुमति। मैं हूं आपका दोस्त आशीष,
0: और मैं श्वेता। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्रमिक लोक, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर शाम के 6 बज चुके हैं। आइए सुने अब तक के मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना को 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने आधुनिक ढांचागत संरचना के विकास पर जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर अग्रसर है और राज्यों के विकास पर बल दिया जा रहा है। राजधानी रांची के काके स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में कल से 2 दिवसीय खरीफ कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की शिरकत करेंगी। कार्यक्रम के पहले दिन कल जिलावार आकस्मिक योजनाओं पर प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। वहीं दूसरे दिन 12 मई को खरीफ पर कार्यशाला आयोजित की जाएगी। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनते ही झारखंड में असर दिखने लगा है। श्री दुबे एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहते नजर आए कि पाकुड़ में वर्षों से चल रहे अवैध टोकन सिस्टम और खनिज कारोबार पर लगाम लगने से ईमानदारी से काम करने वाले व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों को राहत मिली है। जामताड़ा के पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह की अध्यक्षता में आज अपराध गोष्ठी आयोजित हुई। इस दौरान श्री सिंह ने पुलिस पदाधिकारियों को विशेष रूप से साइबर अपराध पर नियंत्रण, महिला और बाल विकास, सुरक्षा के प्रति सजग रहकर कार्य करने का निर्देश दिया। भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। चीन के शंघाई में आयोजित दूसरे चरण में आज झारखंड की दीपिका कुमारी और अंकिता भकत तथा कुमकुम मोहद की तिकड़ी ने मेजबान और खिताब के प्रबल दावेदार चीन को शूट ऑफ कर दिया और इसी के साथ उन्हें हराया। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज दोपहर बाद गरज के साथ हुई बारिश और ओलावृष्टि से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 16 मई तक ऐसे ही हालात बने रहेंगे। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाश।

0: गाछ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, खेती बारी कार्यक्रम सुनो या सब भाई बहन मन के सुनना बहन बटे जमा जमा जोहार। और युवराज भाई और के हूँ जोहार
1: जोहार जोहार सुने ना बहन और के जोहार और हम रह कर सुनो या सब भाई बहन मन के फिर से जोहार
0: है। और कहो का हाल चाल है?
1: हाँ हाल चाल तो एकदम नगद है। बताओ देखो एखन तो जैसा पानी बरखा बरसात है हमरे कर जे किसान भाई बहन है सबकर चेहरा में देखब तो हरियाली आ जाए है, मुस्कान आ जाए है।
0: हरियाली मुस्कान तो आबे करी एखन रौर भी एकदम सुपर हरियर ही तो पूरा मौसम कर मजा लेव थी एकदम भींज भींज के एकदम
1: सही करे। देखो हमरे किसान भाई है कि
0: हाँ।
1: तो हमरे के तो दरकार है खेत डाण बटे जाक से
0: एकदम एकदम
1: तो आज के मौसम करवट ले लेव थे आज के
0: तुरते नहीं तुरते गरम तुरते धूप एकदम तुरते पानी बरखा नहीं पत्तो नहीं चलते मतलब घर से निकलो घर में रहो सेवरा रौद और खेत दोइन तक जाते में डाण तक जाते में देखा थी एकदम मुरो को पानी दाना दाना जोर से एकदम नहीं तले रौरे के सांभरे कर मौके नहीं दे कि कन्हो रौरे बचाव नहीं तब चले भिंजो और मजा ले एकदम तुरते ऊपर ठंडवाए भी देवा थे गर्म के संगे संगे।
1: देखो का है कि इतना जैसे गर्मी अखन बढ़ते जाते है
0: हाँ।
1: तो जैसे हमरे कर झारखंड कर जब मौसम के जानल जाएला मिली शिमला के कहल जाएला
0: सही
1: तो सही बात है तो जब तक मौसम में रोड के परिवर्तन नहीं मिले तो ये दर्जा है चाहे ये नाम देवल जाए है तो फिर तो सीधे एकदम झुकला के तरी हो जाए।
0: सटीक बैठा था नहीं
1: हाँ।
0: देखो ने हमरे रौरे जी ने कहा थी कि हमरे किसान मने नहीं तो किसान के इधले एकदम सुपट खेती बारे में चल जाला ध्यान नहीं और खेती कहल जाए तो देखो आज कल हमरे कर किसान भाई बहन मने बरन बरन किस्म किस्म कर खेती बारी करते हैं सिकरे में ठो देख लो कि जैविक कीट प्रबंधन नहीं।
1: देखो हमरे का हमरे का जब भारत है के कृषि प्रधान देश है के ओकर संगे संगे हमरे का झारखंड राज्य है के ओहो कृषि प्रधान राज्य है के हमरे का झारखंड में देखब तो यहाँ अधिकांश आदमी कृषि कार्य में व्यस्त हैं और देखब तो ओकर जे आय का साधन है वो कृषि कार्य से ही है तो देखो हमरे जी तोड़ मेहनत करीला दिन रात एक कर के मेहनत करीला
0: तब जाके छुआ पोता मन के हमरे बढ़िया से पढ़ाई लिखाई
1: हाँ खाना पीना जो भी हो
0: पूर्ति कर सकत है नहीं तब सेल हमरे के जरूरी है अगर हमरे अपन काम में ध्यान नहीं दे भले कैसे पढ़ा लिखा छुआ मन के जरूरी है कि एकदम 110% देवे के अपन काम में नहीं
1: कह के हमरे के एकदम मेहनत करीला ओकर बाद मेहनत करल बाद अगर कीट मकोड़ा चाहे थोड़ा सा अपन लापरवाही से अगर फसल बर्बाद हो जाला तो बहुत नुकसान हो जाला
0: एकदम सुपर कहते भाई
1: बहुत नुकसान के जे हमरे का जे किसान है जे निम्न तबके कर जे किसान मन है उमन कहूँ से कर्जा लेके कहूँ से सूद ब्याज में पैसा लेके उमन खेती कार्य में उमन पैसा के लगाए ना
0: और वो पैसा डूबे भी नहीं चाहिए भाई एकदम मुनाफा कर संगे निकले खे नहीं तब सहे रे। देखो ना जैसे हमरे खन चर्चा करते कि जैविक कीट प्रबंधन तो हमरे के जाने कर दरकार है कि का लगे से के नहीं तब तो जैविक कीट प्रबंधन फसल के हानिकारक कीट मन से बचाए के लगिन रसायन केर बजाय प्राकृतिक शत्रु जैसे मित्र कीट सूक्ष्म जीवी और जैविक कीटनाशक कर उपयोग करे कर एगो सुरक्षित और टिकाऊ विधि लागे और ये परिस्थिति के संतुलन बनाए के रखते 200 से बगरा कीट मन के नियंत्रित कर सकेला और ये विधि ना खाली फसल कर रक्षा करेला बल्कि कृषि उत्पादन कर गुणवत्ता के भी बढ़ाएला जेकर में नीम कर तेल फेरोमोन ट्रैप और ट्राइकोडर्मा कर उपयोग प्रमुख है नी तब और जैविक कीट प्रबंधन कर फायदा भी है भाई रासायनिक अवशेष से माटी और पानी का प्रदूषण नहीं हुए।

0: और टीका और सुरक्षित भी होवेला, जैसे कि मानव स्वास्थ्य और मित्र कीट ले ई सुरक्षित है। सेहत और पारंपरिक कीटनाशक जैसन कीट इनकर प्रति प्रतिरोधी नहीं बनायना नहीं तब। और जैविक कीट प्रबंधन से लाभ भी है भाई, ई पर्यावरण और स्वास्थ्य ले सुरक्षित है। सेहत तेरे उत्पादन लागत में भी कमी और माटी कर उर्वरता में सुधार रहेला। और ई विधि कर उपयोग करके किसान भाई मन रासायनिक कीटनाशक में निर्भरता कम कर सके ना, और सतत कृषि के बढ़ावा दे सके ना नितब। और जैविक कीट प्रबंधन कर प्रमुख तरीका भी है करे कर, जैसे हो गया कि वनस्पति के कीटनाशक 10 मिलीलीटर, एसडीन चाहे 50 मिलीलीटर, नीम बीज अर्क के 1 लीटर पानी में मिलाए के महीना में 2 बार छिड़काव करे चाहिए हमरे कर किसान भाई मन के। सेहतेर फेरोमोन ट्रैप फल मक्खी जैसन कीट के नियंत्रित करे के लिए 12 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर लगावे और हर 20 से 25 दिन में लोर बदले खाए। और ये मित्र कीट जैसे कि झल्ली के नियंत्रित मतलब रोके के लिए करे के लिए परजीवी ट्राइकोगामा चिलोनिस कर 1.5 लाख अंडा प्रति हेक्टेयर कर दर से 3 बार प्रति सप्ताह छोड़े खाए।
1: देखो रोरे तो बहुत बढ़िया बढ़िया जानकारी दिली, और हमरे के जे हमरे के किसान भाई बहन मन सुनत हो बे उमन जरूर रोर कर जे खन बताली विधि बताली उकर उपाय बताली उकर से लाभान्वित जरूर हो बे। और देखो कहे कि हमरे रासायनिक खाद कर चाहे दवाई का छिड़काव करीला तो देखो का है कि मौसम जो हमारे पर्यावरण है
0: हाँ
1: पर्यावरण के दूषित करबे करेला, संगे संगे मानव शरीर के भी
0: भी नुकसान
1: बहुत
0: पहुंचाए ला
1: नुकसान पहुंचाए ला और माटी के भी नुकसान पहुंचाए ला।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: उसे लिए हमारे को कोशिश करना चाहिए कि जितना कम से कम मात्रा में रासायनिक खाद कर प्रयोग करे के चाहिए, एकदम हो सके तो
0: मात्रा के
1: ना एक
0: हिसाब से।
1: बराबर
0: हाँ
1: हाँ ना
0: मात्रा
1: एक
0: के
1: बराबर
0: हिसाब
1: में
0: से
1: प्रयोग
0: करेक्ट
1: करे के चाहिए। और देखो जो हमारे का जो जैविक खाद है, जैविक खाद से क्या है कि हमारे का जो माटी है जे हमारे का फसल प्रबंधन है माटी प्रबंधन है
0: उर्वरता
1: और
0: बनल रहला ने माटी
1: एकदम
0: कर
1: हमेशा
0: में
1: बनल रहेला, गुणवत्ता माटी
0: गुणवत्ता
1: में जे
0: माटी में
1: गुणवत्ता
0: डाले।
1: है वो बनल रहे। देखो का है कि अगर फसल थोड़ा बहुत पैदावार में कम हुई लेकिन चिंता करे के बात न खे, वो कहूँ ना कहीं 2 साल 3 साल बाद वो मेकअप कर देवेला।
0: मेकअप कर
1: और
0: देवेला
1: सबसे
0: और
1: बड़ बात है कि
0: हमरे
1: हमारे का शरीर सुरक्षित
0: शरीर
1: रहेला।
0: सुरक्षित स्वस्थ रहेला। हमरे जे मन खाब ओहे चीज के हमरे कर किसान भाई मन भी खात हैं, मतलब कहे कर मतलब है कि हम भी स्वस्थ रह और रावरे भी स्वस्थ रहो है नी, तभी हमरे अपन कुछ अगर शरीर ठीक रही तभी ने हमरे कुछ काम कर सकब भाई, तभी हमरे आगे बढ़ सकब नहीं तब। और शरीर स्वांग ठीक नहीं रही तो हमरे का काम करब, कुछ नहीं। सेल एकदम अच्छा से खाओ पियो तंदुरुस्त रहो, एकदम रौरे भी तंदुरुस्त रहो और सबके तंदुरुस्त रखो, और यही तरह हमरे एकर कार्यक्रम के भी आगे बढ़ाओ एकदम तंदुरुस्ती कर संगे भाई काका
1: तो
0: जुगाड़ी
1: चलो
0: में।
1: देखो हमारे का जखन किसान भाई बहन मन है वो मन भी एखन असरा में होबे कि मन के का हमारे मन सुनना, तो चलो नागपुरी में और करीला कृषि गीत से जेके गा है इग्नेश कुमार और संगी मन।
0: एकदम

0: कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन?
2: आरबीआई कहता है
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
3: तो कहो भाई, गीत तो सुपर डबर नगदे सुना ले ने।
4: हाँ,
3: काम कर बीच में, लेकिन सब गीत गोविंद हवाल से नहीं, काम का भी पता नहीं चलेला नहीं।
4: सबसे बड़ी चीज है कि थकान, जो शरीर पे थकान है पूरा
3: खत्म हो जाएला, रिजन करल से एकदम मन हरियर हो जाएला भाई। हाँ, नहीं थकान तो कर पता नहीं चले
4: कि दिन भर हमरे एकदम मूर्ख जोर खटीला
3: एकदम एकदम,
4: चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडा हो।
3: लेकिन नहीं भाई, वो थकान में भी नहीं हमरे के, जैसे कोनो काम करेला नहीं तो काम करे कर भी बेरा में गीत गोविंद होवेला समय के अनुसार। रोपे खेत में रौरे घुसो ने तो रोपा रोपे कर गीत भी रहेला ने, जेके हमरे के बहिन मने गावे ने, और रोपा कर पतो नहीं चलेला के खान रोप के सिरा देवन गीते कर संगे संगे, सेले थकान तो एकदम छु मंत्र हो जाएला। तो हमरे के जरूरी है काम कर संगे संगे रीझ रंग भी करे खाए, गीत गोबे मन के भी गाते निकले खाए एकदम। नहीं तब
4: देखो का है कि हमरे के झारखंड कर मौसम है।
3: हाँ,
4: इके अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है,
3: बहुत मुश्किल है। खान कर दिन में, खासकर
4: दिन में कखन के मौसम बदल जाएला, कखनो गर्मी रही, कखनो बरसात हो।

0: जाए तो देखब कल साँझ भी रहे बहुत जोर से ठंडा भी लागत रहे।
1: सही
0: तो
1: कहा थे।
0: ऐसे बदलते मौसम में जे झारखंड का जे खेती का रहे वो भी बहुत प्रभावित हुए ला। तो चलो हमारे मन एक ठो इकरे में एक ठो विशेष चर्चा के सुनब।
1: जानकारी करेला कि बदलते मौसम कर झारखंड कर कृषि और वन में का प्रभाव हुए से के इके बताते हैं विशेषज्ञ डॉक्टर ताहिरा अर्जमंद और इनकर से बातचीत कर रहे कृष्ण जीवन पौराणिक।
0: लेकिन लेकिन इस जे खन हमरे मन सुनब उकर से पहले एक ठो हमरे को सूचना भी बताए चाहिए हमरे
1: जानकारी से पहले
0: जानकारी से पहले कि रामकृष्ण मिशन आश्रम दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र मोरहाबादी रांची द्वारा 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए कृषि एवं कृषि संबंधित निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। ग्रामीण युवाओं को स्वावलंबी बनाने हेतु आधुनिक उन्नत कृषि विज्ञान तकनीक द्वारा समेकित खेती, मधुमक्खी पालक, खाद प्रबंधन में उद्यमिता, लाभ उत्पादक, मशरूम उत्पादक, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, जैविक उत्पादक, मत्स्य पालन, माली, मुर्गियों का स्वस्थ प्रबंधन, गोपालक, बढ़ईगिरी, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डिंग, सुपरवाइजर, प्रशिक्षण सेवा उपलब्ध है। यह आवासीय प्रशिक्षण निःशुल्क है। किसी भी राज्य के अनुसूचित जनजाति यानी कि ST इसमें नामांकन ले सकते हैं। प्रत्येक माह के 1 तारीख से नामांकन प्रारंभ होता है। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए प्रशिक्षण एवं आवासीय सुविधा पूर्णतः निःशुल्क है। आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, जन्म एवं जाति प्रमाण पत्र तथा फोटो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रामकृष्ण मिशन आश्रम मोरहाबादी रांची। अपने कौशल को निखारे, आत्मनिर्भर बने।
2: किसान साथियों नमस्कार। झारखंड में बदलते मौसम का सीधा असर कृषि पर पड़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में मॉनसून की अनिश्चितता, तापमान में बदलाव और मौसम की घटनाओं ने किसानों के जीवन और उनकी फसलों को प्रभावित किया है। ऐसे में हमें यह समझना जरूरी है कि ये बदलाव किस प्रकार उनके उत्पादन, आजीविका और भविष्य की खेती पर असर डाल रहे हैं। आज हम कृषि विशेषज्ञ से बात करेंगे और जानेंगे कि बदलते मौसम के रुख का झारखंड के कृषि और वनों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। और इस बात पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ताहेरा अर्जुमंद, असिस्टेंट प्रोफेसर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची। डॉक्टर ताहेरा आपको नमस्कार है।
3: नमस्कार।
2: आजकल यह देखा जा रहा है कि झारखंड में मौसम बिल्कुल अप्रत्याशित हो गया है। कभी बारिश देर से आती है तो कभी अचानक बहुत तेज धूप होने लगती है, तो इसका हमारे खेतों और जंगल पर क्या असर पड़ रहा है?
3: बदलता हुआ मौसम अर्थात जलवायु परिवर्तन का झारखंड की खेती और वन संपदा पर स्पष्ट प्रभाव दिखाई दे रहा है।
2: जी।
3: पिछले कुछ वर्षों में तापमान में वृद्धि हुई है और वर्षा का स्वरूप भी बदल गया है। पहले वर्षा जून की शुरुआत में ही हो जाती थी, लेकिन अब इसके लिए जुलाई तक इंतजार करना पड़ता है। कभी वर्षा देर से होती है, कभी बहुत कम होती है और कभी एक ही समय में अत्यधिक वर्षा हो जाती है। अब फरवरी से ही तेज धूप और अधिक गर्मी महसूस होने लगती है, जिससे मिट्टी की नमी जल्दी खत्म हो जाती है। इसका सीधा प्रभाव कृषि पर पड़ता है। झारखंड में अधिकांश किसान वर्षा पर निर्भर रहते हैं, इसलिए अनियमित वर्षा के कारण धान जैसी प्रमुख फसलों की उपज कम हो सकती है और वनों पर भी इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अधिक गर्मी और सूखे की स्थिति के कारण जंगलों में आग लगने की संभावना बढ़ जाती है तथा कई पेड़ पौधे की वृद्धि भी प्रभावित होती है। यह भी देखा जा रहा है कि साल के पेड़ों और महुआ के फूल आने का चक्र बदल रहा है। इसके अलावा वन के जीवन जैसे हाथी भी अब जंगलों से निकलकर खेत की ओर आने लग गए हैं, क्योंकि जंगलों में उन्हें पानी और भोजन पहले की तुलना में कम मिल रहा है। इससे उनके आवास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
2: जी, तो क्या इसका असर हमारी मिट्टी पर भी पड़ रहा है क्या?
3: जी हाँ, बिल्कुल। झारखंड की मिट्टी मिट्टी पहले से ही कुछ हद तक अम्लीय है, यानी कि एसिडिक है। जब बहुत तेज वर्षा होती है तो ऊपर की उपजाऊ मिट्टी बह जाती है, मिट्टी का कटाव भी बढ़ जाता है, इससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम हो जाती है।
2: जी, हमारे किसान भाई इस बदलते मौसम में क्या करें, और क्या इस बदलते मौसम के आगे हम लाचार हैं, क्या इसका कोई पक्का इलाज है कि नहीं?
3: इसका हल है
2: जी,
3: उसे हम कहते हैं रीजेनरेटिव फार्मिंग, यानी पुनर्जीवित खेती। इसका सीधा सा मतलब है ऐसी खेती जो मिट्टी को बीमार नहीं बल्कि उसे फिर से सेहतमंद और उपजाऊ बनाए।
2: तो ये रीजेनरेटिव शब्द सुनने में तो बड़ा भारी लग रहा है, पर इसे हमारे आम किसान भाई अपने खेतों में कैसे अपनाएं? ये रीजेनरेटिव शब्द क्या है, इसको समझाएं आप।
3: देखिए, इसे करना बहुत ही सरल है। इसके मुख्य तरीके हैं, जैसे मिट्टी को ढककर रखें, जिसे हम इंग्लिश में मल्चिंग कहते हैं। जैसे हम खुद को धूप से बचाने के लिए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही मिट्टी को भी कवर चाहिए। फसल के अवशेष या मल्चिंग का इस्तेमाल करें ताकि सीधी धूप मिट्टी की नमी ना सुखा सके। फसल कटने के बाद जो पुआल, डंठल या सूखे पत्ते बच जाते हैं उन्हें जलाएं नहीं बल्कि खेत में ही बिछा रहने दें। ये मिट्टी के लिए कंबल का काम करते हैं जो उसे तेज धूप से बचाते हैं और नमी बनाए रखते हैं। दूसरी चीज जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हल कम चलाएं, यानी न्यूनतम जुताई। बार बार गहरा हल चलाने से मिट्टी के भीतर जमा जरूरी कार्बन हवा में उड़ जाता है। कम जुताई करने से मिट्टी की बनावट बनी रहती है और अंदर के केचुए व मित्र कीड़े जीवित रहते हैं जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। हमें साल भर जड़ों को जीवित रखना है
2: जी।
3: खेत को कभी भी खाली ना छोड़ें। साल भर कोई ना कोई फसल या घास लगी रहने दें। मिट्टी के अंदर मौजूद जीवित जड़ें जमीन को पकड़कर रखती हैं और उसे पोषण देती रहती हैं। इसके साथ हमें फसलों में विविधता भी जरूरी है, जिसको हम क्रॉप डाइवर्सिटी कहते हैं। खेत में केवल एक ही फसल ना लगाएं, अलग अलग तरह की फसलें जैसे दलहन, तिलहन और अनाज को मिला जुला कर लगाएं। इससे मिट्टी की ताकत बढ़ती है और कीड़ों का डर भी कम रहता है। और इसके साथ साथ पशुपालन को खेती से जोड़ना। खेती और पशुपालन अलग नहीं है। गाय बैल के गोबर और मूत्र का इस्तेमाल खाद के रूप में करें। जब पशु खेत में चरते हैं तो उनकी खाद से मिट्टी को प्राकृतिक पोषण मिलता है। और सबसे अहम बात यह है कि हमें जल संरक्षण करना है। झारखंड में बारिश तो बहुत होती है पर पानी रुकता नहीं है। अपने खेत के सबसे निचले हिस्से में 5% भाग में एक छोटा सा तालाब खोदें। यह तालाब बारिश के पानी को रोककर भूजल स्तर यानी कि ग्राउंड वाटर बढ़ाएगा और सूखे के समय में जीवन दान देगा। इन तरीकों से हमारी मिट्टी एक स्पंज की तरह बन जाती है जो बारिश के पानी को सोख लेती है। यह हवा से कार्बन सोख कर जमीन में जमा करती है और सूखे या भारी बारिश जैसे खराब मौसम में भी आपकी फसल को टूटने नहीं देती।
2: हमारे झारखंड में तो पथरीली जमीन और ढलान बहुत ज्यादा है, तो वहाँ ये खेती कैसे काम करेगी?
3: बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ढलान वाली जगहों के लिए एग्रोफॉरेस्ट्री यानी खेती के साथ पेड़ लगाना सबसे बढ़िया है। आप अपने खेत की मेड़ों पर फलदार या छायादार पेड़ लगाएं। इसका फायदा यह है कि पेड़ों की जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़कर रखती हैं, जिसे भारी बारिश में उपजाऊ मिट्टी बहती नहीं है। और यहाँ के किसान भाई मड़ुआ यानी रागी और अरहर को एक साथ लगा सकते हैं। मड़ुआ कम पानी में भी बढ़िया पैदावार देता है और अरहर की जड़ें मिट्टी में वापस नाइट्रोजन पहुंचाती हैं।
2: जी, लेकिन रीजेनरेटिव फार्मिंग से वनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
3: देखिए, रीजेनरेटिव फार्मिंग यानी पुनर्जीवित खेती का हमारे झारखंड में के जंगलों पर बहुत गहरा और सकारात्मक असर पड़ता है। इनसे जंगलों पर दबाव कम होता है। जब किसान अपने खेत की मेड़ों पर या खेत के भीतर एग्रोफॉरेस्ट्री अपनाते हैं तो उन्हें जलावन की लकड़ियाँ, पशुओं के लिए चारा और छोटी लकड़ियाँ अपने ही खेत में मिल जाती हैं। इससे किसानों को चारों या लकड़ी के लिए बार बार जंगलों में नहीं जाना पड़ता, जिससे हमारे साल और सकुआ के जंगल सुरक्षित रहते हैं और फलते फूलते हैं। इसके साथ साथ जंगली जानवर और इंसानों के बीच टकराव कम होने लगती है, जिसे हम ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। झारखंड में हाथियों का खेतों में आना एक बहुत बड़ी समस्या है।
2: जी जी।
3: ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जंगलों में उन्हें पर्याप्त भोजन और पानी नहीं मिल रहा है। जब हम रीजनरेटिव खेती के तहत खेत के किनारे बांस या ऐसे पेड़ लगाते हैं जो हाथियों को पसंद है, और खेत में छोटे तालाब बनाते हैं, तो जानवरों को भोजन और पानी का एक बफर जोन मिल जाता है। इससे हाथियों का बस्तियों में आना कम हो सकता है और साथ ही साथ भूजल स्तर में भी सुधार होने लग जाता है। जंगल और खेत एक ही जमीन का हिस्सा है। रीजनरेटिव खेती में जब हम मल्चिंग और डोभा के जरिए बारिश का पानी जमीन के अंदर भेजते हैं, तो इसे पूरे इलाके का वाटर टेबल ऊपर आता है। इसका फायदा पास के जंगलों को भी मिलता है। पानी की उपलब्धता बढ़ने से जंगल के सूखे के समय भी हरे भरे रहते हैं और उनमें आग लगने की घटनाएं कम हो जाती हैं। साथ साथ मिट्टी का कटाव भी रुकने लगता है। जैसा हमें मालूम है कि झारखंड के जंगलों के किनारे वाले खेत अक्सर ढलान पर होते हैं। अगर खेती का तरीका गलत हो तो बारिश में खेत की मिट्टी बहकर जंगलों के रास्तों को खराब कर या निचली जमीन को बंजर बना देती हैं। तो रीजनरेटिव खेती में मिट्टी को ढककर रखने से मिट्टी अपनी जगह जमी रहती है। इससे जंगलों की जड़ें और वहां का प्राकृतिक इकोसिस्टम भी मजबूत होता है, और इसी के साथ साथ हमारी जैविक विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी की भी वापसी होने लग जाती है। क्योंकि रीजनरेटिव फार्मिंग में हम रसायनों जैसे यूरिया और डीएपी का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं या लगभग बंद कर देते हैं। इससे खेत और जंगल के बीच का जो प्राकृतिक संतुलन है वह धीरे धीरे वापस आता है। लाभदायक मधुमक्खियां, तितलियां और पक्षी वापस आने लग जाते हैं, जो न केवल फसल के लिए अच्छे हैं बल्कि जंगल के पेड़ों के परागण यानी पॉलिनेशन में भी मदद करते हैं।
2: जी, तो इस बदलते मौसम के बारे में अंत में आप हमारे किसान भाई बहनों के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं?
3: जी, बस मैं इतना ही कहूंगी कि हम मौसम को तो नहीं बदल सकते
2: जी,
3: लेकिन अपनी खेती के तरीकों में बदलाव करके उसके प्रभावों का सामना अवश्य कर सकते हैं। क्योंकि बढ़ते समय के साथ बदलते मौसम का प्रभाव भी बढ़ेगा, और जैसा कि मैंने बताया, पुनर्जीवित खेती से हम फिर से हमारी मिट्टी को सेहतमंद और उपजाऊ बना सकते हैं। लेकिन ये एक या दो दिन में नहीं हो सकता, इसमें थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन इसके फायदे हम आने वाली पीढ़ी को भी पहुंचा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बिना यूरिया और डीएपी के खेती मुमकिन नहीं है, तो जरा सिक्किम की ओर देखिए। हमारे देश का यह एक छोटा सा राज्य आज पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। सिक्किम दुनिया का पहला 100% ऑर्गेनिक राज्य है, जिसे हम जैविक राज्य कहते हैं। वहाँ के किसानों ने जहरीले रसायनों और खादों के इस्तेमाल को पूरी तरह त्याग दिया है, और आज उनकी मिट्टी पहले से कहीं ज्यादा उपजाऊ है। उनकी फसलें महंगी बिकती हैं और वहाँ का पर्यावरण पूरी दुनिया में सबसे शुद्ध माना जाता है। तो अगर सिक्किम के किसान यह चमत्कार कर सकते हैं, तो हमारा झारखंड, जो प्राकृतिक रूप से इतना अमीर है, पीछे क्यों रहे? हमारे पास तो जल, जंगल, जमीन की वो ताकत है जो दुनिया में कहीं नहीं है। रीजनरेटिव फार्मिंग या पुनर्जीवित खेती सिर्फ एक वैज्ञानिक तरीका नहीं है, यह हमारे पूर्वजों की वही पुरानी सीख है जिसे हम शायद रसायनों के चक्कर में भूल गए हैं। तो इसके साथ हमें उन्नत और उपयुक्त बीजों का चयन करना चाहिए, पानी का संरक्षण करना चाहिए और खेती के साथ साथ पशुपालन तथा बागवानी पर भी ध्यान देना चाहिए।
2: जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ताहिरा जी। आपसे इस बातचीत से हमें यह समझ में आया कि बदलते मौसम का असर सिर्फ फसलों तक ही नहीं बल्कि किसानों की पूरी जीवन शैली और भविष्य की योजनाओं पर भी पड़ता है। तो हम आशा करते हैं कि इस बातचीत से हमारे किसान साथियों को नई प्रेरणा और जागरूकता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
3: नमस्कार।
1: तो एखन हमरे जानकारी करत रही कि बदलते मौसम कर झारखंड कर कृषि और वन में का प्रभाव है सके, और एक बारे में जानकारी देवत रहे हैं डॉक्टर ताहिरा अर्जमंद, और इनकर से बातचीत कर रहे हैं कृषि जीवन पौराणिक। तो चलो भाई, आगे का विचार है हमरे कर यानी कि खेती बाड़ी कर बेरा तो यह जगह सिरात है भाई।
0: आप कहूँ मत, फिर से हमरे मन आवत है हमारी दुनिया कार्यक्रम लेके, और हमारी दुनिया कार्यक्रम में सब सुनो ये मन के फिर से स्वागत है।
1: एकदम स्वागत
0: है, जोहार है, और रोर के भी फिर से जोहार है।
1: एकदम जोहार है, और सब कार्यक्रम सुनो या भाई बहन मनकर भी स्वागत है भाई। नहीं
0: हाँ, आज देखो आज बहुत आज खास
1: दिन
0: लागे एकदम दिन है पूरा माया मन ले समर्पित है के दिन
1: मातृत्व
0: दिवस। और देखो का है कि जितना भी हमरे कर संसार में जितना भी अगर माया मन जे कष्ट झेले ना और अपन कष्ट झेल के अपन छुआ पुता के सही लाइन में सही दिशा में पहुंचाए ना तो और वैसे माया मन के फिर से उमन के सलाम
1: नमन है,
0: नमन है कि उमन कितना कष्ट झेल के हमरे के कोई मुकाम तक पहुंचाए ना।
1: एकदम सही बात है, पोसत है, पालत है, अपन कष्ट के साम दरकिनार करके छुआ मन के आगे बढ़ाते ने। तो मातृ दिवस कर शुरुआत कैसे रहने के जाने का दरकार है नहीं कि 10 मई 1908 के अमेरिकी कार्यकर्ता अन्ना जार्विस मातृ दिवस कर पहला आयोजन कर रहे हैं ने।
0: सही सही बहुत बड़ा जानकारी रूरे दिल्ली
1: तब ये जार्विस कर ये अवकाश मनाए कर प्रेरणा अपन माए एन जार्विस से मिल रहे जे मित्रता और स्वास्थ्य के बढ़ावा देवे के लिए महिला समूह कर आयोजन कर रहे है कि नहीं।
0: सही है। और देखो ये दिवस जो हमारे का मातृ दिवस है आज गोटा देश भर में पूरा धूमधाम से मनाल जाते है, खास करके जे स्कूल मन में है, कॉलेज मन में, ये मन में कुछ विशेष कार्यक्रम हुआ थे और जे एनजीओ संस्था मन है वो मन में भी जे भी मतलब कहो कि सफल जे माय मन है मन के बुला के सम्मानित करल जाते है।
1: यानी कि आज के दिन माय मन के समर्पित
0: है
1: पूर्ण रूपेण है कि नहीं। देखो भाई ये तो मातृ दिवस कर बात रोरे कर है, लेकिन हमरे के जरूरी है ये पर्यावरण संरक्षण करे कर भी देखो ने उके भी तो एक गाछ वृक्ष मन लगा थे चारो बटे उकर भी रखवाली हमरे करा थे एक माय जैसन प्यार देवा थी है कि नहीं। तो का संरक्षण भी जरूरी है जैसे कि पर्यावरण संरक्षण कर मतलब है प्राकृतिक संसाधन जैसे कि वायु, जल, भूमि, वनस्पति और जीव मनक रक्षा करे है कि नहीं, देखभाल करेक, प्रदूषण के रोकेक और पारिस्थितिक संतुलन के बनाए के राखेक। ऐसे भी पर्यावरण का रक्षा करेक हमरे मनक नैतिक कर्तव्य लागे। जब हमरे मन पर्यावरण का रक्षा करी ला तो हमरे स्वस्थ हवा, स्वच्छ पानी और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करी ला भाई नहीं तब
0: एकदम। और हमरे का जे भाई बहन मन सुनत है उमन के बता चाहिए कि पर्यावरण का महत्व का लखे है। तो देखो पर्यावरण जे हमरे के शुद्ध हवा, जल, स्वच्छ जल, भोजन और समुचित मतलब कहब कि योग्य वातावरण हमरे के प्रदान करेला। तो हमरे के कर्तव्य होला कि हमरे कर जे पर्यावरण है सके सुरक्षित रखो
1: एकदम।
0: और जे पेड़ पौधा हमरे के सबसे बढ़िया चीज है कि ऑक्सीजन हमरे के देवेला
1: सेल तो जरूरी है भाई हमरे के कि पेड़ पौधा लगाव और बन कर जे कटाई मन होते नहीं सके हमरे के रोके कर दरकार
0: रोके का दरकार। और देखो का है कि एखन आज हमरे मन देखब चाहे कुछ दिन पहले हमरे का झारखंड कर जे एक ठो महिला रहे टूटी शायद टूटू या टूटी नाम रहे वो उके कहल जाला कि पर्यावरण वास्ते बहुत बढ़िया अद्भुत योगदान देलक और उके राष्ट्रपति द्वारा उके
1: पुरस्कृत
0: करल जाए है और पद्मश्री उके मिलल गेलक। तो देखो एखनो समाज में कोई कोई मन है जे कि पर्यावरण वास्ते अपन पूरा जिंदगी के समर्पित कर देवत है और हमरे के भी करक चाहिए अगर हमरे पेड़ पौधा मन के अगर हमरे काटे से बचाते आवे वाला समय में हमरे के लिए बहुत लाभप्रद हुई। लेकिन देखब कि आज के दिन में आदमी पेड़ पौधा तो कट जाते हैं लेकिन गज वृक्ष एकदम में नहीं लगाते
1: हैं। कटत है नहीं हुआ एक ठो गच जहाँ कटत है तो हुआ हमरे के 10 ठो गच मन लगाए है कि नहीं, फूल पौधा मन लगाए है तबे हमरे अपन पर्यावरण के सुरक्षित रख सकेला तबे हमरे मन के बढ़िया हवा पानी मन भेटाए भाई।
0: तो पर्यावरण के जे संरक्षित मतलब पर्यावरण के शुद्ध रखे के वास्ते कुछ उपाय मन भी है जे कि हमरे के सब कोई के अपना के चाहिए। सबसे पहला पति वृक्षारोपण कम से कम साल में 3 से 4 बार करे के चाहिए
1: एकदम। और सेहत और प्रदूषण नियंत्रण भी है कि नहीं, जल संरक्षण है और प्लास्टिक मुक्त अभियान भी है। तो
0: सबसे बड़ी चीज है कि जागरूक फैला के हमरे का समाज में जागरूकता कर बहुत कमी है। आदमी पर्यावरण का जे संरक्षण है उकर बारे में कटिको कुछ नहीं समझे ना, जैसे गच वृक्ष कटा थे तो कटते देवे ना, प्लास्टिक मन के जहाँ तहाँ फेंक देवे ना, जेकर से पर्यावरण प्रदूषित होते जाते
1: हमरे के नखे करे बजाय कर नखे
0: है। और आदमी मन के जागरूक फैलाए के और अपन जे भी पास पड़ोस है चाहे जे भी कमियां मन है उमन के उकर विशेषता के बताए बहुत जरूरी है।
1: तो भाई हमरे कर गोइठ तो ढेर दिन बाद भेटाले नहीं सिरायला नहीं चलते रहे मतलब चलती का नाम गाड़ी जे कह जाए ना वह वाला बात हो जाए लेकिन गोइठ तो चलबे करी लेकिन हमरे के कार्यक्रम के भी आगे बढ़ाए है तो और करीला एगो नागपुरी लोकगीत से जिके गाए हैं जनक से महतो और संगीमन कुरमाली लोकगीत है के गणेश वंदना चलो सुन लेवे

0: प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RBLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: 3 महीने में पैसे डबल,
3: वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी,
2: क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ
4: और कल होगा भी नहीं।
2: तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है?
5: ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं।
2: और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो, अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे
4: और फास्ट रिटर्न से बच के
2: और फास्ट बॉलिंग से भी।
6: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: तो युवराज भाई, अब जानकारी करे कर बेरा है नहीं, चलो हमरे एगो खोरठा वार्ता है हमरे सुनी ला। हमरे कर युवा राष्ट्र निर्माता काते रह सके और इके बतात हैं ज्ञान रंजन कुमार।
8: युवा कौन है? ये एगो विचार करे जुकुर सवाल है कि आखिर हम इन युवा ककरा कह। भारतीय संस्कृति के नजरे एकरा देखल जाए तो कहल जाए पारे कि संघर्ष के सगरठे चल के जे कामयाबी हासिल करे पारे ओकरा जुआ कहल जाए। लाख लाख बछर कोयला पोड़े है तो हीरा बने हैं, सोना तैप के कुंदन बने हैं, प्रकृति के अड़चन सही सके वाला गोटा गाछ बने पारे है। उल्टी धार के छाती फायर के जे समुंदर के पार करे पारे है, ये सब उदाहरण जुआ सोच, जुआ शक्ति, जुआ व्यक्तित्व के उदाहरण लगे। रुकावट के अपन सौभाग्य मान के जे अपनाए ले है वह जुआ लगे। हमने के देशे जुआ उम्र से नाय बल्कि करनी के नजरे भी आकल जाए। जुआ अवस्था एकदम अलबत है, जकर जिंदगी रुक गेल है, जकर भीतर लौतन चीज सीखे के, लौतन सोचे के सब डहर मुंदाई गेल है, जकर भीतर क्रांति के गोटा पोच गेल है, जकर भीतर देश के बचावे के, संस्कृति के बचावे के, समाज के आगू टाने के सोच नखे, जकर रग में उमंग के, उत्साह के, खुशी के उबाल न आवे है, जकर मन गरीब दुखिया के देख के मोह माया सेवा भावना जैसन समुद्र में हिलोर न उठे है, आर उम्र से जुआ है, एकर से देश के समाज के कोनो फर्क ना पड़े है। ऊ तो आपन जुवानी भूल चुकल है यदि व्यक्ति उम्रे बुजुर्ग है और ओकर भीतर नवा विचार हौसला खतरा से खेले के हिम्मत है, नित दिन नवा चीज सीखे के इच्छा रखे है, यदि मन से राष्ट्र गढ़े देश धर्म और संस्कृति के ऊपर उठावे के सेवा करे के इच्छा रखे है वो जुआ है। भारत एगो प्रजातांत्रिक देश लागे, एकर संगे संग गोटा धरतीक लोग भारत के जुआ देश के रूपे जाना हत। आज भारते आरो देश एक अपेक्षा सबसे बेसी जुआ पावल जात। जुआ वर्ग ऊ वर्ग लागे जकर में 14 साल से लेके 40 साल उम्र तक के व्यक्ति के जुआ के संज्ञा देल गेल है, जकर संख्या मोटा मोटी 65 करोड़ आकल गेल है। इतिहास के पन्हा उलट के देखल जाए तो भारत के आज़ादी के लड़ाई से लेके आज़ाद भारत के निर्वाचन आयोग के मतदाता जागरूकता तक भ्रष्टाचार के ऊपर हुलमाइल या फिर गंगा सफाई अभियान से लेके पर्यावरण के रक्षा करे तक गातेक बेटी छुआक हत्या है या बेटी छुआक हिंसा के विरुद्ध अपन बोली उठावे में या इस सब के विरुद्ध संघर्ष करे में युवा लोग सबसे बेसी सहयोग है।

0: आज़ादी के लड़ाई में विलीमान होवे वाला में तिलका मांझी, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, मंगल पांडे, शहीद भगत सिंह आरो कते कते क्रांतिकारी रहत, उ सब के सब जुआ ही रहत। ये क्रांतिकारी जुआ गुला देशक रेखा खातिर हंसते हंसते अपन जान के विलीमान कर दिला। जुआ अवस्था में लोग एक मांझे दुए गो डहर पावल जाए, एगो तो उ जेकर से चैक जाहे उन्नति के पहाड़ ऊपर, आर एगो उ जकर में गिर जाहे विनाशे खोह में। जुआ चाहे तो त्यागी बने पारे आर नहीं तो विलासियो बने पारे। जुआ त्यागी बन देश समाज आर संस्कृति के उत्थान में सहभागी बने पारे, आर नहीं तो विलासी बन के देश समाज आर संस्कृति के गढ़ा खो बटे ले जाए पारे। राष्ट्र जतना जबर शब्द लागे ओकर से भी बड़का जबर सवाल ई है कि आखिर राष्ट्र कौन गढ़े है? नेता, सरकारी चपरासी, साधारण लोग, किसान, मजदूर, आखिर कौन? शायद यह सब मिल मिस के राष्ट्र गढ़ा हत, मुदा ई सब में सबसे बेसी भागीदारी ककर रहे है। तब हम कही सक है कि ई सब में आर कोई नहीं, सिर्फ आर सिर्फ जुआ। जुआ लोग के ही राष्ट्र गढ़े में सबले बेसी भागीदारी पावल जाहे। लोकतंत्र के गढ़वैया आर भाग लिखवैया जुआ वर्ग के ही मानल जाहे। सही खातिर जहां एक बटे हमनिक देश लागिन गर्व करे बात है कि हमनिक देशक समूचा जनसंख्या कर मोटा मोटी 60% से बेसी हिस्सा जुआ सब के पावल जाए। जुआ वर्ग सामाजिक, शारीरिक, मानसिक सोभे रूपे ढेर फुर्तीला हवा हत। सही खातिर राष्ट्र गढ़े में जुआ अपन मुख्य भूमिका निभावत। जे राष्ट्र में जुआ लोग एक संख्या जतना अधिका हवत उ राष्ट्र उतने धनी आर मजबूत हवे है। आज दुनियाएं जतना महत्वपूर्ण बदलाव भेल है उ बदलाव में जुआ सब के लगन आर बलिदान के बड़ी महत्वपूर्ण योगदान रहल है। शायद एहे खातिर कहल गेल है कि जोन दिशाएं जवानी चल है उ दिशाएं जीवन चल है। हमनी के जुआ शक्ति देशक तकदीर आर तस्वीर बदले के हुब रखत। सही खातिर कहल जाए पारे कि जुआ अवस्था मानुष जीवन कर बसंत काल लागे, जकरा पाई के लोग मैत जाहत, भगवानक देल सब शक्ति सैकड़ों सोता रकम फूट पड़े। एहे शक्ति के अपन भीतर जोग के देश के उन्नति के सगरठे ले जाए खातिर मतल हाथी जैसन चल पड़त। हमनिक देश के जुआ शक्ति के नजरे देखल जाए तो जुआ लोग एक धनी देश है। जरूरत है देशक ई जुआ शक्ति के निठा सगरठ देखाए के, देशक तरक्की में भागीदार बनावे के, उ सब में बेस संस्कार, उच्च शिक्षा और प्रौद्योगिक विशेषज्ञ बनावे के। ओखनी के गलत आदत जैसे निशा करे, जुहा, हिंसा आरो बुरा आदत से बचावे के। किले की चरित्र निर्माण देशक आर सामाजिक उन्नति खातिर बड़ी जरूरत है। बेड़ल चरित्र जुआ ना तो अपन भला करे पारे, ना सामाजिक आर ना ही देशक भला करे पारे। आज देश निर्माण खातिर, देश के ऊपर उठाए खातिर, देश के दुनियाए विकसित राष्ट्र पताए डरावे खातिर जुआ वर्ग के ही मेघावी, कर्मजोगी, देशभक्त आर सामाजिक सेवा विचार से लथपथ हवे पड़त, तबे हमें राष्ट्र निर्माण में भागीदार हवे पारब।
1: तो एखन हमरे सुनत रही हमारे युवा राष्ट्र निर्माता, और सही भी बात है कि देखो हमरे का जो युवा है हमरे का देश का भविष्य के और देश का रीढ़ कहल जाला। हमरे का युवा ही देश के भविष्य के गढ़े ना, तो से ले युवा

0: युवा मन का जो भूमिका है राष्ट्र के प्रति बहुत बगरा है और हुए भी चाहिए।
1: बिल्कुल, तो हमरे तो बहुत दिन कर बाद भेट आये युवराज और लागे ला कि हमरे बतियाते रहतली यह जगह है नी, और कार्यक्रम कर माध्यम से हमरे बहुत कुछ जानकारी भी कर लेवे ला और हमरे कर भाई बहन मन के करवाई ला, लेकिन बेरा तो का कहब एक सीमित रहेला बंधल रहेला और उतने देरी में हमरे के रहे है और अब हमरे का तो कार्यक्रम कर बेरा यह जगह सिरात है। लेकिन जाए से पहले बताए चाहे आपके ये कार्यक्रम कर प्रस्तुति रहे संजीव कुमार लालकर, तो चलो तब अगला दिन यह जगह फिर से भेटा बेहे बेरा में नहीं तब
0: लगे सके सबके जोहार,
1: जोहार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी दुनिया। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
2: बेटा
3: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे।
2: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
4: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
2: चलो
1: कहाँ
2: एडमिशन कराने,
4: खाता हुआ एक्टिव।
5: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: Hey girls,
8: hi, congratulations.
7: आज तो पार्टी चाहिए,
8: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
5: आइडिया, यही करते हैं पार्टी,
7: पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
5: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन ओटीपी सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
7: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग।
5: आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। पहले मुख्य समाचार। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने गोड्डा में कई सड़कों का किया शिलान्यास, ढांचागत संरचना और मूलभूत सुविधाओं के विस्तार। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। धनबाद में पुलिस अपराधी गठजोड़ और विदेशी कनेक्शन की जांच एनआईए से कराने की मांग। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके में कल से राज्य स्तरीय दो दिवसीय खरीफ कार्यशाला का आयोजन। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी होंगी शामिल। राज्य संग्रहालय में इंडिया इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल में देश भर के कलाकारों ने किया अपने हुनर का प्रदर्शन। कलाकारों को बेहतर मंच देने का प्रयास। और झारखंड स्टेट सब जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप में रांची की टीम ने पूर्वी सिंहभूम को हराकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना को 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने आधुनिक ढांचागत संरचना के विकास पर जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर अग्रसर है और राज्यों के विकास पर बल दिया जा रहा है।
2: आज भारत रिफॉर्म्स एक्सप्रेस पर चल रहा है, साथ ही आज का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है। जहीराबाद इंडस्ट्रियल एरिया के निर्माण के पीछे भी यही लक्ष्य है। ये इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने के भारत सरकार के राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है।
1: ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आज गोड्डा के मेहरमा प्रखंड अंतर्गत धोरीचक से कुमारडीहा तक पथ सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम का शिलान्यास किया। इसके अलावा उन्होंने बास्किता पथ और बेनिदास भुस्का तक बनने वाली सड़क की भी आधारशिला रखी। मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। ग्रामीण विकास मंत्री ने इस दौरान जन समस्याएं भी सुनी और समाधान का भरोसा दिलाया। श्रीमती सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ढांचागत संरचना और मूलभूत सुविधाओं के विस्तार पर जोर दे रही है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने धनबाद में पुलिस अपराधी गठजोड़, संगठित वसूली नेटवर्क, अंतर्राष्ट्रीय अपराध संचालन तंत्र और संभावित विदेशी कनेक्शन की जांच एनआईए से कराने की मांग की है। श्री मरांडी ने इसे लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि हाल ही में धनबाद में एक कुख्यात अपराधी द्वारा विदेश से सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग दिनों में जारी वीडियो ने पूरे राज्य की प्रशासनिक विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। श्री मरांडी ने इस मामले को लेकर धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार को तत्काल प्रभाव के साथ पद से हटाने की मांग भी की है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना गिरिडीह जिले के गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। जिले के तोलडी के रहने वाले आमिर हसन को भी इस योजना का लाभ मिला है। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार के प्रति आभार जताया है।
3: एक महीने से मेरा पेट में दर्द था, वो पेंडिस हुआ था, जो पैसे के ना कारण से हमने अपना इलाज नहीं कराया, लेकिन आयुष्मान भारत के द्वारा सरकार ने ये जो दिया तो इसी के लिए हमने अपना ऑपरेशन करवाया और इसलिए हम भारत सरकार को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।
1: राजधानी रांची के काके स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में कल से दो दिवसीय राज्य स्तरीय खरीफ कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की शिरकत करेंगी। कार्यक्रम के पहले दिन जिलावार आकस्मिक योजनाओं पर प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। वहीं दूसरे दिन 12 मई को खरीफ पर कार्यशाला आयोजित की जाएगी। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूल में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का ये शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद, कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। हजारीबाग जिले में आज हुई दो दो अलग अलग दुर्घटनाओं में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पहली घटना गोरहट थाना क्षेत्र में हुई, जिसमें सब्जी लदे एक अनियंत्रित वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें वाहन चालक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना गोरहर गांव के समीप हुई, जिसमें 4 वाहनों की एक दूसरे से टक्कर हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार xhandle@yayanewsandalerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के xhandle@yayanewsandalerts और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल यायर न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भाजपा की वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्वा सरमा ने आज असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की और राज्य में भाजपा की अगुवाई वाली सरकार बनाने का औपचारिक दावा पेश किया। इससे पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा ने हिमंता बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए का नेता घोषित किया।
4: शपथ ग्रहण समारोह के माध्यम से आगे चलकर अगले 5 वर्षों के लिए असम की जनता को भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार समर्पित भाव से मोदी जी के नेतृत्व में कार्य करेगी और हिमंत बिस्वा सरमा जी उसको धरती पर असम की जनता के लिए पूरी ताकत से लगाएंगे।
1: श्री शर्मा 12 मई को असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन मौजूद रहेंगे। गढ़वा में पुलिस को अपराधियों के खिलाफ सफलता हाथ लगी है। गढ़वा थाना क्षेत्र से पुलिस ने 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 4 देशी कट्टा, कारतूस, मोबाइल और 2 पहिया वाहन बरामद किए गए हैं। ये अपराधी किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। इसी क्रम में अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। खूंटी पुलिस ने जिले के रनिया थाना क्षेत्र में आज छापेमारी कर लगभग 8 लाख रुपये मूल्य का डोरा जब्त किया है। तोरपा SDPO क्रिस्टोफर केरकेट्टा ने बताया कि गुप्त सूचना पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने एक मालवाहक वाहन को जब्त किया है और फरार तस्करों की तलाश जारी है।
5: ये रानिया और कमडरा बॉर्डर में करीब 3-4 बजे एक ट्रक निकल रही थी, तो थाना प्रभारी और अन्य की सूचना से एक ट्रक पकड़ाया है। उसमें डोडा और कुछ भूसी है जो गाय के लिए दिया जाता है, उसे ले जा रहा था। अभी एग्जैक्ट तो नहीं जान रहे हैं, करीब 50 तो हो गए।
1: रांची स्थित राज्य संग्रहालय सभागार में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल में देश भर आए कलाकारों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की आयोजक मोनिका डी ने बताया कि इस डांस फेस्टिवल में देश के 18 प्रदेशों के 300 से अधिक कलाकारों ने हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि ये नृत्य कार्यशाला कलाकारों को एक बेहतर मंच देने की कोशिश है।
6: मैं IADF का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं कलाकारों को मंच प्रदान कर सकूं। कलाकारों के लिए मंच की बहुत आवश्यकता होती है। ऑल ओवर द इंडिया यहाँ कलाकार है, अनफॉर्चुनेटली बाहर से भी कलाकार थे। यहाँ चेन्नई, बेंगलुरु, जलपाईगुड़ी, कोलकाता, जमशेदपुर, रांची, झारखंड, सभी जगह से हमारे यहाँ कलाकार है।
1: झारखंड स्टेट सब जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप में रांची की टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पूर्वी सिंहभूम में आयोजित इस चैंपियनशिप में रांची की टीम ने मेजबान टीम को 4-5 अंकों से पराजित कर कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। भारतीय महिला की रिकर्व टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। चीन के शंघाई में आयोजित दूसरे चरण में आज झारखंड की दीपिका कुमारी और अंकिता भगत तथा कुमकुम मोहद की तिकड़ी ने मेजबान और खिताब के प्रबल दावेदार चीन को शूट ऑफ में हराया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज दोपहर बाद गरज के साथ हुई बारिश और ओलावृष्टि से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य में 16 मई तक बारिश का पूर्वानुमान है। इस अवधि में राज्य के कई इलाकों में तेज हवाएं चलने की और वज्रपात की भी आशंका है। हालांकि आने वाले दिनों में तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने गोड्डा में कई सड़कों का किया शिलान्यास, ढांचागत संरचना और मूलभूत सुविधाओं के विस्तार। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, धनबाद में पुलिस अपराधी गठजोड़ और विदेशी कनेक्शन की जांच एनआईए से कराने की मांग। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय काके में कल से राज्य स्तरीय 2 दिवसीय खरीफ कार्यशाला का आयोजन। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी होंगी शामिल। राज्य संग्रहालय में इंडिया इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल में देश भर के कलाकारों ने किया अपने हुनर का प्रदर्शन। कलाकारों को बेहतर मंच देने का प्रयास। और झारखंड स्टेट सब जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप में रांची की टीम ने पूर्वी सिंहभूम को हराकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
7: दीदी नौकरी लग गई।
8: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
7: हाँ जी, नया मोबाइल।
8: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
7: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
8: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
7: पर दी,
8: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
7: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
8: अच्छा।
9: RBI कहता है,
10: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
11: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
12: ओह लवली, वेल डन।
13: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
14: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
15: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
16: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ,
17: समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
18: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
19: आप कौन?
9: RBI कहता है,
20: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
1: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे गिरिडीह जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे गिरिडीह संवाददाता।
1: भारत सरकार द्वारा गरीबों को प्रधानमंत्री आवास के तहत पक्का मकान दिए जाने का असर धरातल पर दिखने लगा है। गिरिडीह के गरीब प्रधानमंत्री आवास पाकर बेहद खुश हैं और भारत सरकार के प्रति आभार प्रकट कर रहे हैं।
2: मेरा नाम रमेश कुमार दास, वार्ड नंबर 3 अंदूडी जरडी का निवासी हूँ। मैं पहले मिट्टी का मकान था, लेकिन जब मोदी जी का आवास मुझे मिला तो मैं इस आवास को बना पाया हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ कि इस मकान में बहुत अच्छा से मैं रहता हूँ। इसके लिए मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और तहे दिल से प्रणाम करता हूँ।
1: डीसी राम निवास यादव ने जिला वासियों से स्व जनगणना में भाग लेने की अपील की है।
3: आम नागरिकों के लिए स्व गणना की सुविधा एक विशेष पोर्टल के माध्यम से दिनांक 1 मई से 15 मई 2026 तक उपलब्ध कराई जाएगी। इस हेतु एक पोर्टल se.census.gov.in बनाया गया है, जो 1 मई से चालू होगा। आमजनों से आग्रह है कि वे सेल्फ इनोग्रेशन के प्रति जागरूक रहें, अपने परिवार एवं आसपास के लोगों को भी इसकी जानकारी दें तथा इस महत्वपूर्ण अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान दें।
1: गिरिडीह शहरी क्षेत्र को साफ सुथरा रखने के लिए नगर निगम जन जागरण अभियान चलाएगा। उप नगर आयुक्त प्रशांत लायक ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर सख्ती से रोक लगाने का निर्णय लिया है।
4: अवेयरनेस के लिए जो कदम उठाना है हम लोग को, जैसे हमारा कांक्षा कंपनी है, हमारा निगम के कर्मी है, सभी को निर्देश देने का है कि हम लोग उसको निर्देश दें ताकि, और पॉलीथीन का सबसे बड़ी समस्या है यहाँ गिरिडीह में पॉलीथीन का, उसको लेके भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो दुकानदार हैं उस पर हम लोग पहले अपील करेंगे कि वो ना इसका उपयोग ना करें, और उसके बाद भी यदि कोई तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
1: भारत सरकार किसानों के उत्पाद बेचने के लिए उन्हें उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहा है। नाबार्ड ने जमुआ प्रखंड में हाट शेड का निर्माण किया है, जिससे स्थानीय लोग और किसान काफी खुश हैं।
5: हमारा नाम छत्तरधारी मातो सेवानिवृत्त शिक्षक, जो बरसात में हम लोग सब भींग जाते थे, साग सब्जी हम लोग का भींग का बर्बाद हो जाता था। किसी तरह से दौड़ के मंदिर जाते थे, वहाँ भी मंदिर घुसने में थोड़ा दिक्कत होता था, सूट प्याज लेके जाना मुश्किल होता था। अभी सरकार के द्वारा जो बन गया, हम लोग बहुत खुश हैं और हम लोग को रहने का बैठने का सारी व्यवस्था यहाँ कर दी गई है।
1: पिछले 15 दिनों से मौसम के रुख में आए बदलाव से मई महीने में ठंड का लोगों को एहसास हो रहा है। प्रत्येक दिन हो रहे बारिश से तापमान लुढ़क गया है और ठंडी हवा चलने से लोगों को गर्मी से मुक्ति मिल गई है। इधर बारिश और आंधी से गिरिडीह में जान माल का भी नुकसान हुआ है। इस बार आम फसल को भी भारी नुकसान हुआ है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह।
0: अभी आप सुन रहे थे गिरिडीह जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुने हिंदी साहित्यिक पत्रिका शतदल।

0: शतदल के आज के इस आयोजन में झारखंड की दो साहित्यकार कविता विकास और ममता शर्मा को हम सुनेंगे। कविता विकास जहां अपनी कविताओं के माध्यम से जीवन के सरल सहज संदर्भों के सार गर्भित पहलुओं से हमें अवगत कराएंगी, वहीं ममता शर्मा कहानी के माध्यम से घर परिवार और गृहस्थी के विविध पक्षों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट कराएंगी। साथियों, साहित्यकार अपनी लेखनी के लिए किसी बड़ी घटनाओं और विषयों को नहीं तलाशता, बल्कि अपने आसपास की घटनाओं और विषयों में ही नए संदर्भ और अर्थ की तलाश कर लेता है। वह जीवन को बहुत संवेदनशीलता के साथ जीता है, इसलिए जब वह ठहर जाता है तब भी बहुत सारी चीजें उसके पास चलकर आती हैं, फिर नया अर्थ और संदर्भ पाकर अव्यक्त हो जाती हैं। कवयित्री कविता विकास की लेखनी की धार ऐसे ही किनारों के बीच से होकर गुजरती है। वे कहती भी हैं, मन यादों में रीता थोड़ी होता है, पर यादों में जीना थोड़ी होता है। जिसको वाजिब मिलता है परिणाम नहीं, जीवन में वह हारा थोड़ी होता है। अपनी रचना के माध्यम से वे दुखती रग पर मरहम लगाने के साथ कुछ नया करने की प्रेरणा भी देती हैं। इसलिए कहती हैं, जैसा लेना हो वैसा दिया कीजिए, चाहते हैं वफा तो वफा कीजिए, जो हुआ सो हुआ मत गिला कीजिए, सीख लेकर उसी से नया कीजिए। तो आइए सुनते हैं कविता विकास की आवाज में ही उनकी कुछ रचनाएं।
1: नमस्कार, माहिया छंद में एक कविता पाठ कर रही हूं।

मेरी दूसरी कविता आज के परिवेश पे है। मसलों का भला कब युद्ध समाधान रहा, मसलों का भला कब युद्ध समाधान रहा, सिर फिरों का ही हमेशा ये तो अभिमान रहा, सिर फिरों का ही हमेशा ये तो अभिमान रहा। दंभ है या कि सियासत की कोई लाचारी, दंभ है या कि सियासत की कोई लाचारी, जिसमें जनता की भलाई का नहीं ध्यान रहा, जिसमें जनता की भलाई का नहीं ध्यान रहा। तेल बिजली ही नहीं, तेल बिजली ही नहीं, जल की भी कीमत बढ़ी है, आम जन का ही सदा युद्ध में नुकसान रहा, आम जन का ही सदा युद्ध में नुकसान रहा। मारने मरने पे उतरी हुई हैं सेनाएं, मारने मरने पे उतरी हुई हैं सेनाएं, हर विफल हो रही कोशिश की किसे ज्ञान रहा। आज भी गर कहीं जीवित रही मानवता है, आज भी गर कहीं जीवित रही मानवता है, पक्ष में उसके हमारा सदा अवदान रहा। शांति के दूत हैं हम, शांति के दूत हैं हम, और हमारा भारत नीति पे अपनी अमल करना ही सम्मान रहा, नीति पे अपनी अमल करना ही सम्मान रहा। युद्ध उद्देश्य नहीं हो किसी के जीवन में, युद्ध उद्देश्य नहीं हो किसी के जीवन में, जिसने यह ख्याल रखा उसका ही तो मान रहा, जिसने यह ख्याल रखा उसका ही तो मान रहा। मेरी अगली कविता बेटियों पर है। छूने निकल पड़ी है लो आसमान बिटिया, छूने निकल पड़ी है लो आसमान बिटिया, पग पग पे दे रही है सो इम्तिहान बिटिया, ऊंचा उठो मगर हो धरती पे ध्यान बिटिया, ऊंचा उठो मगर हो धरती पे ध्यान बिटिया, रहना गिराने वालों से सावधान बिटिया, रहना गिराने वालों से सावधान बिटिया। बैठी है पहली सफ में, बैठी है पहली सफ में, सबको पछाड़ कर वो, बैठी है पहली सफ में सबको पछाड़ कर वो, बढ़ने दो उसको लोगो अपनी है शान बिटिया, बढ़ने दो उसको लोगो अपनी है शान बिटिया। रहना है पास किनके रहना है दूर किनसे, रहना है पास किनके रहना है दूर किनसे, अच्छे बुरे का रखती है आज ज्ञान बिटिया, अच्छे बुरे का रखती है आज ज्ञान बिटिया। तुमको नहीं है सहना चुप रह के जुल्म सारे, तुमको नहीं है सहना चुप रह के जुल्म सारे, इंसाफ के लिए तुम खोलो जुबान बिटिया, इंसाफ के लिए तुम खोलो जुबान बिटिया। चर्चे हो तो तुम्हारी ही जीत के यहाँ पर, चर्चे हो तो तुम्हारी ही जीत के यहाँ पर, तुम मुट्ठियों में कर लो सारा जहान बिटिया, तुम मुट्ठियों में कर लो सारा जहान बिटिया। देखो सितम न ढाओ दुर्बल समझ के इस पर, देखो सितम न ढाओ दुर्बल समझ के इस पर, सबको संभालती है घर की है जान बिटिया, सबको संभालती है घर की है जान बिटिया। अगली गजल तरन्नुम में मन

और ये मेरी अंतिम गजल तहत में, जैसा लेना हो वैसा दिया कीजिए, जैसा लेना हो वैसा दिया कीजिए, चाहते हैं वफा तो वफा कीजिए, चाहते हैं वफा तो वफा कीजिए, जैसा लेना हो वैसा दिया कीजिए, जो हुआ सो हुआ मत गिला कीजिए, जो हुआ सो हुआ मत

0: गिला कीजिए सीख लेकर उसी से नया कीजिए, सीख लेकर उसी से नया कीजिए। कुछ शरारत भी हो और नादानी भी, कुछ शरारत भी हो और नादानी भी, मन के बच्चे को जिंदा रखा कीजिए, मन के बच्चे को जिंदा रखा कीजिए। एक सुरक्षा कवच है जरूरी उन्हें, एक सुरक्षा कवच है जरूरी उन्हें, आप बच्चों से मत फासला कीजिए, आप बच्चों से मत फासला कीजिए। बेटियों पर ही बस आपकी है नजर, बेटियों पर ही बस आपकी है नजर, नजरें बेटों पे भी तो रखा कीजिए, नजरें बेटों पे भी तो रखा कीजिए। बढ़ न पाए सियासत अंधेरों की अब, बढ़ न पाए सियासत अंधेरों की अब, जुगनुओं की हिफाजत किया कीजिए, जुगनुओं की हिफाजत किया कीजिए। और थोड़ी होशियारी से थाम कर नाव को, थोड़ी होशियारी से थाम कर नाव को, वक्त की धार में भी बहा कीजिए, वक्त की धार में भी बहा कीजिए, जैसा लेना हो वैसा दिया कीजिए। चाहते हैं वफा तो वफा कीजिए, चाहते हैं वफा तो वफा कीजिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
1: मित्रों, जीवन का अगर सही ढंग से अवलोकन किया जाए तो आपको पता चलेगा कि वह जिस तरह से हमें अपनी गिरफ्त में लेता है, ठीक उसी तरह से हमें मुक्त भी करता है। शर्त एक ही है कि उसके किसी हिस्से को पकड़कर हम बैठ नहीं जाएं। जब जब वह जिन जिन चीजों से हाथ छुराए, हम उसे स्वीकार कर लें। जीवन के प्रति जब तक इस तरह के स्वीकार का भाव पैदा नहीं होता, तब तक हमारा जीवन एक प्रवाह नहीं बल्कि एक दुर्घटना है। कहानीकार ममता शर्मा जीवन के ऐसे ही मूक मनोविज्ञान की ओर अपनी कहानी के माध्यम से इशारा करती हैं। बचपन, जवानी, गृहस्थी, बुढ़ापा सब आनी जानी है। लोगों के साथ वस्तुओं का मोह, बीत चुके मनोरम क्षणों की कसक, बदलती भूमिका के प्रति असहज होती मानसिकता हमारे जीवन प्रवाह के ऐसे पत्थर हैं जो वर्तमान को ही ठीक से जीने नहीं देते। जो जीवंतता हमारे चारों तरफ है उसे महसूसने नहीं देते। ममता शर्मा अपनी कहानी के माध्यम से इस जीवंतता को बरकरार रखना चाहती हैं। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी उनकी एक कहानी, गृहस्थी।
2: आज फिर धूप निकली है। दो दिनों की बारिश के बाद आज अच्छी धूप निकली तो उसने फिर अपना संदूक खोल लिया। संदूक में वैसे तो जो कुछ भी था वह उसके इर्द गिर्द रहने वालों की नजर में गैर जरूरी ही था, लेकिन उसकी नजरों में वह गृहस्थी थी, अधूरी नहीं, एक मुकम्मल गृहस्थी। यह कुछ सामान ही अब शेष था, बाकी तो सारा सामान पिछले 8-9 वर्षों में अपना वजूद खो बैठा था। ठीक वैसे ही जैसे वह स्वयं पिछले कुछ वर्षों में अपनी काया की ताकत धीरे धीरे खो बैठी थी। तो यह थी उसकी गृहस्थी, 50 बरस पहले शुरू हुई गृहस्थी। यह अजीब बात थी कि 50 बरस पहले शुरू की गई गृहस्थी अब वापस उसी मकाम पर थी जहां से सब कुछ प्रारंभ हुआ था। देख रहे हो यह कड़ाही, कब खरीदी थी? किसी बड़ी दुकान से नहीं, सड़क किनारे मंगलवार की मंडी से ली थी। आज तक कैसी चमक रही है, बिल्कुल खालिस लोहा है। अब तो बड़ी बड़ी दुकानों में भी यह न मिले, सेहत के लिए कितना अच्छा है। अब टीवी पर बात आई तो सब मानेंगे कि लोहे की कड़ाही इस्तेमाल करो, पर मेरा कहा कौन सुनेगा। यह अंतर आलाप था जो कभी कभी मुखर हो जाया करता था। ज्यादातर बर्तन अब निकल चुके थे, कलई किया हुआ पीतल का भगोना, पीतल के मोटे मोटे और बड़े बड़े ग्लास, लोहे की कड़ाही, पीतल और कांसे की छोटी छोटी 5 कटोरियां, एक मोटा तवा, लकड़ी का एक चिकना चिट्टा बेलन और वैसा ही चिकना चकला, दूध का पुरानी शैली का डब्बा वगैरह, ये कुछ कुछ बर्तन ही बच रहे थे। खाना वैसे भी अब वह बनाती नहीं थी, बस पका पकाए ही खाया करती थी। ऐसा नहीं था कि उसे खाना बनाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन सबका मानना था कि वह अब बहुत खाना बना चुकी और अब उसे खाना नहीं बनाना चाहिए बल्कि आराम करना चाहिए, लिहाजा उसने खाना बनाना ही छोड़ दिया था। ये उसके आराम के दिन थे। बचे हुए ये तमाम सामान अब एक लकड़ी के काले बक्से में चले गए थे। ये सामान भी अब आराम कर रहे थे, मानो उन्हें भी बता दिया गया हो बहुत काम कर चुके तुम, अब आराम के दिन हैं ये तुम्हारे। वह खास तौर से सुथरी से सूखी राख मंगवाया करती। सुथरी, ये पोटली में क्या लाई है? अरे दीदी, अम्मा ने सूखी राख मंगवाई है। किस लिए? वो बर्तन मलने के लिए। हैं? बर्तन मलेंगी वे? अम्मा भी ना, और तू भी ले आई? रहने दो ना दीदी, आस्ते बोलो, कहीं सुन लेंगी अम्मा जी तो बुरा मान जाएंगी, सोचेंगी हमने चुगली की है। ऐसे बहुतेरे वार्तालाप घर में सुनने को मिल जाया करते थे। सुथरी कहने को तो बाहरी थी, पर सालों घर में काम करते हुए उसे घर से एक अबूझ सा प्यार हो गया था। वह अपनी वैसी तमाम जरूरतें सुथरी से ही पूरी करवा लिया करती, जो औरों की नजर में दरअसल जरूरतें थी ही नहीं। बर्तन महीने में एक बार तो जरूर निकलते, फिर उन्हें बाहर दरी पर फैला दिया जाता। एक एक कर बर्तन की सेवा होती। बर्तन क्योंकि लोहे पीतल और कांसे के थे, सो सेवा से चमक जाया करते। पीतल के बर्तन इतने चमक जाते कि आंखें चुधिया जाए। हवा और धूप दिखाने के बाद एक एक बर्तन को अखबार में लपेटा जाता और वापस करीने से लकड़ी के उसी संदूक में रख दिया जाता। ऐसा सिर्फ बर्तनों के साथ नहीं होता, कपड़ों का एक अलग संदूक था जिसमें पहनने के कपड़े कम सजावट के ज्यादा थे। क्रॉस स्टिच की अद्भुत कढ़ाई वाले टेबल क्लॉथ और टाट पर बने खूबसूरत झोले, यह सब उसके अपने हाथों का बनाया हुआ था, जिसे वह घर वालों को कई दफे बता चुकी थी। अब यह बात लोगों की जबानी याद हो गई थी। जैसे ही बात शुरू करती, घर का कोई न कोई सदस्य बीच में टपक पड़ता। यह सन 63 में बना था, इसे बनाने में 18 दिन लगे थे। बहरहाल इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह फिर भी दोहराया करती अपनी बातें। घर में दो लोग ऐसे थे जो उसकी बातें बिना टोके चुपचाप सुना करते, वह चाहे कितनी ही बार दोहराए। एक सुथरी, जो कहने को तो गैर थी और सिर्फ सुबह से शाम घर में काम के हिसाब से तैनात थी, और दूसरी उनकी दौहित्री किकली, जो उनकी बातों को बड़े गौर से सुना करती, चाहे वे कितनी ही बात दोहरा ली गई हों। किकली बहुत दूर थी, नॉर्वे में, और सुथरी पास। कपड़ों का संदूक लगभग हर सप्ताह ही निकल जाया करता, चादरें धूप को दिखाई जाती। बरसात के दिनों में जरूर संदूक कई दिनों तक धूप न देख पाते। उन्हीं कपड़ों के बीच अच्छी तरह सहेज कर रखा गया एक एल्बम भी था। उसे वह तो देखती नहीं, मगर जब भी निकालती तो सुथरी को मौका हाथ लग जाता। वह उससे मांगकर बड़े गौर से तस्वीरें देखा करती। तस्वीरें ऐसी लगती मानो कोई पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म देख रहे हों। उन तस्वीरों में वह सुंदर थी और बच्चे छोटे और मासूम। सुंदर तो वह अब भी थी, अपने चिट्टे श्वेत बालों के साथ, और उसकी त्वचा जो कभी भी किसी तीमारदारी की मोहताज नहीं रही थी, बहुत दमका करती थी। तस्वीरें जिस पैकेट में थी वह उसी स्टूडियो का था जिसमें वे तस्वीरें बनवाई गई थी, और अब जर्द हो चुका था। इन दो संदूकों के अलावा उसके पास जो सामान पिछले वर्षों में बचकर बाकी रहा था, उसमें पूजा का एक छोटा संदूक था और उसकी निजी जरूरत का सामान, मतलब कपड़े वगैरह। कपड़ों का एक संदूक थोड़ा बड़ा था जिसमें अलग अलग समय में लोगों द्वारा गिफ्ट किए गए कपड़े थे, तो कुल मिलाकर चार संदूकों में पूरी गृहस्थी सिमट गई थी। चार बड़े कमरे, एक विशाल आंगन, एक बड़ा बैठक खाना, एक भंडार घर, एक और स्टोर रूम और रसोई घर भी ऐसा जैसे कोई कमरा हो। इतने बड़े घर का सामान चार संदूकों में बंद हो चुका था। यह कोई आसान काम नहीं था। किसे रखना है, किसे फेंकना है, क्या बांटना है, इन सवालों के बीच वह ऐसे बैठा करती जैसे किसी महासागर के बीच कोई छोटी सी कश्ती डाल दी गई हो। सोफे और पलंग, जो औरों की नजर में आउटडेटेड हो चुके थे, उसकी नजर में बेशकीमती थे। और वह ड्रेसिंग टेबल, जो अब सिर्फ पुरानी फिल्मों में ही नजर आता था। सारा कुछ एक दिन बड़ी सी गाड़ी में लादकर शहर की एक फर्नीचर दुकान को दे दिया गया था, जिसके बदले उसने अपने हिसाब से कीमत लगाकर नए सामान में एडजस्ट करके चमचमाता आधुनिक स्टाइल का मॉडर्न फर्नीचर दे दिया गया था। फर्नीचर वाले ने भी मोल कम कर दिया था, उसका भी वही कहना था जो घर वालों का कहना था। अब ये डिजाइन आउटडेटेड हो गए हैं। उसने महसूस किया था कि आउटडेटेड हो जाना घर के बहुत से सामानों की नियति हो गई थी, लेकिन यह सब उसे बुरा नहीं लगता था। वह हर परिवर्तन को निष्काम ढंग से जीती आई थी। उसकी जिंदगी में जब भी कोई परिवर्तन आता तो वह उन दिनों को याद करती जब वह अपने मायके सिर्फ इसलिए न जा पाती क्योंकि घर की रसोई संभालने वाला कोई न होता। दिल में एक हूक सी उठती और बाबूजी याद आ जाते जो हर बार उसके लौटने पर रुआंसा चेहरा लिए दहलीज के अंदर खड़े होते। उसने निष्काम होने का सबसे बड़ा पाठ वहीं से सीखा था। बाकी सारा कुछ जो जिंदगी में घटता आया था उससे कमतर था। तो इस प्रकार उसकी गृहस्थी जिसका एक एक सामान जो उसका अपना ही जोड़ा हुआ था अब चार संदूकों में तालों के अंदर बंद था। घर में वैसे तो बहुतेरे सामान थे लेकिन हर सामान से उसे वैसा प्रेम नहीं था। मसलन फ्रिज और टीवी, ऐसे सामान उसने बड़े अरमानों से ही लिए थे लेकिन जाने क्यों उन सामानों के जाते वक्त उसे जरा भी मोह का अनुभव नहीं हुआ था। उसे पुराने स्टाइल का रेडियो चाहिए था जो घर वालों की नजर में बहुत ज्यादा जगह घेर रहा था, वह रेडियो जिसका प्रोडक्शन ही अब बंद हो चुका था। किकली से पूछ लो, शायद उसे पसंद हो। जब उसे किसी चीज को देने का दिल न होता तो वह किकली के नाम का सहारा लिया करती। किकली भी ऐसे मौकों पर खरी उतरती। रेडियो उसने अपने एक मित्र के पास रखवा दिया था जिसे पुराने सामान जमा करने का शौक था। ऐसी बहुत सारी छोटी बड़ी चीजें थी जिनसे उसका एक अनाम सा रिश्ता था। वे उसे घर का एहसास दिलाती थी। फिर किकली ने ही एक और रास्ता निकाला था। उसने ऐसी चीजों की तस्वीर ले ली थी और इन तस्वीरों को बाकायदा फोटो तैयार कर लिया था और फिर एक एल्बम बनाकर उसे ही सौंप दिया था। यह बात उसे पसंद आ गई थी। इतना तो इल्म उसे था कि गृहस्थी का विस्तार और फिर संकुचन एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है जो होती आई है, मगर इस सत्य को जानना और इससे प्रत्यक्ष गुजरना दो अलग बातें थी। सब कुछ ठीक ही चल रहा था तब तक जब तक एक दिन घर में पुरानी चौकी के बदले एक मॉडर्न तरीके का बॉक्स वाला दीवान खरीदने का फैसला नहीं ले लिया गया। नया बॉक्स वाला दीवान खरीदने की सोच तो अच्छी थी कि घर में जब सबके कमरों में नए ढंग का फर्नीचर है तो फिर अम्मा क्यों पुराने स्टाइल के फर्नीचर के साथ रहे। वैसे जिस चौकी पर वे सोती थी वह कोई मामूली चौकी नहीं थी, उसकी उम्र घर के कई लोगों की उम्र से ज्यादा थी। हाँ, चौकी 70 बरस पुरानी थी और अब भी पूरी मजबूती के साथ खड़ी थी, कहीं कोई कीड़ा दीमक नहीं था, जबकि घर की 4-5 बरस पुरानी आलमारियां और दूसरे सामान कीड़ों के आतंक से भुरभुरे हो रहे थे। दीवान के आने से दो बातें होने वाली थी, एक तो पुराने समय का एक सूत्र क्षीण होने वाला था और दूसरे यह तय हुआ था कि वे चार संदूक अब उस बॉक्स में शिफ्ट कर दिए जाएंगे ताकि उसका कमरा भी दूसरों के कमरे जैसा मॉडर्न और साफ सुथरा दिखाई दे। वैसे भी वे चार संदूक घर के बाकी सामानों के बीच किसी पुराने पैबंद सरीखे प्रतीत होते थे, ऐसा घर के लोग बात बात में जाहिर कर चुके थे। उसे यह भी सुझाव दिया गया था कि बिल्कुल नए चमकते संदूक खरीदकर सामानों को उनमें डाल दिया जाए, मगर उसका दिल था कमजोर कि मानता ही नहीं था। संदूक पर तो उसे अपनी बात रखवा ली थी, मगर जब चौकी को रिप्लेस करने की बात आई तो वह कुछ न कह सकी। चौकी तो विदा होने ही वाली थी और साथ ही उसकी दिनचर्या भी, क्योंकि बॉक्स वाले दीवान में रोज बरोज सामान निकालना संभव नहीं था और संदूकों के सामान से गुफ्तगू उसकी दिनचर्या का एक जरूरी हिस्सा था। बहरहाल उसने चौकी के लिए तो सुथरी को राजी कर लिया था कि उसे वह ले लेगी। इसी बहाने चौकी किसी हमदर्द के पास पहुंच जाने वाली थी, लेकिन दूसरी समस्या का क्या होने वाला था। दूसरी समस्या तो उसे निश्चित ही उदास करने वाली थी। अब वह सिर्फ सामान नहीं था, उसके लिए वह तो जीने का एक मुकम्मल साधन था। दीवान आया तो सबसे पहले सुथरी ने ही उसे देखा। अभी गाड़ी से दीवान उतरा ही था और उसे लिविंग रूम में रखकर फिक्स किया जा रहा था। अम्मा जी, मैंने देख लिया है, दीवान नए तरीके का है, बिल्कुल हाथ लगते ही सट से ऊपर चला जाता है, फिर जरा हाथ लगते सट से वापस आ जाता है। हम इसको रोज रोज नीचे ऊपर कर लेंगे, आप चिंता न करना, सामान निकालने का जिम्मा मेरा, सुथरी पूरे उत्साह से आकर बता रही गई और फिर जाकर वही फिक्स हो रहे दीवान को देखने के लिए खड़ी हो गई। वह सुथरी का चेहरा देख रही थी। उसे लगा कि अब सामान उतना जरूरी नहीं है बल्कि सुथरी का होना ज्यादा जरूरी है।
1: इसी के साथ

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदी साहित्यिक पत्रिका शतदल। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगाहर्ट्स पर। प्रस्तुत है संताली समाचार पत्रिका।

0: ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱦᱟᱯᱛᱟᱠᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱨᱮ ᱟᱯᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱤᱧ ᱚᱧᱡᱚᱞᱟ ᱴᱩᱰᱩ ᱟᱨ ᱱᱤᱛ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱥᱟᱢᱮᱞᱟᱭ ᱛᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱫᱚᱠᱷᱤᱱ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱟᱬᱟ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱵᱮᱝᱜᱟᱞᱩᱨᱩ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱡᱚᱱᱥᱚᱵᱷᱟ ᱨᱮ ᱨᱚᱲ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱟᱨ ᱠᱚᱝᱜᱨᱮᱥ ᱨᱮ ᱦᱟᱦᱟᱲᱟ ᱯᱨᱚᱦᱟᱨ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱢᱳᱫᱤ ᱫᱚ ᱱᱟᱨᱤ ᱥᱚᱠᱛᱤ ᱵᱚᱱᱫᱚᱱ ᱟᱫᱷᱤᱱᱤᱭᱚᱢ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱨᱮ ᱠᱚᱝᱜᱨᱮᱥᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱟᱞᱳᱪᱚᱱᱟ ᱨᱮ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱟᱭᱳ ᱦᱚᱲ ᱛᱟᱠᱚ ᱠᱚᱝᱜᱨᱮᱥ ᱛᱤᱥ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱠᱚ ᱢᱟᱯᱷᱮᱭᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱫᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱥᱚᱵᱷᱟ ᱪᱩᱱᱟᱣ ᱯᱚᱨᱤᱱᱟᱢ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱜᱟᱯᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱟᱨ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱵᱷᱟᱡᱯᱟᱣᱟᱜ ᱡᱚᱱ ᱟᱫᱷᱟᱨ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱠᱟᱱ ᱨᱮ ᱪᱟᱨᱪᱟ ᱠᱮᱫᱟᱭ
1: एंटी इनकमबेंसी शुरू हो जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कांग्रेस को सिर्फ विश्वासघात करना आता है। ये खुद भी झूठे हैं और उनकी गारंटियां भी झूठी है। कांग्रेस की सत्ता की किताब में गवर्नेंस का चैप्टर तो है ही नहीं है। यहां कर्नाटका में भी पिछले 3 साल से हम यही देख रहे हैं। जनता की समस्याएं सुलझाने के बजाय यहां की सरकार का ज्यादातर समय आपस के झगड़े सुलझाने में लग रहा है। ये तय नहीं हो पाता है कि मुख्यमंत्री कितने दिन रहेंगे, ये तय नहीं हो पाता कि दूसरे को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लटकाए रखा है। इतना ही नहीं, ये मैं देख रहा हूं इनकी इकोसिस्टम, तमिलनाडु में प्रक्रिया चल रही थी और इनकी इकोसिस्टम दिल्ली में बैठे बैठे देश को गुमराह करते थे कि देखो 4 तारीख को नतीजे आ गए, 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई, 8 हो गई, तमिलनाडु में सरकार नहीं बन रही है। अरे भाई केरल में तो पूर्ण बहुमत है, वहां तो बना लो। ये इकोसिस्टम केरल के लिए चुप है, नेता तो ही तर्क पा रहे।
0: मारांग मंत्री बंगलुरु रे द आर्ट ऑफ लिविंग 45वां जन्म महासम्मेलन रे हो सेलेक्ट लेना है। ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱨᱟᱪᱟᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱫᱷᱮᱭᱟᱱ ᱢᱚᱱᱫᱤᱨ ᱟᱨ ᱟᱨᱮᱞ ᱥᱮᱵᱟ ᱯᱨᱚᱠᱚᱞᱯ ᱞᱚᱠᱟᱨᱯᱚᱱ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱢᱳᱫᱤ ᱫᱚ ᱨᱟᱪᱟᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱢᱚᱱᱫᱤᱨ ᱨᱮ ᱵᱚᱸᱠᱟ ᱵᱟᱸᱠᱷᱮᱲ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱟᱠᱨᱮ ᱥᱚᱝᱥᱛᱷᱟ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱝᱥᱛᱷᱟᱯᱚᱠ ᱥᱨᱤ ᱥᱨᱤ ᱨᱚᱵᱤ ᱥᱚᱝᱠᱚᱨ ᱦᱚᱸ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱟᱭ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱚᱠᱛᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱫᱚ ᱨᱚᱲ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱡᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟᱱᱛᱮ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱨᱮ ᱵᱚᱞ ᱮᱢ ᱮᱱᱟᱭ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱡᱮ ᱯᱨᱟᱭᱟᱵᱚᱨᱚᱱ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱫᱟᱜ ᱟᱨ ᱵᱤᱡᱽᱞᱤ

अभी आप सुन रहे थे संताली समाचार पत्रिका। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: रजनीगंधा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रौनक जहां का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मदर्स डे है, यानी माँ का दिन। ममता केवल खून के रिश्तों की मोहताज नहीं होती, बल्कि ये वो निस्वार्थ भाव है जो किसी के दुख को देखकर पिघल जाए और उसे संवारने के लिए ढाल बनकर खड़ी हो जाए। माँ शब्द में ही एक पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। माँ के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। माँ ही है जो हमें संसार में लाती है, उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाती है, जिंदगी के हर कदम पर ठोस जमीन तैयार करती है और हमें अपने मंजिल तक पहुंचाने में मदद करती है। आप सभी को आकाशवाणी रांची परिवार की तरफ से मातृत्व दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।

समीर का लिखा गीत अभी आप सुन रहे थे, जिसे संगीत दिया था आनंद मिलिंद ने। फिल्म थी अनाड़ी और इस गीत को गाया था उदित नारायण ने। और आइए अब बढ़ते हैं अगले नगमे की तरफ, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। गीत मजरू सुल्तानपुरी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फिल्म का नाम मेरे हमदम मेरे दोस्त।

और अब सुनिए कार्यक्रम का आखिरी गीत, श्रेया घोषाल की आवाज में, संगीतकार नदीम श्रवण, गीतकार समीर, और फिल्म है श्रोताओं तुमसा नहीं देखा।

0: तो ये था कार्यक्रम रजनीगंधा। आप सुन रहे थे अपनी दोस्त रौनक जहां के साथ। नमस्कार। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए अब सुने प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां।
1: नमस्कार, मैं एना कर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ कार्यक्रम हमारी बेड़िया में। तो श्रोताओं, आइए कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आप हमारा पता जरूर लिख लें, ताकि कार्यक्रम के दौरान अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है तो आप हमें जरूर बताएं। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बेड़िया, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 11001। और हमारा फोन नंबर है 9311504004। जी हाँ, 9311504004।
2: ए परिंदे, यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है? ए परिंदे, यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है? पंखों को खोल, क्योंकि जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जी हाँ दोस्तों, वक्त चाहे कितना भी अंधकार में क्यों ना लगे, बस प्रेम और उम्मीद हमेशा जिंदा रखें। दोस्तों, उम्मीद और विश्वास पर ही दुनिया कायम है, और ऐसा नहीं है कि दुनिया में हम सबके जीवन में दुख या परेशानी नहीं होती। सबके साथ जिंदगी में ऐसा होता है कि हम निराशाओं में, परेशानियों में, उदासी में पड़ जाते हैं। पर आज मैं आपको यही बताने आई हूँ कि कुछ भी क्यों ना हो, जिंदगी में कोई भी कठिनाई क्यों ना आ जाए, बस आप अपनी आशा कभी नहीं छोड़िए। तो आशा बड़ी बलवान होती है। उम्मीद के सहारे व्यक्ति बड़े से बड़े कार्य को अंजाम दे देता है। कहने का मतलब है कि व्यक्ति अपने भविष्य को आशाओं के साथ जोड़े बिना रह नहीं सकता। जी हाँ, बिना आशा और भरोसे के कुछ भी करना संभव नहीं। जो आशा में विश्वास करता है, उन्हें उपलब्धि की राह मिल ही जाती है। आशा या उम्मीद ईश्वर के द्वारा दिया गया ऐसा उपहार है जिन्हें हम एक दूसरे को दे सकते हैं। उम्मीद जीवन जीने का सहारा है। इसके जरिए बड़ी बड़ी जंग पर जीत हासिल की जा सकती है। कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन जिंदगी में कभी कभी ऐसा समय भी आता है जब उम्मीद ही डगमगाने लगती है। तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? दरअसल जिंदगी में परिस्थितियां हमारे अनुरूप नहीं होती। हमने जिस चीज या जिस परिस्थिति के बारे में सोचा भी नहीं होता, वो अचानक एक चुनौती बनकर हमारे सामने खड़ी होती है। ऐसी कठिन घड़ी में खड़े हो पाना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय में ही अपनी आशाओं को जिंदा रखना बेहद जरूरी हो जाता है। आप सोच रहे होंगे, क्या है ये आशा? हम रात को सोते हैं इस उम्मीद से कि सुबह जीवित उठेंगे, ये है आशा। मेहनत करते हैं इस उम्मीद से कि इसका फल मिलेगा, ये है आशा। हम विवाह बंधन में बनते हैं कि हमारा जीवन अच्छा खुशहाल बीतेगा, ये है आशा। किसी महान व्यक्ति ने अपने अनमोल विचारों में कहा कि सब कुछ खो देने से भी बुरा उम्मीद खो देना होता है। उम्मीद जिसके भरोसे आप दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इसलिए बुरे से बुरे वक्त में भी हमको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि उम्मीद के कारण ही हम अपनी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में उम्मीद का साथ नहीं छोड़ा। जी हाँ, उनका नाम है योगेश। योगेश जी को जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर ले आई जहाँ शायद वो हार मान लेते, पर उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में भी बड़ी समझदारी से काम लिया। उन्होंने कितनी मेहनत से अपनी फसल उगाई, खेत तैयार किए, बीज का इंतजाम किया। पर दोस्तों, फसल उगने का इंतजार तो उन्होंने किया और मेहनत भी उन्होंने बहुत की, पर समय ने उनका साथ नहीं दिया और पानी खेत पर पूरी रीति से भर गया और उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई, उनकी सारी फसल सड़ गई। सोच के देखिए क्या बीती होगी उन पर, क्या हाल हुआ होगा उनका। ये दर्द एक किसान ही समझ सकता है। दोस्तों, आपने भी सुना होगा कि कई लोग ऐसे समय पर निराश होकर गलत कदम उठा लेते हैं और दुख में गम में डूब जाते हैं, पर ऐसे समय में जो हिम्मत से काम ले और अपनी आशा को कसकर पकड़ के रखे, अपनी उम्मीद का दामन थाम ले, वही जिंदगी का असली विजेता है।

0: ऐसी ही एक और सच्ची घटना के विषय में हमारी सहयोगी एना आपको एक और कहानी बताएंगी।
1: जी हाँ, ऐसी ही एक लड़की है जिनका नाम पूजा है। पूजा ने अपने माता पिता दोनों को खो दिया और वो अपने दादाजी के साथ रहती थी, पर माँ बाप का इस तरह से चले जाना उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी रहने लगी और दुख ने उसको अंदर ही अंदर घुटन में डाल दिया था। श्रोताओं, उसका दुख और उसकी घुटन उसके अंदर आत्महत्या का विचार ले आई और उसने आत्महत्या करने की सोच ली। और एक दिन जब वो आत्महत्या करने को जाने वाली थी, उसके दादाजी रेडियो पर एक कार्यक्रम सुन रहे थे। उसके दादाजी को रेडियो सुनना बेहद पसंद था। पूजा बस घर के कुछ काम निपटा रही थी और उसने मन बना लिया था कि वो इसके बाद अपनी जिंदगी खत्म कर देगी। तभी रेडियो पर कार्यक्रम शुरू हुआ और उस दिन उस कार्यक्रम का विषय था आत्महत्या। जी हाँ, आत्महत्या। और ये शब्द जैसे ही पूजा के कान में पड़ा, उसने ध्यान से सुनना शुरू किया और फिर आगे कार्यक्रम में बताया गया कि आत्महत्या कैसे एक गलत फैसला है और आत्महत्या करने वाले के परिवार को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। श्रोताओं, जब ये सब पूजा सुन रही थी, वो फूट फूट कर रोने लगी और उसको अपने बूढ़े दादा और दादी का चेहरा नजर आया। पूजा ने एकदम अपना फैसला बदल लिया और उसने सोचा कि जो तकलीफ उसको हुई है, उसके माता पिता के जाने के बाद वो कैसे अपने दादा दादी को ऐसा दर्द दे सकती है। पूजा उठी, अपने आंसू पोंछे और खुद से उसने वायदा किया कि वह गलती से भी ऐसा गलत काम नहीं करेगी और अब से वो अपने दादा दादी की देखभाल करेगी और अपनी जिम्मेदारी को उठाएगी।

देखा आपने, जिस चीज ने योगेश जी को हार नहीं मानने दी, उनको टूटने नहीं दिया, वह थी उम्मीद, आशा, होप। जी हाँ, पूजा को उस प्रोग्राम से जो मिला वह थी आशा। बस हमको भी यही करना है, हालात कैसे भी क्यों ना हो, बस अपने जीवन में आशा को पकड़ कर रखना है, कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना है। दोस्तों, एक बार स्कॉटलैंड के राजा ब्रूस ने जब इंग्लैंड से युद्ध किया तो वह युद्ध हार गया और इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड पर कब्जा कर लिया। पर राजा ने अपना राज्य वापस पाने को बार बार युद्ध किया, पर वह बार बार असफल होता गया। 14 बार उसने युद्ध लड़ा पर नहीं जीत पाया और भागकर एक गुफा में छिप गया। पर दोस्तों, वहां उसकी नजर एक मकड़ी पर पड़ी। एक मकड़ी बार बार ऊपर चढ़ती और गिर जाती। कभी वह ऊपर चढ़ते वक्त गिर जाती और कभी जाल बनाते हुए गिर पड़ती। राजा ने गौर किया कि ऐसा लगभग 20 बार हो गया था और आखिर में मकड़ी कामयाब हुई। तभी राजा ने अपनी निराशा को छोड़ दिया। राजा ने कहा, मेरे तो अभी 7 प्रयास बाकी हैं। और राजा ने फिर से उम्मीद का दामन थाम लिया और फिर खुद को तैयार किया और जब फिर युद्ध किया तो वह जीत गया, उसको उसका राज्य वापस मिल गया। दोस्तों, आज हम आपको अपने इस प्रोग्राम से यही उत्साहित करना चाहते हैं कि परिस्थितियाँ कुछ भी क्यों ना हो, हालात कैसे भी क्यों ना हो, पर अगर आप अपनी उम्मीद नहीं छोड़ते तो असफलता भी सफलता का रास्ता आपको दिखा देती है। कई बार बच्चे स्कूल में फेल होने पर निराश हो जाते हैं और घर पर बैठ जाते हैं। कई बार लोग अपने व्यापार में सफल ना होने पर अपना प्रयास बंद कर देते हैं। कई बार किसान भाई फसल खराब होने पर निराश होकर गलत फैसले कर लेते हैं। पर बस यही नहीं करना है दोस्तों, जबकि ये ऐसा पल है जब आपको मजबूती से उम्मीद का दामन पकड़ के रखना है, क्योंकि कहते हैं ना, हर रात के बाद सवेरा होता है और प्रकाश तक पहुंचने के लिए हमें अंधेरे से गुजरना ही पड़ता है। हर बात के पीछे भलाई होती है, पर तब जब हम अपनी आशा नहीं खोते, जब हम उम्मीद से गहरा रिश्ता जोड़ के रखते हैं। दोस्तों, किसी ने इस प्रकार कहा कि जिंदगी के रेगिस्तान में उम्मीद का घड़ा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब दुनिया और हालात कहते हैं हार मान लो, तब यही आशा धीरे से कान में कहती है, एक बार और प्रयास करो। जी हाँ दोस्तों, बस हम यही कहना चाहते हैं कि कुछ भी हो, बस अपने जीवन में आशा का, उम्मीद का दामन पकड़ के रखिएगा। जी हाँ, किरण चाहे सूरज की हो या आशा की, जीवन के सभी अंधकार को मिटा देती है। इसलिए जीवन में कभी आशा को ना छोड़ें, क्योंकि आप कभी ये नहीं जान सकते कि आने वाला कल आपके लिए क्या लाने वाला है। आपके वर्तमान और भविष्य के बीच का सफर उम्मीद ही तय कराती है।

तो श्रोताओं, आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं या आप अपने अनुभवों को हमसे बांटना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 11001। और हमारे

0: फोन नंबर है 9311504004। जी हाँ, 9311504004। श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, विकास दर्शन रेडियो प्रसारण की प्रस्तुति। हम आपको बता दें कि यह कार्यक्रम सप्ताह में दो बार प्रसारित किया जाता है, संध्या 7:45 पर हर बुधवार और रविवार। जी हाँ, संध्या 7:45 पर हर बुधवार और रविवार। तो आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे 545.45 मीटर बैंड पर। जी हाँ, 545.45 मीटर बैंड पर। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।
1: हमारी बेड़ियां, अभी आप सुन रहे थे ये प्रायोजित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
2: सुर्खियों में नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं जया भारती। आज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर्नाटक और तेलंगाना दौरे तथा विभिन्न विकास परियोजनाओं पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने हैदराबाद, वारंगल, संगारेड्डी और बेंगलुरु में लगभग 9400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी कई अहम परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया तथा बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में भी हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे की शुरुआत कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में द आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होने के साथ की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने ध्यान, मानसिक स्वास्थ्य, प्रकृति संरक्षण और सामाजिक सेवा से जुड़े विभिन्न राष्ट्रीय अभियानों की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने संस्था के नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया, जिसे आंतरिक शांति और समग्र कल्याण के केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की कई उपलब्धियों के पीछे युवाओं की बड़ी भूमिका है। उन्होंने खुशी व्यक्त की कि आर्ट ऑफ लिविंग जैसी संस्थाएं युवाओं को आधुनिक दौर की चुनौतियों का सामना करने और उनके समाधान खोजने में मदद कर रही है।
3: साथियों, बहुत तेजी से बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। हर दिन नए नए इनोवेशन पूरे की पूरी इकोनॉमी को बदल रहे हैं। भारत इस बदलाव में केवल भागीदारी नहीं कर रहा, वो कई क्षेत्रों में नेतृत्व भी कर रहा है। भारत को डिजिटल पेमेंट में ग्लोबल लीडर बनाया है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है और फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। स्टार्टअप में भारत बहुत तेजी से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बना है। हमारे युवा आज स्पेस में अपनी सैटेलाइट्स भेज रहे हैं। देश की ऐसी सभी उपलब्धियों का सबसे बड़ा कारण है हमारे युवा हैं और आर्ट ऑफ लिविंग है।
2: द आर्ट ऑफ लिविंग के वर्षगांठ समारोह में भाग लेने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक अन्य कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया, जहां उन्होंने आज के दिन यानी 10 मई के ऐतिहासिक महत्व की चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसी दिन वर्ष 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी भड़की थी, जो आगे चलकर एक बड़े आंदोलन में बदल गई और गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया। प्रधानमंत्री ने साहस और वीरता की इसी विरासत को देश की सबसे बड़ी ताकत बताया।
3: 10 मई की ऐतिहासिक तारीख है। 1857 में आज के ही दिन स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी फूटी थी। समय के साथ ये चिंगारी एक बड़ी ज्वाला में बदल गई, जिसने गुलामी की बेड़ियों को जलाकर भस्म कर दिया। शौर्य और सामर्थ्य की विरासत ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। इसी प्रेरणा से हमने 3 दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मनाई है। 11 तारीख को मैं गुजरात के सोमनाथ में रहूंगा, वहां सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्षों का उत्सव मनाया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए ऐसे ऐतिहासिक अवसर हमें नई ऊर्जा से भरते हैं।
2: साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच देश के हितों की रक्षा के लिए संसाधनों का संरक्षण भी बेहद जरूरी है। उन्होंने इस संबंध में लोगों से विशेष अपील करते हुए जिम्मेदारी और जागरूकता के साथ संसाधनों के उपयोग पर जोर दिया।
3: देश का हित, देश के लोगों का हित, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। आप देख रहे हैं कि इस समय वैश्विक स्तर पर किस तरह की चुनौतियां हैं। वेस्ट एशिया में संकट की स्थितियां लगातार बनी हुई है। युद्ध के इस माहौल का बहुत नकारात्मक असर पूरे विश्व पर पड़ा है और भारत भी इससे प्रभावित हो रहा है। हमारे नार प्रभु कैंपेगौड़ा जी कर्तव्य पालन की मिसाल रहे हैं। उनकी धरती से मैं देश के लोगों से भी एक आग्रह करना चाहता हूं, देश के बढ़ते हुए सामर्थ्य में हमें अपना संयम भी बढ़ाना होगा, हमें मिलकर संसाधनों को बचाना होगा, देश के हितों की रक्षा करनी होगी। जिस तरह कोरोना काल में हमने संकटों का मिलकर सामना किया था, वैसे ही देशभक्ति की भावना से हमें फिर एक बार भारत को इन वैश्विक संकटों से निकालने के लिए एक साथ खड़ा होना ही होगा।
2: बेंगलुरु के कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद पहुंचे, जहां उन्होंने लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे के अंतर्गत गुडिबल्लूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 को 4 लेन करने की परियोजना की आधारशिला रखी। करीब 3,175 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से यात्रा समय में लगभग 1.5 घंटे की कमी आएगी, साथ ही ईंधन की बचत और लॉजिस्टिक्स दक्षता में भी सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र की नींव रखी। यह क्षेत्र हैदराबाद नागपुर औद्योगिक गलियारे के तहत विकसित किया जा रहा है। करीब 3,245 एकड़ में बनने वाली इस परियोजना पर 2,350 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 65 के पास स्थित यह औद्योगिक क्षेत्र सड़क, रेल और हवाई संपर्क से जुड़ा हुआ है। यहाँ ऑटोमोबाइल, फूड प्रोसेसिंग, मशीनरी और इलेक्ट्रिकल उपकरण जैसे उद्योग स्थापित किए जाने हैं। इस परियोजना से लगभग 10,000 करोड़ रुपए के निवेश और बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन किया। टेक्सटाइल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ये देश का पहला पूरी तरह से तैयार पीएम मित्र पार्क है, जो लगभग 1,700 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है।
3: अतीत में जब भारत दुनिया की बहुत बड़ी इकोनॉमी था, तब हमारे वस्त्र उद्योग की बहुत बड़ी भूमिका थी। अब हम अपनी उस विरासत को फिर से सशक्त कर रहे हैं। वारंगल का पीएम मित्र पार्क देश में टेक्सटाइल क्रांति को गति देगा। पीएम मित्र पार्क में लगने वाली यूनिट्स को केंद्र सरकार की योजनाओं का भी पूरा लाभ मिलेगा। उन्हें केंद्र सरकार की पीएलआई स्कीम से भी मदद मिलेगी, यानी इस टेक्सटाइल पार्क से बड़ी संख्या में रोजगार का निर्माण होगा। खासतौर पर जो हमारी बहनें बेटियां हैं, उनके लिए अनेक अवसर बनने वाले हैं।
2: ये पार्क किसानों से लेकर कपड़ा उद्योग और निर्यात तक पूरी प्रक्रिया को एक ही जगह जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पार्क में सड़क, बिजली और पानी जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष जल शोधन व्यवस्था भी तैयार की गई है। प्रधानमंत्री ने लगभग 1,535 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित की। इसके तहत गाजीपेट विजयवाड़ा रेल लाइन के कई हिस्सों में नई लाइन और अतिरिक्त ट्रैक तैयार किए गए। इससे ट्रेनों की आवाजाही तेज होने, भीड़ कम होने और माल ढुलाई में सुविधा मिलने की उम्मीद है। हैदराबाद में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले अविभाजित आंध्र प्रदेश के लिए रेलवे बजट 1,000 करोड़ रुपए से भी कम हुआ करता था, जबकि आज अकेले तेलंगाना के लिए रेलवे बजट करीब 5,500 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। साथ ही राज्य में इस समय लगभग 50,000 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
3: साथियों, साल 2014 से पहले अविभाजित आंध्र प्रदेश के लिए 1,000 करोड़ रुपए से भी कम का रेलवे बजट होता था। रेवंता जी सुन रहे हैं ना, संयुक्त आंध्र के समय रेलवे का बजट 1,000 करोड़ रुपए से भी कम था। आज सिर्फ संयुक्त आंध्र की बात नहीं कर रहा, आज सिर्फ तेलंगाना का रेलवे बजट ही लगभग 5,500 करोड़ रुपए का है। वर्तमान में करीब 50,000 करोड़ रुपए के रेल प्रोजेक्ट्स पर यहाँ काम चल रहा है।
2: इसके अलावा काजीपेट रेल अंडर रेल बाईपास का भी लोकार्पण हुआ। इससे रेलवे जंक्शन पर ट्रेनों की भीड़ कम होगी और ट्रेनों के संचालन में भी तेजी आएगी। प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में इंजन ऑयल के मलकापुर टर्मिनल का भी लोकार्पण किया। 600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार इस परियोजना को क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति मजबूत करने और बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण किया। ये अस्पताल कैंसर के इलाज के लिए बनाया गया एक बड़ा मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है। 18 मंजिला यह अस्पताल करीब 21 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है। अस्पताल में 1,500 बिस्तरों की सुविधा है। यहाँ 150 से अधिक डॉक्टर परामर्श कक्ष और 29 आधुनिक ऑपरेशन थिएटर बनाए गए हैं। अस्पताल में कैंसर से जुड़े कई तरह के इलाज की भी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इनमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, कैंसर सर्जरी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसी सेवाएं भी शामिल हैं। इसके साथ ही आधुनिक जांच लैब और ब्लड सेंटर की सुविधा भी दी गई है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में तेलंगाना की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि साइबराबाद आज देश और दुनिया में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है और ये तेलंगाना तथा देश के तेज विकास का बड़ा केंद्र बन रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को देश का प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के उद्देश्य से कई बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। उन्होंने इन विकास परियोजनाओं के लिए तेलंगाना के लोगों को भी बधाई दी।
3: साइबराबाद का सामर्थ्य नेशनल भी है और ग्लोबल भी है। ये तेलंगाना के और देश के तेज विकास का प्रमुख केंद्र है। इसलिए आज साइबराबाद से तेलंगाना को देश का एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाने के लिए अनेक बड़े प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं। आज जिन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, इससे यहां हजारों हजार नए रोजगार बनेंगे और तेलंगाना की कनेक्टिविटी भी सशक्त होगी। मैं तेलंगाना की जनता को इन प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
2: आज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि तेलंगाना का युवा नए सपने देख रहा है, किसान नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और राज्य के उद्योग, एमएसएमई तथा स्टार्टअप विकसित तेलंगाना के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि तेलंगाना का विकास विकसित भारत के लक्ष्य को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री ने ये आश्वासन भी दिया कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए तेज गति से काम करती रहेगी।
3: आज तेलंगाना का युवा नए सपने देख रहा है। यहाँ का किसान नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ना चाहता है। यहाँ के उद्योग, यहाँ के एमएसएमई, यहाँ के स्टार्टअप सब एक विकसित तेलंगाना के निर्माण में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं, क्योंकि तेलंगाना विकसित होगा तो भारत विकसित होगा। मैं तेलंगाना के हर परिवारजनों को ये भरोसा दिलाता हूँ कि आपके सपने पूरे करने के लिए केंद्र सरकार ही इससे भी और तेज गति से काम करती ही रहेगी।
2: कर्नाटक और तेलंगाना की इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुनियादी ढांचे, उद्योग, स्वास्थ्य, ऊर्जा और सामाजिक विकास से जुड़ी अनेक परियोजनाओं की सौगात दी है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना, विकास को गति देना और

0: सुर्खियों में
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी कराची केंद्र है।
2: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, दो कैबिनेट मंत्री और चार राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क को मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
3: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
3: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने गुटिबेल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया है कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है।
3: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका

0: आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
0: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर

0: करने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
1: गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। सोमनाथ मंदिर चिरस्थायी गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभास पाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर आज प्रभास पाटन में धर्म भक्ति देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया, जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्यों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक दिखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हमीरजी गोहिल की प्रतिमा को भी विशेष पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। दूसरी ओर श्रद्धालु और पर्यटकों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में स्थित अधिक जोखिम वाली 30 झीलों के लिए विकसित की जाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली में कम से कम 60 झीलों को शामिल किया जाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि लू के कारण कृषि को होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के बदलते स्वरूप और उनसे उत्पन्न होने वाली आपदा संबंधी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन्द्र तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिचीपूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पेरम्बूर और तिरुचीपूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि

0: पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, निल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्टइंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। डॉ. जयशंकर की कल कैरिबियाई देशों की दो दिवसीय यात्रा सम्पन्न हुई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू होगी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर भी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शाह ने आज शाम नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दो पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर कहा कि आम आदमी का विश्वास समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र एक मजबूत न्याय व्यवस्था में झलकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक समाज के रूप में अपनी संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलतापूर्वक बनाए रखा है।
1: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए, खून का एक कतरा बहाए बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मातृ दिवस के अवसर पर मुंबई में मातृ पोषण किट वितरित किए। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विशेष रूप से तैयार किए गए ये किट गर्भावस्था के अंतिम चरण में महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों और नवजात शिशुओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य राष्ट्र के भविष्य से सीधा जुड़ा है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि इस पहल का विस्तार उत्तर मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंद में 65 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं जयपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। कजाकिस्तान के अल्माटी में आईएसएसएफ निशानेबाजी शॉटगन विश्व कप में नीरू ढांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने लगाए। चीनी ताइपे पहले और इटली की टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana, stresses on judicious use of imported petroleum products to reduce adverse impact of the West Asia conflict. Union Home Minister Amit Shah holds review meeting on country's preparedness to deal with possible floods and heat wave conditions. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath expands cabinet, inducts 2 cabinet ministers and 4 state ministers. India and Trinidad and Tobago sign 8 agreements, including in tourism, healthcare and Ayurveda sectors. In Pakistan, 15 security personnel killed in suicide attack in Khyber Pakhtunkhwa province. And in IPL cricket, Chennai Super Kings beat Lucknow Super Giants by 5 wickets. Another fixture between Royal Challengers Bengaluru and Mumbai Indians underway in Raipur. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stone of multiple infrastructure and industrial projects worth around 9,400 crore rupees at Hyderabad in Telangana. These projects collectively aim to establish the state as a major manufacturing hub while also strengthening connectivity, generating employment, improving logistics efficiency, enhancing safety and providing a better travel experience for people. Addressing the gathering, Prime Minister Modi said India is effectively managing the energy crisis arising from the West Asia conflict due to the steps taken by the centre, adding that the restrained use of fuel is the need of the hour. He said imported petroleum products should be used judiciously in accordance with genuine necessity, which will help save foreign exchange and reduce the adverse impact of the ongoing conflict.
3: एनर्जी सिक्योरिटी का क्या महत्व है ये आज दुनिया का हर व्यक्ति महसूस कर रहा है, इसलिए भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर हमारी केंद्र सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। मलकापुर में इंडियन ऑयल के नए टर्मिनल का उद्घाटन इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच गया है। सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है, पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें।
2: मिस्टर मोदी सेड टुडे इंडिया इज एडवांसिंग ऑन रिफॉर्म्स एक्सप्रेस एंड ऑल्सो बिल्डिंग मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। Mr. Modi said he will like to assure every family in Telangana that center will continue to work with greater speed to realize your dreams.
3: आज भारत रिफॉर्म्स एक्सप्रेस पर चल रहा है, साथ ही आज का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है। जहीराबाद इंडस्ट्रियल एरिया के निर्माण के पीछे भी यही लक्ष्य है। ये इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने के भारत सरकार के राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है।
2: Among the major projects unveiled today, including PM Mitra Park in Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park, it is aimed at creating an integrated textile ecosystem under the center's 5F vision, spanning farm, fiber, factory, fashion and foreign markets. Prime Minister Modi also inaugurated the Sindhu Hospital, a state-of-the-art cancer-focused multi-super speciality quaternary care not-for-profit institution in Hyderabad. Later, Prime Minister Narendra Modi addressed a public meeting in Hyderabad this evening. Mr. Modi said the people of Telangana are seeking change after being let down by both the BRS and the Congress. He said only the BJP's double-engine government can fulfill public aspirations and ensure development. He added that the BJP has formed government in West Bengal with a strong mandate and expressed confidence that similar support is emerging in Telangana.
3: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है। यहां बीजेपी का हर कार्यकर्ता जोश से भरा हुआ है। आज देश के कोने कोने में बीजेपी पर जनता

0: And that's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद।

0: का वीणा वादन। आपके साथ मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पी होली एवं घटम पर श्री एम चंद्रकांत संगत दे रहे हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। वी ब्रिंग यू अ वीणा रिसाइटल बाय विद्वान डी श्रीनिवास। अकंपनीइंग हिम ऑन मृदंगम इज श्री यशवंत हम्पी होली एंड ऑन
0: श्रीनिवास तेलंगाना के एक अग्रणी कर्नाटक संगीतकार हैं। एक संगीत पर की उम्र में अपनी मां श्रीमती डीएल तुलसी के मार्गदर्शन में वीणा शिक्षा का श्री गणेश किया। 9 साल की उम्र तक वे एक बाल प्रतिभा बन चुके थे। इसके बाद उन्होंने विद्वान श्री एनएस श्रीनिवासन के द्वारा उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त किया। 4 दशकों से अधिक समय से नया कलाकार हैं और उन्हें उगादि विशिष्ट पुरस्कारम तथा डॉक्टर ईमनी वैनिका चक्रवर्ती जैसे उपाधियों से भी सम्मानित किया गया था। एक वैश्विक कलाकार के रूप में श्रीनिवास ने संयुक्त राष्ट्र और लंदन के क्वीन एलिजाबेथ हॉल में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने गिटार शैली में वीणा बजाने जैसी नई तकनीकों का आविष्कार किया है, जिससे वीणा संगीत की सीमाओं का विस्तार हुआ है। एक शिक्षक के तौर पर उन्होंने 350 से अधिक विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक सच्चे राजदूत के रूप में विद्वान डी श्रीनिवास आज भी आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित कर रहे हैं।
1: विद्वान डी श्रीनिवास ए ट्रायल ब्लेजिंग कर्नाटिक म्यूजिशियन from Telangana was born into a musical lineage. He began the art of veena at the age of 7 under the guidance of his mother Srimati D. L. Tulasi. By the age of 9 he was a child prodigy. The advanced training followed under Vidwan Sri N. S. Srinivasan. With over 4 decades of dedication he is a top grade veena artist with Akashvani and recipient of awards like Ugadi Visishta Puraskaram and Dr. Emani Shankara Shastri Award and the titles like Vainika Ratna and Vainika Chakravarti. A global performer, Srinivas has represented India at the United Nations and also performed at Queen Elizabeth Hall in London. His innovative techniques like guitar style plucking pushed the boundaries of veena music. As an educator, he has trained more than 350 students. A true ambassador of Indian classical music, Vidwan D. Srinivas continues to inspire generations.
0: आज रात के प्रसारण में विद्वान डी श्रीनिवास के साथ मृदंगम पर संगत कर रहे हैं श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री एम चंद्रकांत।
1: In tonight's broadcast, Vidwan D. Srinivas is accompanied on mridangam by Sri Yashwant Hampi Holi and on ghatam by Sri M. Chandrakant.
0: Vidwan D. Srinivas ne apne veena vadan ki shuruaat raag gola mein Mysur Vasudevachar ki ek rachna se kar rahe hain jo aadi taal mein nibadh hai.
1: Vidwan D. Srinivas begins his veena recital with a composition of Mysur Vasudevachar in the raag gaula set to aadi taal.

0: अब आप रामस्वामी शिवन की एक रचना सुनेंगे जो राग सरसांगी तथा खंड चापू ताल में निबद्ध है।
1: नाउ यू विल लिसन टू अ कॉम्पोजिशन ऑफ रामस्वामी शिवन इन द राग सरसांगी सेट टू खंड चापू ताल।

0: अपना वीणा वादन जारी रखते हुए विद्वान डी श्रीनिवास अब त्यागराज की एक रचना प्रस्तुत करेंगे, जो राग नासिका भूषणी तथा आदि ताल त्रिस्र गति में निबद्ध है।
1: कंटिन्यू प्रेजेंट अ कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन द राग नासिका भूषणी सेट टू

0: ये था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री यम चंद्रकांत ने प्रस्तुत किया।
1: दैट वॉज तन्यावर्तनम प्लेड ऑन मृदंगम बाई श्री यशवंत हम्पी होली एंड ऑन घटम बाई श्री यम चंद्रकांत।
0: विद्वान डी श्रीनिवास अपने वीणा वादन का समापन सदाशिव ब्रह्मेंद्र की एक रचना से कर रहे हैं, जो राग अहिर भैरवी तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: विद्वान डी श्रीनिवास कंक्लूड्स हिज वीणा रिसाइटल विद अ कॉम्पोजिशन ऑफ सदाशिव ब्रह्मेंद्र इन द राग आहिर भैरवी सेट टू आदिताल।

0: इसके साथ ही आज की रवि राष्ट्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा में विद्वान डी श्रीनिवास का वीणा वादन अब संपन्न होता है। आपके साथ संगत कर रहे थे मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पीहोली और घटम पर श्री यम चंद्रकांत। ये संगीत कार्यक्रम रवि राष्ट्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हुआ।
1: With that, we conclude the Veena recital by Vidwan D. Srinivas in the broadcast of Ravi Vasariya Akhila Bharatiya Sangeet Sabha. He was accompanied on Mridangam by Sri Yashwant Hampiholi and on Ghatam at the studios of Akashwani Hyderabad for Ravi Vasariya Akhila Bharatiya Sangeet Sabha and was brought to you from the Delhi station of Akashwani.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। अब से कुछ ही क्षण बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
5: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
4: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
5: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की सब खबर है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 167 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 131 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।